ऑन हो जाइए, अपना रास्ता बदल लीजिए। बिन सजाती सुमिल बात ना चलावे, जब तक कोई अपने भाव के अनुकूल हृदय न मिले तब तक चर्चा ना की जाए, इस रस की तो कदापि न की जाए। सेवक जी महाराज कहते रसिकन सो प्रीतम कहे, रसिक हृदय के सन्मुख अपने हृदय की बात कहनी चाहिए। अनेक भांति भजन भक्ति के भेद तैसे ही भक्त हैं, जैसो जाको भाव है तैसी सिद्धि होए, ताते औरन सो प्रयोजन नाही। यही मैं आपको निवेदन कर रहा हूं भाई, जैसे जिसकी भावना है। कबीर सिखाते हैं आर्ट ऑफ लिविंग, जीवन जीने की कला। राम झरोखे बैठ के

अरे करेगा सो भरेगा, तू क्यों होत उदास। कहते तहां बखानो है तोए बिगानी कापरी तू अपनी निबेर। अभी तो अपना ही कार्य नहीं हुआ। रामकृष्ण परमहंस कहते थे पहले आत्म कल्याण कर ले, पहले अपना कल्याण कर ले, तत्पश्चात ईश्वर की आज्ञा हो तो धर्म का उपदेश करें, उसको माया से लिप्त होने का भय नहीं होगा, नहीं तो निश्चित रूप से स्खलन होगा। हो ही जाता है भाई, यही भगवान की माया का प्राबल्य है। आपको अपने छोटे से अनुभव से कहूं, माया का प्राबल्य क्या है कि वो अनुचित को अनुचित लगने ही नहीं देती। यही तो माया है, जो है सो दीसत नहीं, जो दीसत सुनाई। आपको लगेगा कि उचित है वो अनुचित होगा, और आप उचित समझकर बस करते चले जाएंगे। यही भगवान की माया है, वो हित और अहित का, उचित और अनुचित का, सत और असत का जो भेद है वो आपकी दृष्टि के सामने प्रकट ही नहीं होने देती। और माया क्या है, यही तो है। संसार अपना लगता है, प्रभु दूसरे लगते, यही तो माया है और क्या है। बार बार साधु आपसे कहता है, संत आपसे कहता है, गुरुजन आपसे कहते हैं, कहां समझ में आती। यही भगवान की माया है। पाए रतन चीनो नहीं दीनों करते डार, ये माया श्री कृष्ण की मोयो सब संसार। तो कहते हैं आपको यो चाहिए औरन सो मत्सरता छाण अपनो रस लिए रहे, और याही रस के उपासकन सो अंतर खोल संग करे। और यहां मैं फिर कहूंगा, भगवान ने नवदा भक्ति के उपदेश में बल देकर ये बात कही है कि सुपने हूं नहीं देखाऊं पर दोषा। एक और बात मैं विनम्रता पूर्वक कहूं आपसे, साधक को जितनी हानि परदोष दर्शन से होती है उतनी और किसी भी वृत्ति से नहीं होती। पर दोष दर्शन ही है जो साधक के मन चित्त को कलुषित कर देता है, भजन के अनुकूल नहीं रहने देता। इससे बचने का तो भाई भरसक प्रयास करना चाहिए, और प्रयास क्या, ऐसा तो करना ही है। यही बात अपने और अंतर में रखिए, ऐसा तो करना ही है। ये और भजन साथ साथ नहीं रह सकते, आप में दोष दृष्टि ना हो। सुपने हूं नहीं देखूं पर दोषा। श्री व्यास जी के वचन, व्यास विवेकी भगत सो दृढ़ कर की जय प्रीत, अविवेकी को संग तज यह भक्त की रीत। व्यास जी कह रहे बिना कुछ निंदा स्तुति के प्रपंच में पड़े, जो अनुकूल ना हो दूर हो जाइए, जो अनुकूल हो उसका संग करिए, यही विवेक है। तो विवेकी कहा, अब विवेक बताते हैं क्या है। विवेकी तासो कही है, जो भली गहे बुरी छाणे। अविवेकी बोले भली बरी कछु ना समझे, सब गहे सब छाणे। अब आज तो संसार में ही रमे हैं हम, जैसे किसी का प्रवचन सुन लिया अगले दिन वृंदावन आ गए, बोले अब वृंदावन में ही रहेंगे। और इत व्यवहार ना उत परमारथ, और बीच ही बीच जन्म गमायो। इसीलिए मैं कई बार आपसे निवेदन कर देता हूं, भाई जहां हो वहीं से मार्ग बनाना आरंभ करो, अपने हृदय को पात्र बनाना आरंभ करो। विश्वास रखो जिस दिन आप पात्र हो जाओगे, प्रकृति एक क्षण भी आपको वस्तु से वंचित नहीं रखेगी, क्योंकि ये द्वार तो कभी बंद हुआ ही नहीं, खुला ही है। जीव विमुख है, ठाकुर जी तो सदा सन्मुख है, जीव विमुख है। अपने आप को पात्र बनाना आरंभ करिए। और जो कुछ देर पूर्व आज चर्चा हुई, जीवन इसीलिए रचा है रचनाकार ने, इस संसार इसीलिए रचा है। सीखिए समझिए, चोट भी लगती है तो वो आपको सुंदर बनाने के लिए, सुघड़ बनाने के लिए लगती है। बिना पिटे कोई पहलवान भी नहीं बनता है, चोट भी खानी पड़ती है, वो भी आवश्यक है। बस इसी प्रकार आगे बढ़िए। तो कह रहे अविवेकी भली बुरी कछु ना समझे, सब गहे सब छाणे। इसी को मैं कुछ देर पहले संतुलन कह रहा था। जैसे ही अनुपात बिगड़ेगा वैसे ही स्वाद बिगड़ेगा। आप दाल रोटी भी बनाते हो, दाल में भी नमक का अनुपात बिगड़ जाए स्वाद बिगड़ जाएगा कि नहीं। ऐसे ही जीवन है, इसमें प्रत्येक वस्तु का एक अनुपात है। अनुपात में रहेगी वस्तु तो आपको जीवन का स्वाद आएगा, जीवन में सुख मिलेगा, नहीं तो स्वाद बिगड़ जाएगा। अच्छा एक और बात, व्यर्थ यहां पर कुछ भी नहीं है, निरर्थक यहां पर कुछ नहीं है भाई, सबकी उपयोगिता है। इसीलिए मैंने कहा कब लेना है, क्या लेना है और कितना लेना है, ये सीख लीजिए। आपको कब लेना है, क्या आपके लिए है, आपके लिए नहीं है। सब अच्छी वस्तुएं भी आपके लिए नहीं होंगी भाई,
एक वस्तु किसी के लिए गुणकारी होती है, वही वस्तु किसी के शरीर को हानि पहुंचा देती है। अपनी अपनी प्रकृति है। और सबसे महत्वपूर्ण, आपको कितना लेना है। यहां पर आकर व्यक्ति अपने अंतर मन को दूषित कर बैठता है। वो आवश्यकता से अधिक चाहता है, और आवश्यकता से अधिक तो भाई जल भी पी लो तो वह आपको रोगी कर देगा। एक तरफ कहते हैं जल ही जीवन है, पर आवश्यकता से अधिक तो जल भी पी लिया जाए तो आपको रोगी बना देगा, शरीर को हानि पहुंचाएगा। जीवन की आवश्यकता निर्धारित करनी चाहिए शास्त्र और गुरुजनों की आज्ञा में रहकर। फिर कहते हैं ताते सजाती सो मिल बात जुगल बिहार की करे बिचारे, तिनकी जूठन खाए चरणोदक पीवे बिजाति को परस सुना करे। जो अपने भाव के अनुकूल हैं, जो अपने भाव के साधक हैं, और जो आपके भाव के ही सिद्ध जन हैं, शुद्ध जन हैं, रविदास जी कहने उनका संग करें, उनके संग बैठकर प्रियालाल की चर्चा करें, वार्ता करें, चिंतन करें, तिनकी जूठन खाए चरणोदक पीवे बिजाति को परस होना करें। और जो अपने भाव से साम्य नहीं रखता, जिसके हृदय में आपके जैसा भाव नहीं है, बोले उसका तो संग त्याज्य ही है, भरसक प्रयास करना चाहिए ऐसे संग से दूर रहने का। और वृंदावन चंद एक प्रीति ही माने, कोटि भांति भावे अपरस रहो भावे सपरस रहो, अनेक आचार करो पर उनको एक प्रीत की सच्चाई सो काम है। हमारे प्रिया लाल को न तो किसी व्रत उपवास से कोई लेना देना है, ना अपरस सपरस से, वो तो एक प्रीति माने। ध्रुवदास जी कह रहे हैं कुछ भी करो, विविध भांति व्यंजन करो पर लौन बिना सब भीग। प्रेम ही इष्ट है भाई, प्रेम ही आराध्य है, प्रेम ही प्राप्य तत्व है। अब जब ध्रुवदास जी ने यह कहा कि भाई चाहे अनेक आचार कर लो, तब एक ने कही कि आचार ना करें, अरे नहाने धोने की आवश्यकता ही नहीं है क्या। तो ध्रुवदास जी कह रहे हैं थोड़ो बहुत करें, सदाचार के लिए करें। देखो आपके मन में आग्रह ना हो जाए किसी भी बात को लेकर। एक संत थे, विरक्त थे, अब उनका नियम था कि वो पत्तल में ही पाते हैं भोजन। एक बार किसी के यहाँ जाना हुआ, उनका रात्रि के भोजन के लिए उन्होंने बुलाया था, गांव में वो लोग रहते थे। अब उनके मन में भाव कुछ और था, संत भगवान पधारे हैं, तो जो उत्तम से उत्तम व्यवस्था थी वो उन्होंने उनके लिए की। चांदी के बर्तनों में उन्होंने भोजन परोसा। अब वो संत जी कहने लगे, बोले हम तो भाई पत्तल में ही पाते हैं। अब पत्तल कहाँ से आए, पत्तल उस समय उपलब्ध नहीं हो रही। वो जो महात्मा है वो अपना आग्रह छोड़ नहीं रहे। तो ऐसा आग्रह मन में ना हो, किसी भी स्थिति को लेकर आग्रह मन में ना हो। महर्षि एक बार श्री उड़िया बाबा जी महाराज ने श्री अखंडानंद जी महाराज से पूछा, चर्चा हो रही थी कि एक दुशाला रखा है, एक फटा कंबल, एक विरक्त को क्या ग्रहण करना चाहिए। श्री अखंडानंद जी महाराज ने तत्काल उत्तर दे दिया, बोले निश्चित रूप से फटा कंबल उठाना चाहिए। उड़िया बाबा हंस दिए, बोले नहीं, बोले जिसके लिए फटा कंबल और दुशाला एक से है ना, वो विरक्त है। उसके हिस्से जो आ जाए वो विरक्त है। कहने वाला बड़ी सुंदर बात कहता है, बोले कि मर्जी हुई गर यार की तो घर छोड़कर बैठे, मर्जी हुई गर यार की घर छोड़कर बैठे, जिधर मोड़ दिया मुख वहीं मोड़ कर बैठे, गुदड़ी जो उड़ाई तो वही ओढ़ कर बैठे, अब दे दिया है शॉल तो फिर शॉल में खुश हैं, और पूरे हैं वही मर्द जो हर हाल में खुश हैं। बोले ये वो विरक्त है, इसके मन में आग्रह ना हो। आग्रह हृदय को कठोर करता है भाई, आग्रह से हृदय में ग्रंथि पड़ जाती है। प्रभु की इच्छा से, प्रभु के विधान से जो मिले। रांका बांका जी की कथा बड़ी प्रेरक है, बड़ा अद्भुत प्रसंग है। कहते हैं कि भक्ति उनकी ऐसी अद्भुत, और उनकी जो आर्थिक स्थिति थी बड़ी दयनीय है, भोजन की भी व्यवस्था नहीं। नामदेव जी तो इतने खींच गए और पंडरीनाथ से जाकर कहने लगे आपके भक्त हैं, आप लक्ष्मीपति हैं, बोले आपको जरा भी लज्जा संकोच नहीं है, आपके भक्तों के पास दो समय का भोजन नहीं है। ठाकुर जी कहने लगे, बोले हम देना चाहते हैं लेते ही नहीं है। अरे ऐसा कैसे हो सकता है, आप देना चाहें ये लेने, चलिए हमारे साथ दीजिए। प्रभु गए, नामदेव जी वृक्ष की ओट में खड़े थे, बोले देखना। ठाकुर जी ने कहा, बोले हम आपसे विनती करते हैं। राका माका कहने लगे, अब तो सच में ही कलयुग आ गया। बोले क्यों,
बोले मायापति भी अपने भक्तों को माया ही देने का प्रयास कर रहे हैं, माया में ही उलझाने की चेष्टा कर रहे हैं। बोले प्रभु यदि आप हमें ये देना चाहते हैं तो हमारी आपसे विनती है आप पुनः यहाँ आने का कष्ट ना करें। हम नामदेव जी को तब विश्वास हुआ कि जाही न चाही कबहु कछु, बस तुम संग सहज स्नेह। टाका बाका कहने लगे प्रभु आप हमें दरिद्र समझते हैं जो देने के लिए आए, हमारे हृदय में ये जो आपका प्रेम उच्छलित है हम स्वयं को सर्वश्रेष्ठ जानते हैं सर्वोपरि समझते हैं। तब नामदेव जी ने देखा, वही राका बांका एक दिन जंगल में लकड़ी बीन रहे थे, राका आगे आगे चल रहे थे, उनकी पत्नी बांका वो पीछे पीछे चल रही थी। आगे देखा मोहरों की एक थैली रखी है, राका फटाफट से उस पर मिट्टी डालने लगे, बांका पीछे से आई, उन्होंने देख लिया कि ये क्या कर रहे हैं। उन्होंने कहा क्या करते हैं आप? बोले नहीं नहीं कुछ नहीं। मुस्कुराते हुए कहा बताइए क्या कर रहे थे आप? बोले यहाँ ये स्वर्ण रखा था और मुझे लगा कि इसको देखकर तुम्हारे मन में कहीं कोई अन्यथा भाव न आ जाए तो मैं इस पर इससे पहले कुछ बोलते। बोले इसीलिए मिट्टी पर मिट्टी डालने का प्रयास कर रहे थे। अरे पराया धन है हमारे लिए तो वैसे भी मिट्टी है। तब राका ने कहा आप सच में बांका है, आपका भक्ति का भाव सच में बांका है, निराला है। मेरे लिए तो अभी स्वर्ण और मिट्टी में भेद है पर आपके लिए तो स्वर्ण और मिट्टी में भेद भी नहीं रहा। तो ध्यान रखना भाई, कभी कभी आचार के नाम पर हमारे हृदय में आग्रह हो जाता है और कभी कभी तो हम किसी का हृदय और दुखा बैठते हैं अपने आग्रह और दुराग्रह के कारण। ऐसा ना हो, ध्यान रखना अंतिम भावना जो प्रभु तक पहुंचेगी वो प्रेम ही है, वो आपके हृदय की विशुद्ध प्रीति ही है। अनंत अनंत भक्तों ने भगवान को भोग लगाया होगा, लगा रहे हैं और लगाते रहेंगे, पर याद किसको रखा जाता है? झूठे फल शबरी के खाए, बहुविध भोग लगाई और दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर घर खाई। स्मरण तो इन्हीं का किया जाता है। जब श्री जी की सेवा पाक करें तहां आचार करें, बोले जब श्री जी के लिए रसोई करें तो शुद्धता का ध्यान रखें, और फिर भी कह रहे हैं जैसो संभव है, जहां तक संभव हो सके। अब बहुत सारी माताएं कई बार लिखकर प्रश्न पूछती हैं कि भाई घर में हमारी रसोई में तो सब प्रकार की वस्तु बनती है, हम किस प्रकार ठाकुर जी की सेवा करें? आपके ठाकुर जी आपके हैं, आप आपके ठाकुर जी हैं, उनके बीच में न कोई आता है और न किसी को आने की कोई आवश्यकता है और ना ही आप अनावश्यक रूप से किसी को लाइए, जो आपसे संभव हो। बस प्रेम की कमी ना होने पाए, भाव की कमी ना होने पाए। प्रसाद ही कोटि, फिर कहते हैं अपने प्रसाद पाएवे को बहुत आचार न करें। प्रसाद ही कोटि आचार को स्वरूप है, भोग लागे पाछे बहुत आचार उचित नाही। शास्त्र हूं मैं कही है अति आचार अनाचार समान है, रांधे अन्न विषय कछु ना माने। जो भोग श्रीजू को लागो तो सब बराबर, कहा काचो कहा पाको। वैष्णव सदाचार के लिए आचार करें, मन में विश्वास न धरे कि यही ते कारज सिद्ध होएगो। यहाँ कहने का तात्पर्य यह है कि भाई आचार भी करे कब? जब प्रभु को वस्तु निवेदन करनी हो। जब श्री ठाकुर जी को भोग लगा उसके बाद जब स्वयं प्रसाद पाए तो बोले बहुत अधिक आचार विचार का ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है। प्रसाद ही कोटि कोटि आचार का स्वरूप है। कोटि कोटि एकादशी महा प्रसाद को अनेक अनेक आचार के पालन करने का जो फल है, हो धन धन श्री।

कह रहे रांधे अन्न विषय कछु ना माने, ठाकुर जी को भोग लगा उसके बाद बहुत अधिक विचार करने की आवश्यकता नहीं है, उसमें वस्तु बुद्धि भी ना करिए, कच्चा पक्का भी देखना नहीं चाहिए, ऐसा भी नहीं करना चाहिए। बहुत लोग तो मैं देखता हूँ जाड़े के दिन होते हैं, ठाकुर जी को भोग लगाया फिर वही प्रसाद कुछ देर के बाद पाते हैं तो उसे फिर पुनः चढ़ा देते हैं चूल्हे पर, ऐसा करना अनुचित है। प्रसाद के साथ ऐसा नहीं किया जाना चाहिए, प्रसाद को प्रसाद स्वरूप में ग्रहण करना चाहिए। प्रसाद ठंडा गर्म नहीं है, प्रसाद कच्चा पक्का नहीं है, प्रसाद ऐसा वैसा नहीं है, प्रसाद प्रसाद है। प्रसाद का जो परिणाम है ना, सब सुख एक सीथ के स्वाद, वो तो प्रसाद को प्रसाद रूप में पाने पर ही है। आप प्रसाद को वस्तु समझ कर पाओ तो उसका वो फल नहीं है, उसका वो प्रसाद नहीं है। प्रसाद का भी तो एक प्रसाद होता है ना, प्रसाद का प्रसाद है प्रभु के चरणों का अनुराग और दृढ़ होता चला जाए। अरे भक्त तो भगवान के प्रसाद के बल पर माया को विजय करने की बात करते हैं। उद्धव जी श्री ठाकुर जी से कहते हैं एकादश स्कंद में, ठाकुर जी ने कहा तुमको भी हमारी माया से डर लगता है? उद्धव जी ने कहा हम आपका प्रसाद पाते हैं, आपकी माया हमारी ओर दृष्टिपात भी नहीं कर सकती। ये प्रसाद की महिमा है, पर प्रसाद को प्रसाद जानकर पाया जाए। फिर कह रहे वैष्णव तो सदाचार के लिए आचार करें। हाँ, जब आप ये देखें कि आपका अनुसरण कोई और कर रहा है तो जहां तक संभव हो सके, और वैसे भी मुझे लगता है भाई शुद्धता स्वच्छता पवित्रता ये तो एक साधक के जीवन में होना ही चाहिए, पर ये मन में विश्वास नहीं रखना चाहिए कि यदि हम बहुत शुद्ध और स्वच्छ रहेंगे और कोई कम रहेगा तो हमारा कार्य पहले सिद्ध होगा उसका नहीं। हो सकता है उसके हृदय की प्रीति हमसे अधिक गाढ़ी हो। अब कर्मा बाई तो जूठे दातुन से ही भोग हिलाकर जगन्नाथ जी को पवा देती है, शबरी चक चक कर फल देती है, लक्ष्मण जी नहीं खाते रघुनाथ जी प्रेम से आरोगते हैं। श्री जी की टहल कोटि कोटि आचार को स्वरूप है। यहां ध्रुवदास जी कह रहे भाई सब साधनों की सिद्धि क्या है, भोर भये ते सांझ ढरे तक सेवा कोही ने हमारो। प्रिया जी की जो टहल है जो सेवा है ये सब पुण्यों का फल है, सब साधनों की सिद्धि है, और मुझे लगता है यही परम प्रसाद है। श्री जी की सेवा प्रसाद है। बहुत आचार ते हियो अति कठोर होए जाई, ही मैं आपसे कह रहा था बहुत आग्रह से हृदय कठोर हो जाता है, ऐसा ही करेंगे ऐसा नहीं करेंगे। अच्छा ठाकुर जी को ऐसा हृदय अच्छा भी नहीं लगता, ठाकुर जी को ऐसा हृदय अच्छा नहीं लगता जो पहले से ही सोच कर आए ऐसा करेंगे वैसा नहीं करेंगे। ठाकुर जी को कैसा हृदय अच्छा लगता है? बोले जैसा तुम चाहोगे वैसा करेंगे। तभी हमारी भोली सखी गाती है

हमें ऐसा होना है ना हमें वैसा होना है, जैसा आप चाहेंगे वैसा होना है, जैसा आप चाहें। जय विदित तो है अति प्यारी लागो, इसे कहते हैं मन और बुद्धि का समर्पण। ये भजन अति कोमल है और कोमल कठोर एक संग न बने। इसीलिए मैंने आपको कहा था भाई प्रयास करो आपके मुख से कठोर वचन ना निकले, रूखी बात मत कहिए किसी से। रूखी बात का परिणाम प्रतिक्रिया प्रकृति क्या देगी, एक बात तो निश्चित है, सर्वविदित सिद्धांत है, आप जो देते हैं वही आपके पास लौट कर आता है। आप कठोरता का प्रसार करेंगे, कठोरता आपके पास लौट कर आएगी, हृदय कठोर हो जाएगा, ठाकुर जी के भजन के योग्य नहीं रहेगा। तभी संत बल देकर कहते हैं ऐसी वाणी बोलिए है।

0: सफल हूँ।
1: और मुझे लगता है मीठा बोल ये तो ऐसा दान है जो प्रत्येक व्यक्ति दे सकता है। सम्मान के दो शब्द तो प्रत्येक व्यक्ति दे सकता है। हमारे महाप्रभु जी का गुण है, हमारे महाप्रभु जी का ये गुण है, सबको मान देते, सभी मानप्रद आप अमानी। यही महापुरुषों का गौरव होता है भाई, सभी मानप्रद आप अमानी। अब साधारण मनुष्य जीवन भर इसी खींचातानी में मर जाता है, हमें सम्मान नहीं मिला, हमें प्रेम नहीं मिला, हमें सम्मान नहीं मिला। मैं कहता हूं प्रेम बांटिए, प्रकृति का कण कण आप पर प्रेम की वर्षा करेगा। आप जहां जाएंगे आपको प्रेम ही मिलेगा, प्रेम ही मिलेगा। प्रेम दीजिए, बांटिए, सम्मान दीजिए, प्रकृति आपको सम्मानित करेगी। और मैं एक और बात आपको निवेदन करूं, जिसको समय सम्मान देता है वस्तुतः सम्मानित वही है, समय जिसका सम्मान करता है। और समय किसका सम्मान करता है? जो समय का सम्मान करता है। समय का सम्मान क्या है? सूत्र दे रहा हूं मैं आपको। समय का सम्मान क्या है? जीवन का आदर करना, यही समय का सम्मान करना है। और जीवन का आदर क्या है? कि जीवन का सदुपयोग करिए। जीवन का सदुपयोग क्या है? प्रसन्नता का प्रसार करिए, जिसके लिए प्रभु ने आपको मनुष्य बनाकर इस सृष्टि में भेजा है, इसीलिए आए हैं आप यहां पर। अपने जीवन के अर्थ को, मूल्य को पहचानिए। जो स्नेही भजनीक हैं तिनके घटबड़ क्रिया में मन न दे, आपको बड़ी हानि है, बड़ो अपराध है। अच्छा एक और बात यहां मैं आपको कहूं, साधु संत जैसे भी भजन करें, बस उनकी जय हो, जय हो, जय हो। रघुराज जी कह रहे उनकी घटबड़ क्रिया में मन न दे, पता नहीं उनके हृदय की, उनके भाव की पहुंच कहां तक है। अभी एक दो दिन पहले मैंने आपको सुनाया, गंगा किनारे लेटे वो साधु, एक युवान साधु कहता है, अरे 10 बज गई अब तक सो रहे हो? अब खबर नहीं वो सो रहा है कि भाव समाधि में है। अब क्या जरूरी है कि ऐसे ही बैठकर ही भजन किया जाए? और मैं तो कहता हूं किसी की भी, साधु की क्या, मैं कहता हूं किसी की भी घटबड़ क्रिया में मन देना ही क्यों है? कौन भला करता है, बुरा करते है? मैं कहता हूं इसका विचार आपको मुझे करना ही क्यों है, इसकी आवश्यकता क्या है? न कहिए न सुनिए। और संत हो फिर तो नानक कहते हैं, संत की निंदा नानका बहुर बहुर अवतार। संत हो तो फिर तो बहुत सावधान रही, न कहिए न सुनिए। कहीं ऐसे स्थान पर कुछ ऐसा होता हो उठकर चल दीजिए, सम्मिलित मत होइए। मौन रहना भी सम्मिलित होना है, ऐसा मत करिए। रुदास जी कह रहे हैं आपको बड़ी हानि है, बड़ो अपराध है। कह रहे हैं कोटि कोटि आचार उनके एक निमेश के रस भजन पर वार डालिए। अब देखने को तो रैदास जूता ही गांठ रहे थे, गोरखनाथ आए, प्रसाद का जल दिया, नहीं पिया, वो जल गया कहां, सिंध, कबीर जी की बेटी ने पिया, बड़े भाव से उसको ग्रहण किया, शिरोधार्य किया। गोरखनाथ जब मुल्तान पहुंचे तो कमाली ने एक क्षण में गोरखनाथ का वो खप्पर भर दिया जो बड़े बड़े सिद्ध नहीं भर पाते थे। तो गोरखनाथ ने पूछा ये कमाल किसका है? बोले वो पानी जो आप छोड़ आए थे उसी पानी का कमाल है, वो जो आप छोड़ आए थे ये उसी पानी का कमाल है। तो दुर्दास जी यहां यही कह रहे हैं, अरे तिनके एक निमेश के रस भजन पर और सुख कोटि कल्पन के वार डालिए। ब्रह्मादिक सनकादिक या बात में भूले हैं और उनकी कौन चलावे। ब्रह्मा जी को भूल हो गई, ब्रज के ग्वाल बालों को साधारण समझ बैठे, साधारण समझ लिया तो कह रहे ब्रह्मादिक सनकादिक या बात में भूले हैं और उनकी कौन चलावे। जो यह बात मन में न आवे कह रहे तिन सब अनाचार किए। बोले किसी संत में दोष देखा तो उसके कोटि कोटि आचार बोले धूल में मिलते हैं, वो सब अनाचार है। भक्त द्रोह को जतन नहीं होत वज्र की लीक। देखो भाई यहां पर केला की कौपीन धारण करने वाले ने भी भगवत प्राप्ति की है और चक्रवर्ती सम्राट के पद पर बैठे महाराजा अम्बरीश ऐसे भगवत प्राप्त महापुरुष है कि भगवान उनके लिए कहते अहम भक्त पराधीना। यहां उन्होंने भी भगवत प्राप्ति की है। इसलिए भाई जिस रंग में रहो, जिस ढंग में रहो, जिस संग में रहो, बड़ी बात है। निर्मल मन जन सो मुहि पावा, प्रभु का भजन होता रहे, हरि का स्मरण ना छूटे, प्रभु का स्मरण ना छूटे। जो स्नेही भक्त हैं तिनकी पदरज कोटि आचार है, साधन सिद्ध तीर्थ है। श्री गोसाई कृष्णदास जी को पद साधु चरण रज सब सुख साधन, यह मेरे मत काज सुधी को। और श्री व्यास जी को पद साधु चरण रज मांझ व्यास से कोटिक पतित समान। कल ही प्रसंग मैंने आपको निवेदन किया था श्री शबरी जी का, कि जो जप से नहीं हुआ, तप से नहीं हुआ, योग सिद्धियों से नहीं हुआ, पुण्यों से नहीं हुआ, ज्ञान ध्यान से नहीं हुआ, विद्या से नहीं हुआ, वो कार्य शबरी के चरण धूल से हुआ। ये इसी के प्रतिष्ठा भगवान ने की कि साधु चरण रज मांझ व्यास से कोटिक पतित समात। और श्री गोसाई कृष्णदास जी तो कहते हैं, बोले संतों की जो चरण धूल है ना, यही सब सुख का साधन है। और बोले मेरे जैसे कपटी का सुधार तो बस इन्हीं चरणों की धूल में लोटपोट होने से ही हो सकता है, और कोई साधन हमारे पास में नहीं है।

0: अनंत लीला अवतार अनेक तिनकी ऐश्वर्यता को पारावार नहीं, ऐसे ही नाना प्रकार के भक्त हैं। श्री कृष्ण लीला तीन प्रकार की, तीनों में भेद भक्त बहुत हैं। जहाँ जहाँ जाको मन लाग्यो ते सब नीके हैं घट को नाही। दुर्दास जी कहने भाई ठाकुर जी के अनेक अनेक रूप हैं, अनंत रूप रूप आए, हरि अनंत हरि कथा अनंता, ऐसी अनंत अनंत प्रकार के भक्त हैं। और ध्रुवदास जी कहते हैं श्री कृष्ण की लीला अनेक प्रकार की है, द्वारिका लीला है, मथुरा लीला है, ब्रज लीला है, उसमें भी सख्य लीला है, वात्सल्य लीला है, माधुर्य लीला है। पर ध्रुवदास जी कह रहे हैं भाई जहाँ जहाँ जाको मन लागे है ते सब नीके हैं, सब भले हैं, घट को नाही। कभी भी अपने मन में भावना है कि हम श्रेष्ठ भजन करते हैं, जो प्रभु का भजन करता है, जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का हो।
1: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

0: 89.6 FM.
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं.
3: कुछ हटके
4: रेडियो महारानी पर आप सुन रहे हैं कृष्ण वाणी.
5: यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मनाम सृजाम्यहम् परित्राणाय साधुनाम विनाशाय चतुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे. अर्थात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, मैं प्रकट होता हूँ, मैं आता हूँ जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं आता हूँ, जब जब अधर्म बढ़ता है तब तब मैं आता हूँ. सज्जन लोगों की रक्षा के लिए मैं आता हूँ, दुष्टों का विनाश करने के लिए मैं आता हूँ, धर्म की स्थापना के लिए मैं आता हूँ और युग युग में जन्म लेता हूँ.

0: जिस दिन आप अपनी हंसी के मालिक खुद बन जाएंगे, उस दिन के बाद आपको कोई रुला नहीं सकता। रेडियो महारानी पर आप सुन रहे हैं लाइफ कोच और मोटिवेशनल स्पीकर सोनू शर्मा जी के विचार।
1: दुनिया की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट क्या है? अलग अलग लोगों से अलग अलग बात सुनेंगे, अलग अलग लोग अलग अलग जवाब देंगे। दुनिया में आगे बढ़ने के लिए, अमीर होने के लिए, पैसा बनाने के लिए कहां इन्वेस्ट करें? कुछ लोग आपको बोलेंगे इन्वेस्टिंग इन प्रॉपर्टी विल गिव यू द बेस्ट रिटर्न्स। नीति आयोग भी कहता है कि 2030 तक आते आते $1 trillion का ये बिजनेस होने वाला है और जीडीपी में 13% कंट्रीब्यूट करने वाला है। तो मैक्सिमम लोग आपको, पुराने लोगों से मिलिए तो बोलेंगे प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करिए, वो आपको बेस्ट इन्वेस्टमेंट है और वो आपको बेस्ट रिटर्न देती है। कुछ और लोगों से मिलिए, वो कहेंगे नहीं नहीं नहीं, स्टॉक्स में लगाइए, बॉन्ड्स में लगाइए, इंश्योरेंस में लगाइए, म्यूचुअल फंड्स में लगाइए, ये आपको बेस्ट रिटर्न देते हैं। कुछ लोग और आएंगे, कहेंगे नहीं नहीं नहीं, स्टॉक भी नहीं, बॉन्ड भी नहीं, इंश्योरेंस में नहीं, सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट है गोल्ड एंड सिल्वर। आज से 60 साल पहले गोल्ड इतने का था, आज इतने का है, उस समय लिया होता तो आज रईस होते। कुछ लोग गोल्ड और सिल्वर के लिए ऐसी ऐसी बात बोलेंगे। कुछ लोग कहेंगे नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं, इन्वेस्टमेंट इन कमोडिटीज विल गिव यू द बेस्ट रिटर्न्स। अलग अलग लोग इन्वेस्टमेंट की अलग अलग परिभाषाएं आपको बताते हैं कि पैसा बनाने के लिए कहां निवेश करना जरूरी है। आखिरी में कुछ बुद्धिजीवी लोग बहुत शानदार बात आपसे करेंगे, वो कहेंगे सब छोड़ दीजिए, सब बेकार की बात है, इन्वेस्टिंग इन चिल्ड्रन एजुकेशन विल गिव यू द बेस्ट रिटर्न्स। हाँ बिल्कुल ठीक है कि बच्चों की पढ़ाई में निवेश करने से आपको बेस्ट रिटर्न्स मिलते हैं। साथियों, आज मैं सोनू शर्मा, इंस्पिरेशनल स्पीकर, लीडरशिप कंसल्टेंट एंड लाइफ कोच, आपको बता देना चाहता हूं कि कहां इन्वेस्टमेंट आपको कंपाउंडिंग रिटर्न देता है। मैं जो बात आपसे करने वाला हूं वो धमाकेदार बात है। वो बात आपको बताएगी कि कैसे गरीब इंसान अमीर हो सकता है, कैसे कुछ लोग शीर्ष पर पहुंचे हैं, कैसे कुछ लोगों ने जिंदगी में वो फतेह हासिल की है जो बहुत सारे लोगों के लिए महज एक सपना है। मैं आपको अपना इन्वेस्टमेंट का बेस्ट ऑप्शन दे रहा हूं कि कहां निवेश करना चाहिए। सुनना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक देखिए। आज मैं आपके जिंदगी के कुछ अनछुए पहलुओं पे भी बात करूंगा। कहां इन्वेस्टमेंट आपको बेस्ट रिटर्न देती है, मैं बताता हूं। इन्वेस्टिंग इन योरसेल्फ विल गिव यू द बेस्ट रिटर्न। खुद के अंदर निवेश करें, अपने अंदर इन्वेस्टिंग कहां होनी चाहिए, सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत आपको है। इन्वेस्टिंग इन योरसेल्फ, आपको खुद को इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, ना स्टॉक, ना बॉन्ड्स, ना प्रॉपर्टीज, ना चिल्ड्रन एजुकेशन। लेडीज एंड जेंटलमैन, आपके अंदर इन्वेस्टमेंट की बेहद आवश्यकता है। इन्वेस्टिंग इन योर नॉलेज, योर स्किल्स विल गिव यू द कंपाउंडिंग रिटर्न्स। अगर आप ये जानते हैं पर कर नहीं रहे तो मान लीजिए आप नहीं जानते, अगर आप जानते हैं और कर नहीं रहे तो मान लीजिए आप नहीं जानते हैं। और आखिरी में हम मिडिल क्लास फैमिली के लोग अपना सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र चलाते हैं, सबसे बड़ा वेपन चलाते हैं, जानते हैं क्या लिखता हूं, ये सब किस्मत का खेल है भाई, सब किस्मत का खेल है। वो रईस बन गया, उसकी किस्मत बहुत अच्छी थी। देखो सोनू शर्मा को 10वीं में मात्र 50% नंबर थे, क्या जबरदस्त नोट छाप रहा है। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं, यू नीड अ मेंटर इन योर लाइफ, बिकॉज सक्सेसफुल पीपल बिलीव इन कोचेस व्हाइल अनसक्सेसफुल पीपल नोज एवरीथिंग। हमें सब पता है, नहीं चलता, अब हमने दुनिया देखी है, यह भी नहीं चलता। आपका तजुर्बा आपको जहां तक ला सकता था ले आया, आगे का सफर आपके तजुर्बे से नहीं, नॉलेज से होगा। आज का वीडियो आखिरी तक देखें, आपकी जिंदगी बदलने के लिए यह 12-15 मिनट का वीडियो काफी है। आज मैं आपको वो 5 सफल सिद्धांत बता रहा हूं जिन्होंने कुछ लोगों को शीर्ष तक पहुंचाया। ऐसी पिटारा आपके सामने आज खोलने वाला हूं जो ना आपने सुना होगा ना आपने सोचा होगा। आज की वीडियो का अगर आपने आखिरी तक देखा तो मैं दावा दे सकता हूं कि आपकी लाइफ सुपर सेट हो सकती है। 5 सक्सेस प्रिंसिपल आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहले ध्यान से सुनिए, गौर से सुनिए, क्या करने से सफलता मिलती है। प्रिंसिपल नंबर 1 क्या है? प्रिंसिपल नंबर 1 बहुत शानदार है। क्या? नंबर 1, स्टार्ट योर करियर एज अर्ली एज पॉसिबल। बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है गाइस, बहुत सफल सिद्धांत मैं आज आपको दे रहा हूं। स्टार्ट योर करियर सुपर अर्ली, जितनी जल्दी हो सके अपना करियर स्टार्ट कर डालिए। वॉरेन बफेट ने अपना करियर 11 साल की उम्र में चालू किया, पहली इन्वेस्टमेंट उन्होंने 11 साल की उम्र में की, दुनिया के टॉप 5 रईस लोगों में से हैं। इसमें भी वो एक बात कहते हैं कि मुझे और जल्दी शुरू करना चाहिए था। जानते हैं मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास फैमिली का प्रॉब्लम क्या है, मेरा बच्चा बड़ा छोटा है, धूप लग जाएगी, सर्दी में जाएगा तो जुकाम लग जाएगा, अभी उम्र बड़ी छोटी है, खेलने खालने की उम्र है, ऐसी बातें मिडिल क्लास फैमिली के लोगों को मिडिल क्लास कर देती है। सफल लोग जल्दी शुरू करते हैं। वर्जिन एटलांटिस के मालिक रिचर्ड ब्रांसन ने अपना करियर 16 साल की उम्र में चालू किया। जानते हैं दुनिया के सबसे रईस इंसान एलन मस्क ने अपना पहला सॉफ्टवेयर महज 12 साल की उम्र में बेच दिया, और हमारे यहां 12-13 साल की उम्र खेलने खालने की उम्र होती है, जिस उम्र में दुनिया के दिग्गज लोग अपना बिजनेस सेटअप कर रहे हैं। मैं आपको ये प्रिंसिपल देना चाहता हूं, इफ यू वांट टू बिकम सक्सेसफुल एंड इफ यू आर अ टीनेजर, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, आपका समय अभी शुरू होता है अगर आपकी उम्र 16-17 साल है, क्योंकि बिजनेस सेटअप करने के लिए आपको कम से कम 5-8 साल लगेंगे। अगर आज आप 17 साल में हैं, 8 साल और जोड़ लीजिए, 25 साल में आप एक सफल इंसान होंगे। जितनी कम उम्र में शुरू करेंगे उतना ज्यादा समय मिलेगा। प्रिंसिपल नंबर 2 आपको बता देना चाहता हूं, फेल क्विकली बट कीप मूविंग। फेल हो जाइए, नो प्रॉब्लम, मुझे कोई एतराज नहीं है, फेल क्विकली, जल्दी फेल होइए, मुझे कोई इश्यू नहीं है, बट कीप मूविंग, बढ़ते रहिए। मैं आपको एक सबसे अच्छी बात आपके लिए बता देना चाहता हूं, जो लोग अर्ली बिगनर हैं, आपके लिए सबसे बढ़िया बात यह है कि आप 100% फेल होने वाले हैं। अरे आप बोलेंगे सोनू सर ये कैसी बात कर रहे हैं, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं इस दुनिया की, आप 100% फेल होने वाले हैं, सच है, क्योंकि आपने यात्रा बहुत जल्दी शुरू कर दी। अभी आपके पास ना स्किल है ना मार्केट का नॉलेज है, हो सकता है कोई मेंटोर भी ना हो जो आपको बचा सके। स्क्रैच से करोड़पति बनने का एक ही तरीका है, क्या? जितनी इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर सकते हो कर लो, इस उम्र में जितनी इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर सकते हो करो और कन्वर्ट करो उसको एक्शन के अंदर। जब आप मार्केट में चैलेंज फेस करो तो मान लो कि मार्केट आपका टेस्ट दे रही है, डरना मना है, फेलियर इज द पार्ट ऑफ द जर्नी। फेल हो जाइए, जल्दी फेल होइए, बट कीप मूविंग। तीसरा सफल सिद्धांत आपको देता हूं, एजुकेट योरसेल्फ। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर एवरी मिलेनियर एंड बिलेनियर, एजुकेट योरसेल्फ। निरंतर सीखते रहिए, बुक्स पढ़िए, इंटरव्यूज पढ़िए, केस स्टडीज पढ़िए सफल लोगों की, एनालाइज कीजिए बाकी लोगों के बिजनेस। और जानते हैं मजे की बात क्या है, क्वालिटी इंफॉर्मेशन बहुत चीपर है या एकदम फ्री है, कोई पैसा नहीं लग रहा आपको इस वीडियो को देखने का, फोकट में देख रहे हैं कितना कुछ सीखने को मिल रहा है। दुनिया में सबसे सफल बढ़िया ज्ञान फोकट में मिल जाता है दोस्त, बस अफसोस है कि हम सीखते नहीं है। 300 से ज्यादा वीडियो हैं हमारे चैनल के ऊपर, जरूर सब्सक्राइब करिए, 300 से ज्यादा फ्री वीडियो जहां पर आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो सकती है। मैं बार बार कहता हूं एजुकेट योरसेल्फ, सीखिए, केस स्टडी से सीखिए, सफल लोगों की जीवनी से सीखिए, और सारा का सारा इंफॉर्मेशन गैदर करके अपनी जिंदगी में लगाइए, जहां मेरे 20 साल के एक्सपीरियंस आज आपके यूट्यूब के अंदर है, जिससे आप सीख सकते हैं कि कैसे अपन सफल हो। इफ यू वॉन्ट टू रीड अ बुक, तुमको कोई लोन लेने का जरूरत नहीं है। मजे की बात तो यह है, अगर तुम एक सफल आदमी की जीवनी पढ़ना चाहते हो तो तुमको क्या लोन लेने का जरूरत है, मात्र 200-500 रुपए के अंदर एक सफल आदमी की किताब मिल जाती है। मिडिल क्लास फैमिली के लोगों को यह बहुत बड़ा काम लगता है, क्या बैंक से लोन लेना पड़ेगा किताब पढ़ने के लिए? नो लेडीज एंड जेंटलमैन, आप अपने बच्चे से पैसा बोरो करके भी एक सफल आदमी की किताब पढ़ के सीख के उसको जिंदगी में इंप्लीमेंट कर सकते हो। डोंट बी सीरियस इन लाइफ बट टेक लाइफ सीरियसली, एक ही जिंदगी है, इन्वेस्ट इन बुक्स रिकॉर्डिंग्स, हर चीज जो आपकी स्किल को बिल्ड करे। और जितनी छोटी उम्र में स्किल्स डेवलप कर लोगे ना, उतने ज्यादा समय तक उन स्किल्स को यूज कर सकते हो। मैं रिपीट करता हूं, जितनी छोटी उम्र में स्किल्स डेवलप कर लोगे उतने ज्यादा समय तक स्किल्स को यूज कर सकते हो। कार अगर आपने 18 साल की उम्र में सीख ली और आप 80 साल जीते हैं तो 62 साल तक इसका फायदा उठा सकते हैं, लेकिन अगर आपने कार 60 साल की उम्र में सीखी और 80 साल तक जिए तो उसका फायदा सिर्फ 20 साल उठा सकते हैं। बिकम अ सेल्फ लर्नर, लर्न अबाउट टाइम मैनेजमेंट, हाउ टू टॉक, हर टॉपिक पर आपको मेरे चैनल पर वीडियो मिल जाएगा, सीखिए और आगे बढ़िए। प्रिंसिपल नंबर 4 आपको बता देना चाहता हूं, सांसें थाम के बैठिएगा क्योंकि आपको ये डेंट करने वाला है, आपको चोट देगा, आपको पीड़ा पहुंचाएगा कि सोनू सर आज क्या बताने के मूड में आए हैं। प्रिंसिपल नंबर 4, सेक्रीफाइस सोशल लाइफ। यस बॉयज एंड गर्ल्स, सेक्रीफाइस सोशल लाइफ। अपनी सोशल लाइफ को आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। गुर्बत और गरीबी से निजात पाने के लिए कीमत आपको देनी ही पड़ेगी, यह कीमत आपको चुकानी पड़ेगी। बिल्कुल एक रॉकेट की तरह जिसका सबसे ज्यादा फ्यूल ग्रेविटेशनल पुल से बाहर निकलने में लग जाता है, आपके जो शुरुआती साल हैं उसमें आपको सोशल लाइफ को बायकॉट करना पड़ेगा। जी हां, 40 घंटा अगर आप एक हफ्ते में काम करते हैं, मैं रिपीट करता हूं, अगर आप एक हफ्ते में सिर्फ 40 घंटा ही काम करते हैं तो यह सिर्फ आपके खाने की पूर्ति करेगा, आपके बिलों का भुगतान करेगा, दैट्स इट। अगर आप 40 आवर्स अ वीक मेहनत करते हैं तो सिर्फ बिल भुगतेंगे आपके, आप एक आम जिंदगी जिएंगे, मर जाएंगे। लेकिन अगर आपके वर्किंग आवर्स 40 से बढ़कर 100 हो जाते हैं, अगर एक हफ्ते में आप 100 घंटा काम करते हैं, यह आपको लाइफस्टाइल देगा, ये आपको जबरदस्त लाइफ देगा और आपको एक अमीर लाइफ को फील करवाएगा अगर आप 100 घंटे काम करते हैं। लेकिन 100 घंटे काम कब करेंगे? जब सोशल लाइफ को बायकॉट करेंगे। कोई फालतू की दोस्ती नहीं, फालतू की रिश्तेदारी नहीं, कहीं फालतू का आना नहीं, फालतू का जाना नहीं, इधर उधर की गॉसिप में खोपड़ी नहीं लगाना, सिर्फ और सिर्फ फोकस करना अपने करियर और अपने गोल के ऊपर। बहुत सारे लोग ये नहीं कर पाते क्योंकि ये कीमत ही नहीं देना चाहते, क्योंकि ये बिल्कुल आसान नहीं है। आप भी बाकी लोगों की तरह आम जिंदगी जी सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। आप डिसाइड करिए कि आप कितने घंटे रोजाना अपनी मोबाइल स्क्रीन पर ऐसी की तैसी कराकर अपना टाइम वेस्ट करना चाहते हैं। लोगों के मोबाइल स्क्रीन के ऊपर 7-7 8-8 घंटे के आवर्स हैं, कैन यू बिलीव इट। दुनिया भर का अनप्रोडक्टिव काम लोग बात करते हैं, कभी इसकी शादी में जाना है, कभी उसके रिश्तेदारी में जाना है, कभी फालतू फंड का गॉसिप करना है, चार दोस्त बैठे हैं गप्पे मार रहे हैं। यू आर वेस्टिंग योर प्रीशियस टाइम। 24 घंटे खत्म होने के बाद, वो 24 घंटे दुनिया भर की संपदा देने के बाद भी आपके पास नहीं आते। आपको बॉयकॉट करना पड़ेगा सोशल लाइफ और फोकस करना पड़ेगा अपने करियर के ऊपर। पांचवी सबसे खतरनाक चीज, सराउंड यूर सेल्फ विद हाईली सक्सेसफुल पीपल एट एनी कॉस्ट। हाईली सक्सेसफुल पीपल एट एनी कॉस्ट। अपना वातावरण सफल लोगों के साथ बनाइए। कुछ भी ऐसा करिए कि आपके आजू बाजू में वो लोग हों जो आपको इंस्पायर कर सकें। कुछ ऐसा रास्ता ढूंढिए, कुछ ऐसी एसोसिएशन तलाशिए जहां पर आपके आजू बाजू के लोग बड़ी बात करने वाले हों, बड़े सपने देखने वाले हों, बड़े आइडियाज हों जिनके पास, और अर्ली बिगिनर्स हों जिनके पास गीता ज्ञान के नाम पर कुछ ना हो लेकिन एनर्जी सुपर फास्ट हो। इन सबकी एसोसिएशन में आप कमाल कर जाएंगे। बींग विद अ विनर मेक्स यू अ विनर एंड बींग विद अ लूजर विल मेक यू अ लूजर। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये 5 प्रिंसिपल अगर आप अपने जीवन में इंप्लीमेंट कर गए, मैं दावा दे सकता हूं ये साल आपकी जिंदगी का बेहद खूबसूरत साल है।

0: रॉकी भाई जैसा स्ट्रॉन्ग बनना है तो फॉलो करो KGF हेल्थ टिप्स,
1: कोलार गोल्ड फील्ड
0: नहीं, KGF मतलब कीप जिमिंग टू फ्लेक्सिबिलिटी।
1: ऐसे ही सिनेमैटिक हेल्थ टिप्स जानने के लिए सुनते रहिए रेडियो महारानी को छटके।

0: 89.6 FM.
1: कुछ छक्के
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं.
3: कुछ हटके.
4: या सारी

शानदार सुरह के साथ स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 एफएम पर। मैं हूँ आरजे अंशली आपके साथ और शो लेकर आ गई हूँ मॉर्निंग एक्सप्रेस। तो सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि भाई अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, गर्मा गर्म मसाले वाली चाय की पहली सिप लीजिए और एंजॉय कीजिए रेडियो महारानी पर इस शो को, जहाँ पर आपको मिलता है एंटरटेनमेंट का डबल डोज। आपके शहर में आज वेदर और ट्रैफिक की क्या अपडेट है ये भी लेकर आई हूँ, साथ ही सोशल स्यापा से लेकर क्या कुछ खास इस बारे में भी बात करेंगे। तो बस एंजॉय कीजिए रेडियो महारानी पर। ये ट्रैक मिलता है म्यूजिक

0: मंजिल सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो सफर की कद्र करते हैं। कभी कभी एक छोटी सी लापरवाही पूरी कहानी बदल देती है। हेलमेट कोई बोझ नहीं, ये आपकी समझदारी का सबसे बड़ा सबूत है।
1: तो अगली बार सफर पर निकलने से पहले इस छोटी सी समझदारी को अपने सिर पर जरूर रखिए, क्योंकि आपकी एक सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी। सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही, यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, फोन की स्क्रीन भले ही छोटी है पर उसने जिंदगी के सबसे बड़े पल छुपा लिए हैं।

0: जिंदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
0: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।
2: करते रहे, वी आर सॉरी, पर आज हम हाथ जोड़ के उन खुशियों के लिए धन्यवाद देते हैं जो हमारे पास हैं। थैंक यू फॉर एवरीथिंग।

पता नहीं है मुझको, पर दिल के राज कहना है आज, बस ये लगता है यू शुड नो। है मन्नू दास का पे आवाज, फिर भी मैं जोड़ के हाथ, जो भी है पास है उस पे नाज, बस कहना है थैंक्स लव।

इस शानदार ट्रैक के साथ एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 एफएम पर। मैं हूँ आरजे अंशी आपके साथ और शो चल रहा है मॉर्निंग एक्सप्रेस। तो अब टाइम हो गया है वेदर अपडेट का। अगर हाईएस्ट टेम्परेचर की बात की जाए 38 डिग्री जाने वाले, इसी के साथ अगर मिनिमम की बात की जाए 29 डिग्री रहने वाले, विंड स्पीड आपको 13 मिलने वाली है। इसी के साथ अगर ह्यूमिडिटी की बात की जाए 36% ह्यूमिडिटी है आज। वैसे भी गर्मियां हैं तो गर्मियों में हाइड्रेशन का ख्याल रखने की ज्यादा जरूरत है। तो अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए और स्वादिष्ट सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM। म्यूजिक ब्रेक के बाद

0: रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, जिंदगी हर दिन एक नया सवाल पूछती है और हर बार तुम्हारा जवाब होना चाहिए मैं रेडी हूँ। हिम्मत रखो, हर दिन कुछ बढ़िया होने वाला है क्योंकि ये दुनिया तुम्हारी है, बस खुद पे यकीन रखो।

0: तेरे प्यार का तो पता नहीं, पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
1: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
0: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें। किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
2: और जुड़े साइबर सिपाही कैंपेन से, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ, बी अवेयर।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही। यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: डियर एल्डर्स, नेवर क्लिक ऑन लिंक्स फ्रॉम अननोन सेंडर्स टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स। कभी अपने पासवर्ड्स, बैंक डिटेल्स, OTPs एंड KYCs को मिठाई की तरह ना बांटें। स्टॉप, थिंक एंड वेरीफाई।

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चालान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
1: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
1: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
2: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

नहीं। और वाकई भाई जब कलर्स हमारी जिंदगी में होता है ना तो हमारा मूड एकदम से लाइट हो जाता है। हमारी बेरंग जिंदगी में जो रंग भरता है वो कलर्स ही तो है। वेलकम बैक टू रेडियो महारानी, मैं हूँ आरजी अंजलि आपके साथ और शो चल रहा है मॉर्निंग एक्सप्रेस। आपने ये अक्सर सुना होगा कि अगर ब्लू पसंद करते हो तो इसका मतलब आपको मेंटल हेल्थ रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, लेकिन आज आपको बता दूं अगर आप ब्लू पसंद करते हो तो भाई काम डाउन ना, पूरी तरह से नॉर्मल हो। बिकॉज सोशल मीडिया पर ना इन दिनों एक क्लेम बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है और वो ये है कि मेंटल हेल्थ इश्यूज या फिर जितने भी साइकोपैथ्स है ना उनका फेवरेट कलर ब्लू होता है। तो भाई साइंस इस बात को क्लियर करते हुए ये समझाते हैं कि साइकोलॉजी स्टडीज के अकॉर्डिंग जब लोग ज्यादा सैड या फिर डिप्रेस्ड होते हैं तो वो अपने करंट मूड के लिए ग्रे या फिर डार्क कलर्स को चूज करना पसंद करते हैं। तो भाई जब बात आती है ना फेवरेट कलर की तो तब देखा गया है कि हेल्दी हो या फिर क्लिनिकल कंडीशन वाला इंसान हर कोई यानी कि मैक्सिमम लोग ना ब्लू कलर पसंद करता है। उसके पीछे का रीजन है, बिकॉज इसके पीछे का रीजन बड़ा ही सिंपल है। ब्लू कलर ब्रेन को काम सिग्नल देता है, ब्लड प्रेशर कम करता है, स्ट्रेस रिड्यूस करता है, प्लस हॉस्पिटल्स थेरेपीज रूम और मेडिसिन स्पेस जितने भी है ना सब इसी रीजन से ब्लू कलर यूज करते हैं। मतलब यहाँ पर बहुत ही क्लियर सा मैसेज है इसके पीछे। अगर आपको ब्लू पसंद है, आपको कोई भी मेंटल प्रॉब्लम नहीं है, पूरी तरह से ठीक है। हाँ, ये बताता है कि ब्लू कलर की पीस लविंग पर्सनालिटी है। ये बताता है कि आप जिंदगी में रिलैक्स रहना ज्यादा पसंद करते हैं। तो भाई सही बोलना चाहती हूँ कि अपनी पसंद पर प्राउड फील करो, बिकॉज हर किसी की कामिंग पर्सनालिटी नहीं होती, आप उन्हीं में से एक है। और किसी भी तरह की ट्रेंड पर भरोसा ना करें, बिकॉज सोशल मीडिया का काम है आपको गुमराह करना। लेकिन डोंट वरी, ट्रैफिक हो या TRJ अंजलि इज द की। तो भाई इसी की के साथ, इसी वाइब के साथ फिर से आएंगे लौट कर इस म्यूजिक ब्रेक के बाद। तब तक एंजॉय कीजिए पैसा ट्रैक जो है खास आपके लिए।

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
1: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट, थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
1: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
2: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: प्यार का तो पता नहीं, पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
1: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
0: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें।
2: किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
3: और जुड़े हैं साइबर सिपाही कैंपेन से, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ, बी अवेयर।
4: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

गर्मी आ गई है ये हम सबको पता है, लेकिन हमारे पास एसी है, फ्रिज है, ठंडा पानी है, ठंडी हवा है, सब कुछ है। और हाँ, अच्छे खासे फ्लैट्स भी हैं। लेकिन भाई जो जानवर है उनके पास क्या है? उनके पास है आपकी कार की छाया, उनके पास है पेड़ों की छाया। तो इन सबका ख्याल रखना है हमारी जिम्मेदारी। वेलकम बैक टू रेडियो महारानी, मैं हूँ आरजी अंशली आपके साथ और शो लेकर आ गई हूँ मॉर्निंग एक्सप्रेस। आज मैं आपको ये बताने आई हूँ कि 2 सेकंड का चेक किसी की जान बचा सकता है। आप सभी को पता है कि गर्मी बहुत ज्यादा है, आगे आने वाले दिनों में गर्मी और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। तो ऐसे में जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं ना, वो अक्सर ठंडी जगह ढूंढते हैं और उनको सबसे अच्छी

की जगह मिलती है पार्क्ड कार, यानी कि आपने देखा होगा जितने भी शेड वाली जगह है वो अक्सर आपको वहाँ मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये भी है कि कई बार ना अक्सर जो ड्राइवर्स होते हैं वो बिना चेक किए अपनी गाड़ी चला देते हैं, जिसकी वजह से ये जो इनोसेंट एनिमल है इनको सीरियस इंजरी हो सकती है। तो बस आपने क्या करना है, सिंपल स्टेप्स एंड बिग इम्पैक्ट को ध्यान में रखना है। कभी भी कार स्टार्ट करने से पहले एक बार नीचे जरूर चेक कीजिएगा कि कोई स्ट्रे एनिमल तो नहीं है आपकी कार के नीचे। साथ ही इंजन स्टार्ट करने से पहले हल्का सा हॉर्न दे देना, सो दैट कि अगर कोई है भी तो वो आराम से बाहर निकल आ सके। और साथ ही एक और चीज आपको करनी है, अगर पॉसिबल हो तो कार के पास थोड़ा मूवमेंट क्रिएट करे, सो दैट कि ये छोटी सी अवेयरनेस किसी की लाइफ सेव कर सके। और मैसेज ऑफ द डे बस यही देना चाहूंगी, इंसानियत सिर्फ लोगों के लिए नहीं हर जीव के लिए होनी चाहिए। इस गर्मी में थोड़ा सा केयर और थोड़ी सी काइंडनेस जरूर दिखाइए, क्योंकि उन्हें सिर्फ थोड़ी सी शेड चाहिए और बस हमसे थोड़ी सी सेंसिटिविटी, इतना ही तो मांगते हैं और इतना तो हम सब बहुत आराम से दे सकते हैं। तो भाई अपने दिन के साथ उनका भी दिन अच्छा बनाइए, साथ ही सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM म्यूजिक ब्रेक के बाद।

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
1: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
1: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
2: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: सर आपका KYC अपडेट करना है, मैंने आपको एक लिंक भेजा है, उस पर क्लिक कीजिए, वरना आपका अकाउंट और ATM दोनों ही बंद हो जाएगा।
1: बट मेरा KYC तो ऑलरेडी अपडेटेड है।
2: सावधान, अनजाने कॉल्स, फर्जी टेक्स्ट, लिंक और जाली ऐप से अपना पिन, OTP, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे सावधान तो नहीं होगा नुकसान। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: हर शाम जब तुम घर लौटते हो, माँ की नजरें दरवाजे पर टिकी रहती है। पापा के सवालों में सख्ती से ज्यादा फिक्र होती है और छोटे भाई की वो मुस्कान जो सिर्फ तुम्हें देखकर खिल उठती है। सोचो अगर कभी ये मुस्कान इंतजार में ही रह जाए।
1: सफर लंबा हो या छोटा, हेलमेट पहने, हाई स्पीड में गाड़ी ना चलाएं और अपनों की हंसी को बचाएं। हेलमेट सिर्फ आपकी सुरक्षा नहीं, अपनों की खुशियों की गारंटी है।
2: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: पता नहीं, पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
1: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
0: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें। किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
2: और जुड़े हैं साइबर सिपाही कैंपेन से, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ, बी अवेयर।

शानदार सुबह के साथ एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 एफएम पर। मैं हूँ आज जिंदगी आपके साथ और शो चल रहा है मॉर्निंग एक्सप्रेस। आज मैं अकेले नहीं आई हूँ, आज मैं आपके लिए एक एक्ट ऑफ काइंडनेस लेकर आई हूँ। एक ऐसी स्टोरी जो इन दिनों बहुत ज्यादा वायरल हो रही है और ये दिखाती है, ये स्टोरी हमें, इंसानियत आज भी जिंदा है। हाँ, बस कभी कभी दिख जाती है और जब दिखती है ना तो वाकई बहुत अच्छा लगता है। एंड ये हार्ट वार्मिंग स्टोरी आई है उत्तराखंड से। दरअसल एक ग्रुप जब उत्तराखंड में रिवर राफ्टिंग कर रहा था तो उस ग्रुप को एक स्ट्रे डॉग बीच में फंसा हुआ मिला, जहाँ पर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फ्लो था और सिचुएशन इतनी ज्यादा डेंजरस थी कि कुछ भी हो सकता था। लेकिन वहां से गुजरने वाले जितने भी राफ्टर थे उन्होंने तुरंत एक्शन लिया। उन्होंने बिना सोचे समझे ये जो स्ट्रे डॉग वहाँ फंसा हुआ था उसे सेफली रेस्क्यू किया एंड वापस एक सेफ जगह तक पहुंचा दिया। एंड जब ये वीडियो सामने आया तो लोगों ने बहुत पसंद किया इस वीडियो, अपने कमेंट्स भी दिए और ये भी कहा ह्यूमैनिटी स्टिल एग्जिस्ट, स्मॉल एक्ट बिग इम्पैक्ट, रियल हीरोज बिना कैप के होते हैं। ये इस वीडियो में जो राफ्टर्स थे उन्होंने बता दिया है। और ये स्टोरी अकेले नहीं है, ये स्टोरी अपने आप में एक मैसेज लेकर आई है। एंड मैसेज ये है आज का, काइंडनेस और कम्पैशन हर सिचुएशन में सबसे पावरफुल होता है। फिर चाहे बात की जाए, कभी किसी की हेल्प करने का मौका मिले तो जरूर आगे बढ़िएगा, क्योंकि आपके एक स्टेप किसी की लाइफ चेंज कर सकता है। तो बस इसी पॉजिटिव स्टोरी के साथ अपने डे की शुरुआत भी एक पॉजिटिव नोट के साथ कीजिएगा, सो दैट की दूसरों की खुशी के साथ ना आपको अपनी खुशियां भी मिल सके। और साथ ही सुनते रहे रेडियो महारानी 89.6 एफएम। मिलते हैं इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: सोशल मीडिया पे प्राइवेसी टाइट रखो, अपनी लाइफ में डॉक्यूमेंट्री मत बनाओ, और हाँ लाइफ में ड्रामा कम।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हाँ तो अर्ज किया है,
2: अर्ज अर्ज
1: अभी करते हैं, सुनो
0: स्टार्ट।
1: स्पैम कॉल करके आजकल दिमाग खा जाते हैं।
0: वाह वाह वाह वाह,
1: कोई फर्जी रिश्तेदार तो कोई फर्जी ऑफिसर बनकर हमें डांट देते हैं। चुप रहो, आगे सुनो। मैं कहता हूँ कि बैंक की डिटेल्स ओटीपी सब दे दूंगा।
2: अच्छा,
1: बस मेरी शायरी सुन लो।
0: फिर
1: ये सुनते ही पहली फुर्सत में वो फोन काट देते हैं।
0: अरे वाह, तुम्हारी शायरी का कुछ तो फायदा हुआ। अब तुम बोलते रहो, हम चलते हैं।
1: अरे,

वेलकम बैक टू रेडियो महारानी, मैं हूँ अर्जेंटली आपके साथ और शो चल रहा है मॉर्निंग एक्सप्रेस। तो अगर बात की जाए ना स्मार्टफोन्स की, तो हम सबकी नीड है। बेसिकली स्मार्टफोन स्मार्ट है, पर थोड़ी सी केयर और भी स्मार्ट बना सकती है आपको। सो आज यही बताने के लिए मैं आई हूँ कि किस तरह के स्कैम्स हमारी मार्केट में आ गए हैं एंड किस तरह से हमें इन सभी स्कैम से बचना है। अगर बात की जाए एक रिसेंट के इंसिडेंट की, तो मुंबई से एक रिसेंट इंसिडेंट आया जहां पर 78 इयर्स ओल्ड वुमेन के साथ साइबर फ्रॉड हो गया। एंड ये बहुत ही शॉकिंग केस रहा, बिकॉज जहां हैकर्स ने फोन एक्सेस करके लगभग 25 लाख रुपए की ठगी कर ली। कोई छोटा अमाउंट नहीं है, बहुत ही बड़े अमाउंट की ठगी हुई है। एंड अक्सर ऐसा ही होता है, आपको पता भी नहीं चलता और एक क्लिक में आपका पूरा अकाउंट खाली हो जाता है। सो आज सिर्फ स्कैम के इंसिडेंट की बात नहीं करेंगे, सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिर ये स्कैम होता कैसे। सस्पिशियस लिंक्स या ऐप, अगर आप कोई भी ऐप डाउनलोड करते हो अपने फोन पर या फिर आप किसी भी लिंक पर क्लिक करते हो, तो बहुत इजी चांस क्रिएट हो जाता है आपका अकाउंट खाली होने का। एंड सेकंड थिंग, फेक कॉल्स और ओटीपी ट्रिक्स, ये कुछ ऐसे ट्रिक्स हैं जो स्कैमर्स हमेशा इस्तेमाल करते हैं और सक्सेसफुल भी हो जाते हैं। फोन एक्सेस लेकर बैंकिंग डिटेल्स तक पहुंच जाना बहुत ही इजी हो गया है आजकल स्कैमर्स के लिए। सो अपनी पर्सनल डिटेल्स इतनी पर्सनल रखे कि कोई और उसका एक्सेस ही ना कर पाए। और अगर बात करें स्कैम की, तो बचना कैसे आखिर स्कैम से। सबसे पहले जो भी अननोन लिंक्स आपको मिलते हैं, कभी भी उस पर क्लिक ना करें। सेकंड थिंग, ओटीपी पिन या फिर बैंकिंग इन्फॉर्मेशन कभी शेयर ना करें। इसके साथ ही हमेशा अपने फोन में स्क्रीन लॉक और सिक्योरिटी अपडेट जरूर रखें। अपने फोन में हमेशा ट्रस्टेड एप्स ही इंस्टॉल करें, कभी भी थर्ड पार्टी ऐप पर पूरी तरह से बिलीव ना करें। सो इसके साथ आज एक स्पेशल रिमाइंडर भी लेकर आई हूँ, जितने भी हमारे सीनियर सिटीजन हैं, उन्हें स्पेशली साइबर अवेयरनेस देना बहुत जरूरी है, क्योंकि अक्सर ये स्कैमर्स उन्हें इजी टारगेट बनाते हैं। सो बस यही कहना चाहते हैं कि अपने फैमिली मेंबर्स को थोड़ा सा सपोर्ट और थोड़ी सी अवेयरनेस जरूर दें। सो माय डियर लिसनर्स, ऑनलाइन दुनिया में ट्रस्ट से पहले वेरिफिकेशन जरूरी है। अलर्ट रहिए, सेफ रहिए, साथ ही सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM। मिलता है ब्रेक के बाद।

0: है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: दियारा, जिनके कंधों पर बचपन बीता, आज उन्हीं बूढ़े कंधों को अकेला मत छोड़ो। क्योंकि उनका साथ ही हमारा सुकून है।

0: पता नहीं, पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
1: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
0: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें।
2: किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें। और जुड़े साइबर सिपाही कैंपेन से, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ, बी अवेयर।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हाँ तो अर्ज किया है।
0: अर्ज
1: अभी करते हैं, सुनो
0: स्टार्ट।
1: स्पैम कॉल करके आजकल दिमाग खा जाते हैं।
0: वाह वाह वाह वाह।
1: कोई फर्जी रिश्तेदार तो कोई फर्जी ऑफिसर बनकर हमें डांट देते हैं। चुप रहो, आगे सुनो। मैं कहता हूँ कि बैंक की डिटेल्स OTP सब दे दूंगा।
0: अच्छा,
1: बस मेरी शायरी सुन लो।
0: फिर
1: ये सुनते ही पहली फुर्सत में वो फोन काट देते हैं।
0: अरे वाह, तुम्हारी शायरी का कुछ तो फायदा हुआ। अब तुम बोलते रहो, हम चलते हैं।
1: अरे,

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: सोशल मीडिया पे प्राइवेसी टाइट रखो, अपनी लाइफ में डॉक्यूमेंट्री मत बनाओ, और हाँ, लाइफ में ड्रामा कम फोकस ज्यादा रखो।
3: अरे भाई, इतनी तेज रफ्तार में कहाँ जा रहा है?
4: भाई मैं तो लंबी रेस का घोड़ा हूँ, रफ्तार से ही जाऊंगा।
3: अरे भाई रुक तो जा, धीरे चलेगा तो दूर तक जाएगा, वरना हॉस्पिटल के बिल ही भरता रह जाएगा।
5: सड़क पर चलते वक्त स्पीड का रखें खास ध्यान, किसी भी लापरवाही से मत बनिए हॉस्पिटल के मेहमान, क्योंकि आपकी सुरक्षा है आपकी जिम्मेदारी।
0: रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।
6: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

0: 89.6 FM.
1: कुछ छक्के
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं.
3: कुछ हटके
4: आशा इस पंजाब.

जितना हम इस टेक्नोलॉजी के पीछे भाग रहे हैं ना, एक दिन ये हमें अपने पीछे भगाएगी। क्योंकि भाई अगर बात की जाए टेक्नोलॉजी की, तो टेक्नोलॉजी स्मार्ट हो रही है, इसलिए हमें भी एक्स्ट्रा अलर्ट रहने की जरूरत है। वेलकम बैक टू रेडियो महारानी, मैं हूँ अर्जेंटली आपके साथ और शो चल रहा है मॉर्निंग एक्सप्रेस, जहाँ पर आज मैं कैसे शॉकिंग इंसिडेंट लेकर आई हूँ जो हुआ है AI के थ्रू। सो एक शॉकिंग साइबर फ्रॉड केस सामने आया है, जो AI डीप फेक वीडियो का यूज करके एक बिजनेसमैन के आधार से लिंक्ड मोबाइल नंबर को चेंज कर दिया गया। और इतना ही नहीं, इसके बाद फ्रॉडस्टर ने न्यू बैंक अकाउंट खोलकर लोन भी ले लिया। तो देखा कितना बड़ा फ्रॉड हो सकता है, वो भी एक AI से बनाई डीप फेक वीडियो की वजह से। सो अगर इस स्कैम की बात की जाए ना, तो चलिए सबसे पहले ये जानते हैं आखिर स्कैम हुआ क्या। सबसे पहले AI जनरेटेड फेक वीडियो बनाया गया, और इतना ही नहीं आधार डिटेल्स को चेंज कर दिया गया, मोबाइल नंबर चेंज हुआ, फ्रॉड लोन अप्रूव कर लिया गया, और बस हो गया सबसे बड़ा स्कैम। अगर इस स्कैम की बात की जाए ना, तो यहाँ एक चीज बहुत कॉमन है, वो है डीप फेक वीडियो। तो ये डीप फेक वीडियो आखिर होता क्या है? सबसे पहले डीप फेक एक AI टेक्नोलॉजी है, जिसमें आप किसी का भी फेक वीडियो या फिर आवाज क्रिएट कर सकते हो बहुत आसानी से। सो अब आपको करना क्या है, अब आपको इस स्कैम से बचकर रहने की जरूरत है। सबसे पहले आपको अपना आधार और बैंक अलर्ट रेगुलरली चेक करने हैं, और इतना ही नहीं अननोन वेरिफिकेशन कॉल को हमेशा अवॉइड करना है, अपनी पर्सनल डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन शेयर कभी नहीं करने हैं, एंड साथ ही सस्पिशियस एक्टिविटी दिखे तो इमीडिएटली रिपोर्ट करें। ये तो हम सबको पता है कि AI कितना पावरफुल है, इसलिए अवेयरनेस उससे भी ज्यादा पावरफुल होनी चाहिए। सो माय डियर लिसनर्स, डिजिटल दुनिया में स्मार्ट रहना ही सेफ्टी है। सो अलर्ट रहे, सेफ रहे, साथ ही सुनते रहे रेडियो महारानी 89.6 FM। मिलते हैं इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

0: मिलना है तो थोड़ी दूरी छोड़ दूं क्या, कुछ इश्क जता दिया है शाही से थोड़ा सा इश्क।
1: आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जबान पर।
2: तेरे प्यार का तो पता नहीं, पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
3: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
2: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें। किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
4: और जुड़े साइबर सिपाही कैंपेन से, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 एफएम। तो अब से बी सेफ, बी अवेयर।
5: चल अर्जुन, शुरू हो जा।
6: हाँ तो अर्ज किया है।
5: अर्ज
6: अभी करते हैं, सुनो।
5: इरशाद,
6: कॉल करके आजकल दिमाग खा जाते हैं।
5: वाह वाह वाह वाह,
6: कोई फर्जी रिश्तेदार तो कोई फर्जी ऑफिसर बनकर हमें डांट देते हैं। चुप रहो, आगे सुनो। मैं कहता हूँ कि बैंक की डिटेल्स, ओटीपी सब दे दूंगा।
7: अच्छा, बस मेरी शायरी सुन लो।
5: फिर
6: ये सुनते ही पहली फुर्सत में वो फोन काट देते हैं।
5: अरे वाह, तुम्हारी शायरी का कुछ तो फायदा हुआ। अब तुम बोलते रहो, हम चलते हैं।
6: अरे, बाय। हेलो।

0: हर शाम जब तुम घर लौटते हो, माँ की नजरें दरवाजे पर टिकी रहती है। पापा के सवालों में सख्ती से ज्यादा फिक्र होती है और छोटे भाई की वो मुस्कान जो सिर्फ तुम्हें देखकर खिल उठती है। सोचो अगर कभी ये मुस्कान इंतजार में ही रह जाए।
1: सफर लंबा हो या छोटा, हेलमेट पहने, हाई स्पीड में गाड़ी ना चलाएं और अपनों की हंसी को बचाएं। हेलमेट सिर्फ आपकी सुरक्षा नहीं, अपनों की खुशियों की गारंटी है।
2: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान हो। लोगों के कुछ भी कह देने से खुद को कमजोर मत समझ लेना,
2: कमाल तुम, बेमिसाल तुम, लाजवाब हो।
1: क्योंकि आप क्या हो वो सिर्फ आप जानते हो। सो

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही। यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: सोशल मीडिया पे प्राइवेसी टाइट रखो, अपनी लाइफ में डॉक्यूमेंट्री मत बनाओ, और हाँ, लाइफ में ड्रामा कम फोकस।

0: मंजिल सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो सफर की कद्र करते हैं। कभी कभी एक छोटी सी लापरवाही पूरी कहानी बदल देती है। हेलमेट कोई बोझ नहीं, यह आपकी समझदारी का सबसे बड़ा सबूत है।
1: तो अगली बार सफर पर निकलने से पहले इस छोटी सी समझदारी को अपने सिर पर जरूर रखिए, क्योंकि आपकी एक सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
2: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: बार का।
1: यहाँ हमें ऑफिस से हाफ डे तक नहीं मिलता और इस एम्प्लॉय को मिल गया इतना स्पेशल गिफ्ट। वेलकम बैक टू रेडियो महारानी, मैं हूँ आरजे अंशले आपके साथ और शो चल रहा है मॉर्निंग एक्सप्रेस, जहाँ पर आज का मैं सोशल स्यापा लेकर आई हूँ। ये सोशल स्यापा देख करना हर एम्प्लॉय का खून जलने वाला है, बिकॉज जॉब सेटिस्फेक्शन का लेवल तब अलग ही होता है जब कंपनी अप्रिसिएशन भी ग्रैंड हो। सो भाई, यहाँ पर एक इंसिडेंट आया है सामने, जहाँ पर चाइना की कंपनी ने अपने एम्प्लॉय को मोटिवेट और रिटेन करने के लिए एक यूनिक इनिशिएटिव लेकर दिया है। जैसे कि कंपनी ने डिसाइड किया है कि लॉन्ग टर्म लॉयल एम्प्लॉयज जितने भी है ना, उन्हें फ्री फ्लैट गिफ्ट किए जाएंगे। और भाई, इसके लिए क्राइटेरिया बनाया गया है पूरा। जो भी एम्प्लॉय 5 साल अपने कंप्लीट कर चुका है इस कंपनी में, उन्हें एम्प्लॉय एलिजिबिलिटी के अंदर रखा जाएगा और इतना ही नहीं, उन्हें फ्लैट दिए जाएंगे उनके ऑफिस के पास। साथ ही करोड़ की वैल्यू वाले होम्स हैं ये सारे, ऐसे वैसे घर नहीं है। सो भाई, बहुत ही अच्छे एक लेविश गिफ्ट इन्हें मिल चुका है। सो भाई, आज के सोशल स्यापा से हमें ये मैसेज जरूर मिलता है, एम्प्लॉय की लॉयल्टी की वैल्यू जरूर करें, बेटर वर्क लाइफ बैलेंस जरूर प्रोवाइड करें एंड अपने एम्प्लॉयज को अप्रिशिएट जरूर करें। आई नो सैलरी इम्पोर्टेंट है, पर अप्रिसिएशन और रिस्पेक्ट एम्प्लॉयज को ट्रूली कनेक्टेड फील कराता है। ऐसे आइडियाज सिर्फ वर्क प्लेस नहीं, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप भी बिल्ड करते हैं। सो माय डियर लिसनर्स, अगर आपका बॉस खड़ूस है तो फटाफट से जाइए, उन्हें आज वाला इंसिडेंट बताइए और उन्हें ये भी बताइए कि एक एम्प्लॉय की लॉयल्टी को वैल्यू करना कितना ज्यादा जरूरी है, तो दैट कि उनकी कंपनी भी प्रॉफिट में आ सके। सो ऐसे ही सोशल स्यापा आपके साथ लाते रहूंगे, लेकिन इस म्यूजिक ब्रेक के बाद, तब तक एंजॉय कीजिए 66 ट्रैक, बने रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM के साथ।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: अपनी वाइफ को हैकर्स और रोड के माइकल शुमा को वनबी से बचा के रखो। हैकर्स ऐसे फिशिंग करते हैं जैसे हम फिर समोसे का पोस्टर देख के दौड़ते हैं। और तुम शेड लिंक मत खोलना, वरना तुम्हारा डेटा उड़ जाएगा इतनी स्पीड से कि गूगल मैप्स भी बोल देगा रिकैलकुलेटिंग लाइफ। पासवर्ड स्ट्रॉन्ग रखो, पासवर्ड 123 मत लिखना, ये देख के तो हैकर भी बोल देगा भाई इतना आसान क्या। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगाओ, एप्स अपडेटेड रखो, वरना स्कैमर्स पार्टी मनाकर तुम्हारे ही अकाउंट में नाचने लगेंगे।

0: सचिन ये क्या कर रहा है तू?
1: क्या हो रहा है भाई? हा?
2: पापा रोमांटिक सीन लिख रहा हूँ।
1: यहाँ किस तरह बीच सड़क पर नाच कर
2: फील कर रहा हूँ।
1: अरे फील क्या कर रहा है डफर, सब लोग देख रहे हैं।

0: मलयाली क्रिश्चियन है वो। जैसी
1: हाँ तो अर्ज किया है।
2: ओहो, अर्ज होता है अर्ज।
1: कर रहे हैं आप, सुनो तो
2: इरशाद।
1: स्कैम कॉल करने वालों का फोन हमारे नंबर पर आ गया।
2: तुम्हारे नंबर पे?
1: हाँ जी।
2: अच्छा,
1: और उन्होंने पूछा क्या?
2: क्या पूछा?
1: हाँ, पैसे दे दो वरना कार ठोकने के जुर्म में आपका बेटा जेल जाएगा, उन्होंने ये बताया।
2: क्या बात कर रहे हो?
1: हाँ, हमने कहा भाई सिंगल हूँ मैं, ना तो मेरा कोई बेटा है ना मेरी कोई कार है।
2: अच्छा,
1: हमारी लाइफ में खटारा जी साइकिल है वो भी बेकार है।
2: बिल्कुल तुम्हारी तरह। ओ पागल, तुम्हें कहना चाहिए था वो भी उधार ली हुई है।
1: नहीं नहीं, रेंट पे है, ईएमआई पे।
2: अब तुम बोलते रहो, हम सबको बता कर आते हैं कि स्कैम कॉल्स को वैसे ही इग्नोर करें जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हारी कॉल को करती है।
1: इज्जत का फालूदा कर दिया यार।
2: बाय।
1: सुनो तो, कहाँ चली?
2: बाय।

0: तेरे प्यार का तो पता नहीं, पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
1: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
0: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें। किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
2: और जुड़े हैं साइबर सिपाही कैंपेन से, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ, बी अवेयर।

तो बहुत सारी मस्ती के बाद, बहुत सारी अपडेट्स के बाद और बहुत सारी ट्रेंडिंग म्यूजिक के बाद फाइनली अब टाइम हो गया मेरा यहाँ से जाने का। और सुबह 7 बज रही थी, अब 10 बजने वाले हैं। जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि मेरा इंतजार जरूर कीजिएगा। आप फिर मिलेंगे कल सेम टाइम सेम प्लेस ओनली ऑन रेडियो मारन 89.6 FM पर। लेकिन तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, साथ ही एंजॉय कीजिए रेडियो महारानी के मॉर्निंग एक्सप्रेस के साथ बाकी शोज को, और बने रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM के साथ।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही। यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: अपनी वाइफ को हैकर्स और रोड के माइकल शुमाकर वानाबी से बचा के रखो। हैकर्स ऐसे फिशिंग करते हैं जैसे हम फिर समोसे का पोस्टर देख के दौड़ते हैं। और तुम शेडन लिंक मत खोलना, वरना तुम्हारा डेटा उड़ जाएगा इतनी स्पीड से कि गूगल मैप्स भी बोल देगा रिकैलकुलेटिंग लाइफ। पासवर्ड स्ट्रॉन्ग रखो, पासवर्ड 123 मत लिखना, ये देख के तो हैकर भी बोल देगा भाई इतना आसान क्या। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगाओ, ऐप्स अपडेटेड रखो, वरना स्कैमर्स पार्टी मनाकर तुम्हारे ही अकाउंट में नाचने लगेंगे।

0: 89.6 FM
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं।
3: कुछ हटके
4: चाय सिर्फ जुबान ही नहीं बल्कि दिलों को छू जाती है। होती तो सिर्फ एक कप है पर बातें दिल खोल कर हो जाती हैं।
5: पुराने दोस्त और भूले बिसरे किस्से हंस टी स्टॉल की चाय जब भी पियो रिश्तों में नए जायके घोल जाती है।
6: यारों का 48 साल पुराना चाय का अड्डा सुबह 5 बजे से रात 8 बजे तक हंस टी स्टॉल गोपी कॉलोनी चौक ऋषि मार्केट नियर लक्ष्मी नारायण मंदिर।

इसी गाने के साथ आप सभी का स्वागत है मेरे शो में, यानी कि फरीदाबाद की गलियों से। यहाँ दोस्तों हम बात करते हैं मौसम के बारे में, जहाँ 10:07 हो रहे हैं और इस टाइम 33 डिग्री सेल्सियस तापमान शहर का बना हुआ है। बात करें कल की, तो कल काफी ज्यादा दिनों बाद इंतजार के बाद बारिश हुई, लेकिन उमस भी रही क्योंकि धूप निकलने से बारिश का कुछ ज्यादा फायदा नहीं हुआ। अभी तो बारिश का मौसम है, आज भी यही मौसम कहता है कि बारिश होगी। फिलहाल अभी धूप निकली है, बारिश के बाद अगर धूप ना निकले तो थोड़ी सी राहत मिलते जरूर नजर आती है। देखते हैं आज भी बारिश होती है, क्या होता है क्या नहीं इसका तो पता कुछ देर बाद ही चलेगा। बाकी ऐसी भी चर्चाएं होती रहेंगी, उससे पहले एक और खूबसूरत ट्रैक ओनली ऑन रेडियो महारानी।

0: सुनना सुनना।
1: जिनके कान संगीत सुनना पसंद करते हैं वो रेडियो महारानी 89.6 के अलावा और कुछ नहीं सुनते हैं।
2: अरे रफ्ता रफ्ता देखो आग मेरी लड़ी है।

इसी गाने के साथ एक बार फिर से लौट आए लेकर के शो यानी कि फरीदाबाद की गलियों से। यहाँ दोस्तों बात करते हैं जहाँ इतने साइबर फ्रॉड्स हमें होते नजर आते हैं। इसी बीच हम सब जानते हैं कि अगर व्हाट्सएप पे APK फाइल रिसीव हो तो उसे आपके ओपन नहीं करना। किसी भी अनवांटेड नंबर से या फिर किसी ग्रुप में ऐसी APK फाइल दिख जाए तो प्लीज़ उसे ओपन मत कीजिए। हाल फिलहाल शहर में APK फाइल ओपन करने से एक शख्स के साथ 800,000 का फ्रॉड होते नजर आए। एक्चुअली फ्रॉडर साइबर स्कैमर्स APK फाइल के जरिए उसमें वायरसेस आपके फ़ोन में भेज देते हैं कि आपका फ़ोन क्लोन कर लिया जाता है, हैक कर लिया जाता है और आपके सबकी फ़ोन की डिटेल्स उन तक पहुंच जाती है, चाहे वो बैंकिंग डिटेल्स हो, चाहे अदर पासवर्ड्स हो और चाहे OTT जो रिसीव होने वाले हैं OTP प्लेटफॉर्म्स उन पर भी उन्हीं की हैकिंग होती है। प्लीज़ APK फाइल्स को ओपन मत कीजिए जिससे कि बचा सके, और अगर कभी गलती से हो भी जाए तो तुरंत 1930 पर कॉन्टैक्ट करें ताकि आपके अकाउंट से निकला हुआ पैसा तुरंत ही फ्रीज किया जा सके और आपका पैसा आपको वापसी मिल सके। बाकी चर्चा होती रहेंगी, उससे पहले एक और ट्रैक।

0: है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान हो। लोगों के कुछ भी कह देने से खुद को कमजोर मत समझ लेना,
2: कमाल तुम, बेमिसाल तुम, लाजवाब हो।
1: क्योंकि आप क्या हो वो सिर्फ आप जानते हो। सो

इसी गाने के साथ एक बार फिर से लौट आए हैं लेकर के शो, यानी कि फरीदाबाद की गलियों से। यहाँ दोस्तों मैं बात करूँ, जैसे कि आप सब जानते हैं कि रेनी सीजन, मानसून की शुरुआत, और मानसून की शुरुआत की अगर बात की जाए तो प्लांटेशन ड्राइव्स हम लोगों को बिल्कुल रन करनी चाहिए। चाहे हम लोग को एक एक दो दो कुछ मिनिमम क्वांटिटी प्लांट्स भी लगाएं तो कोई दिक्कत नहीं, बस उन प्लांट्स की केयर करें जिससे कि वो पौधे बड़े हो सके, छांव दें, ऑक्सीजन दें और शहर भर में जो पॉल्यूशन की दिक्कत आती है उसको कंट्रोल किया जा सके। मानसून सीजन तो एक बात और कहना चाहूँगा, देखिए यार जब हम लोग मानसून होता है तो रोड्स पे कई जगहों पर बहुत ज़्यादा पानी भर जाता है। इस पानी में आपसे ये कहूँगा प्लीज़ इतनी ज़्यादा रैश ड्राइविंग मत कीजिए जिससे कि आसपास टू व्हीलर्स या पैदल जाने वाले जो शहरवासी उन पर पानी की छीड़े जाए, पानी बौछार जाए, जिससे कि उन्हें भी दुख हो और आप तो अपना निकल जाएंगे, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन जो पैदल जा रहे हैं उन्हें बहुत दिक्कत आती है ऐसे टाइम पे। तो प्लीज़ इतनी स्पीड कंट्रोल करके रखें जिससे कि हमारे जान से किसी को कुछ दिक्कत ना हो। बाकी ऐसी चर्चा होती रहेंगी, उससे पहले एक और ट्रैक।

0: जिंदगी का सफर कितना भी हसी हो, एक गलती और सब खत्म।
1: ये सड़कें तुम्हारी कहानियाँ नहीं सुनती, इन्हें सिर्फ तुम्हारी समझदारी दिखती है। इसलिए हाई स्पीड में गाड़ी चलाने से पहले एक बार जरूर सोचे, आपको किसी न्यूज़पेपर के पेज की हाईलाइट बनना है या अपनी खुद की कहानी का राइटर।
2: आपकी सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: साइबर ठगी से बचने के लिए अपनाएं कुछ सरल उपाय।
1: किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ फोन कॉल पर OTP, UPI, पिन कोड और CVV शेयर ना करें। ATM बूथ से पैसे निकालते समय अनजान व्यक्ति की मदद ना लें।
0: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हो गया शुरू तो अर्ज किया है।
0: ओहो अर्ज होता है अर्ज।
1: कर रहा हूँ तुम सुन लिया करो बस।
0: इरशाद
1: अरे आगे खाली हो जाएगी।
0: क्या
1: बोल कर ये सारी भीड़ अंदर बुला लेते हैं।
0: कौन है?
1: रोडवेज वाले।
0: ओके ओके।
1: रोडवेज वाले भैया सीट पर चार सवारी तो अपनी गोदी में भी तीन बच्चे बिठा लेते हैं।
0: अरे हाँ यार उस दिन तो लोरी गाकर सुला भी रहे थे।
1: क्या बात कर रहे
0: हो? हाँ
1: आगे सुनो।
0: सुनाओ।
1: रोडवेज की शक्तियों का हम करते हैं कुछ इस तरह इस्तेमाल। लस्सी बनाने के लिए रोडवेज में दही लेकर बैठ जाते हैं।
0: वैसे दिमाग का दही हो रखा है और ऊपर से तू भी। मैं तो चली तू बोलता रहा।
1: अरे एक ग्लास तो पीती जा सुन।

0: 69.6 FM.
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं.
3: कुछ हटके.
4: ऑफिस स्ट्रेस से लेकर बैक पेन तक और एंजाइटी से लेकर हेयर फॉल तक एक ही है सोल्यूशन, कायरेली आयुर्वेदिक सेंटर फरीदाबाद, जिन्हें है 35 सालों का आयुर्वेदा एक्सपीरियंस और जहां होती है हर दर्द की छुट्टी. यहां मिलती है अभ्यंगम थेरेपी, चार हाथों से की जाने वाली वॉर्म ऑयल थेरेपी जो स्ट्रेस को मेल्ट करे और स्किन को ग्लो दे, पोटली थेरेपी, वॉर्म हर्बल पोटली मसाज जो मसल पेन और स्टिफनेस को करे वैनिश, शिरोधरा थेरेपी, वॉर्म ऑयल का जेंटल स्ट्रीम जो माइंड को रीसेट करे और आपको दे सुकून की नींद.
5: और सिर्फ यही नहीं, दे ऑल्सो स्पेशलाइज इन पंचकर्मा ट्रीटमेंट, वेट लॉस मैनेजमेंट, पेन मैनेजमेंट, स्किन डिसऑर्डर्स, हाइपरटेंशन एंड ब्लड शुगर.
6: तो आप टेंशन किस बात की, जुड़े कायरेली आयुर्वेदिक सेंटर से. हाउस नंबर 409, सेक्टर 15, नियर गेट नंबर 3, फरीदाबाद, हरियाणा. और अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9650680900 और पाएं 25% का डिस्काउंट. सो कम एंड ज्वाइन कायरेली आयुर्वेदिक सेंटर एंड टेक अ डीप ब्रीथ.

इसी गाने के साथ एक बार फिर से लौट आया हूँ लेकर के शो यानी कि फिल्मी फ्लेवर। यहाँ दोस्तों चर्चा कर रहे हैं आज सिनेमा के गलियारे से कि लास्ट वीकेंड कौन कौन सी नई कहानियां सिनेमा घरों में रिलीज होते नजर आई, कौन सी पायदान पर हैं और किन जोड़ियों को किन कहानियों को अच्छा खासा प्यार मिलता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही आने वाले वक्त में कौन कौन सी नई कहानियां आने वाली हैं कुछ नई जोड़ियों के साथ, रिल रोमांस कॉमेडी सस्पेंस और एक्शन से भरपूर साउथ इंडस्ट्री से लेकर के हिंदी पट्टी और पंजाब इंडस्ट्री के गाने तो कहीं होगा हॉलीवुड का जबल एक्शन। ये सारी चर्चाएं करने वाला हूं जहां ट्रेलर टीजर और गानों की होंगी चर्चाएं। ये सब बताने से पहले यानी कि सिनेमा के गलियारे में घुमाने से पहले सुना देता हूं कुछ धमाकेदार से गाने ओली ऑन रेडियो महारानी 89.6 एफएम।

इसी गाने के साथ एक बार फिर से लौट आए हैं लेकर के शो यानी कि फिल्मी फ्लेवर। यहाँ बात करते हैं विशाल भारद्वाज को। ऑस्कर्स की वोटिंग बॉडी में जैसे इनवाइट मिला तो फैंस बहुत ज्यादा खुश नजर। इंडियन सिटल 6 फिल्म प्रोफेशनल्स को एकेडमी ने शॉर्टलिस्ट किया। इस मेंबरशिप के साथ उन्हें फ्यूचर में ऑस्कर अवार्ड के लिए वोट करने का हक भी मिलेगा। इंडिया से इन्वाइटेड नेम्स में विशाल भारद्वाज, दीपा भाटिया, ए श्रीकर प्रसाद, ईका लखानी, दिलीप शंकर और अवनीत कौर शामिल हैं। ये लिस्ट फिल्म डायरेक्शन, एडिटिंग, कॉस्ट्यूम डिजाइन, कास्टिंग और एनिमेशन जैसे डिफरेंट क्राफ्ट को कवर करती है। एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट्स एंड साइंस ने इस राउंड में 529 न्यू मेंबर्स को इनवाइट किया। इस ब्रॉड लिस्ट में हॉलीवुड एक्टर्स और फिल्म मेकर्स के साथ इंटरनेशनल टैलेंट भी शामिल हैं। विशाल भारद्वाज इंडियन सिनेमा के एक हाईली रिस्पेक्टेड फिल्म मेकर कंपोजर हैं और इस इनवाइट को ग्लोबल कंट्रीब्यूशन की रिकग्निशन माना जा रहा है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है हम इंडियंस के लिए भी, पूरे इंडियन सिनेमा के लिए। बाकी ऐसी चर्चा होती रहेंगी, उससे पहले एक और ट्रैक।

0: साइबर ठगी से बचने के लिए अपनाएं कुछ सरल उपाय।
1: किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ फोन कॉल पर OTP, UPI, पिन कोड और CVV शेयर ना करें। ATM बूथ से पैसे निकालते समय अनजान व्यक्ति की मदद ना लें।
0: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित

इसी गाने के साथ एक बार फिर से लौट आया हूँ लेकर के शो यानी कि फिल्मी फ्लेवर। यहाँ दोस्तों अब हम बात करते हैं एक और बढ़िया कहानी बढ़िया स्टार के बारे में। मिर्जापुर द मूवी का टीजर रिलीज किया गया हाल फिलहाल और फिल्म की थिएटरिकल रिलीज हम सब जानते हैं 4 सितंबर 2026 फिक्स की गई। टीजर में पंकज त्रिपाठी आरिफ अज़हर और देवेंदु फिर से मिर्जापुर के ब्लड सोक्ड वर्ल्ड में लौटते दिखते हैं। मेकर ने टीजर के साथ बिगर भौकाल का प्रॉमिस दिया और ट्रेलर स्टाइल प्रीव्यू में पावर स्ट्रगल और रिवेंज का टोन हाईलाइट हुआ। पब्लिक रिलीज के मुताबिक टीजर 2 मिनट 23 सेकंड का था और फिल्म को गुरमीत सिंह डायरेक्ट करते आ रहे हैं और जहां पुनीत कृष्णा इसकी कहानी को लेकर क्या हुआ। अब इस कहानी की बात की तो कास्ट में जितेंद्र कुमार रसिका दुग्गल श्वेता त्रिपाठी श्रेया जैसे नाम शामिल है। कहानी को हिंदी तेलुगु में भी रिलीज किया जाने वाला है। टीजर और पोस्टर दोनों ने इंडिकेट किया कि यह वेब सीरीज से सिनेमा तक का प्रॉपर बिग स्क्रीन एक्सपेंशन होने वाला रहेगा। इंतजार इसकी रिलीजिंग का, बाकी ऐसी चर्चाएं चलती रहेंगी। उससे पहले एक और खूबसूरत ट्रैक।

0: है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान हो। लोगों के कुछ भी कह देने से खुद को कमजोर मत समझ लेना,
2: कमाल तुम, बेमिसाल तुम, लाजवाब हो।
1: क्योंकि आप क्या हो वो सिर्फ आप जानते हो। सो

0: शुरू हो जा।
1: हाँ तो शुरू होते हैं और अर्ज करते हैं।
0: अर्ज नहीं होता, अर्ज अर्ज।
1: शायरी पे ध्यान लगाओ।
0: इरशाद।
1: रोडवेज बस जैसा अपना हाल है यारों।
0: मेरा नहीं तुम्हारा ही होगा,
1: सबका ये। सब कुछ टूटा फूटा है फिर भी अपना रुतबा है यारों।
0: ये बात तो सही है।
1: और बस की याद आती है जब भी लाइफ में कुछ समझ नहीं पाता हूँ।
0: कैसे कैसे?
1: कंडक्टर बोलता है आगे बढ़ो तो मैं मोटिवेट हो जाता
0: है। अरे यार वो तो मैं कह रहा था कि मुंह उठाकर बस से उतरो और आगे बढ़ो। अब तुम बोलते रहो, मैं तो चली गई, मेरी बस आ गई।
1: सुनो सुनो, हेलो

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: 89.6 FM
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं।
1: कुछ हटके
3: चाय सिर्फ जुबान ही नहीं बल्कि दिलों को छू जाती है। होती तो सिर्फ एक कप है पर बातें दिल खोल कर हो जाती हैं।
4: पुराने दोस्त और भूले बिसरे किस्से हंस टी स्टॉल की चाय जब भी पियो रिश्तों में नए जायके घोल जाती है।
5: यारों का 48 साल पुराना चाय का अड्डा सुबह 5 बजे से रात 8 बजे तक हंस टी स्टॉल गोपी कॉलोनी चौक ऋषि मार्केट नियर लक्ष्मी नारायण मंदिर।

इसी गाने के साथ एक बार फिर से लौट आया हूँ लेकर के शो यानी कि फिल्मी फ्लेवर। यहाँ दोस्तों अब हम बात करते हैं सिनेमा के गलियारों से रमेश तन्ना एक नई कहानी के बारे में। रमेश तन्ना लेटेस्ट अनाउंस थिएट्रिकल रिलीज की अगर बात की जाए जो 25 जून 2027 को थिएटर्स में रिलीज होने जा रही है। दिलजीत दुसांज हेडलाइन कर रहे हैं, पंजाबी एंटरटेनर अमरजीत सिंह सरों डायरेक्ट करते नजर आए। हौसला रख वाली टीम की रियूनियन कहा जा रहा है इस कहानी को। मेकर्स ने रीसेंट थिएट्रिकल रिलीज ही बताया और जहां लगभग एक साल का इंतजार भी है। फिल्म में दिलजीत के साथ सोनम बाजवा शहनाज गिल का नाम भी रिपोर्ट हुआ। प्रोडक्शन में पवन गिल अमन गिल धर्मेंद्र सिंह का जिक्र होता नजर आया। पंजाबी कॉमेडी एंटरटेनर की अगर बात की जाए यहाँ पे इसको कॉमेडी पोजीशन पर रखा गया है। कवरेज के मुताबिक एक ब्लॉकबस्टर टीम की वापसी आने वाली कोलैबोरेशन है। देखते हैं ये रीयूनियन क्या धमाल मचाने वाली है। बाकी ऐसी अभी चर्चाएं करता रहूंगा। उससे पहले एक और खूबसूरत ट्रैक ओनली ऑन रेडियो महारानी।

0: बॉयफ्रेंड हूँ इसलिए गुलाम हूँ।
1: सुन भाई सुरेंद्र।
2: हाँ भाई सुरेंद्र।
1: भाई गर्लफ्रेंड मुझे फोन करती है, अगर फोन बिजी जाए तो किससे बात कर रहे थे। सोचा था शॉपिंग कराने ले जाऊंगा, 500 रुपए का खर्चा करवाएगी, 5000 का बिल बनवा दिया। सुबह कहती है आई लव यू, दिन में कहती है तुम बदल गए, शाम होती कहती तुम मुझसे प्यार नहीं करते। मैंने पूछा मैं तुम्हारा क्या हूँ, कहती तुम मेरे सब कुछ हो। मैंने कहा सब कुछ में क्या आता है, कहती तुम मुझे ड्राइवर हो, तुम मेरे एटीएम हो। मतलब तो सिंपल यही हुआ ना कि मैं तो उसका गुलाम हूँ।
2: सही कह रहा तुरेंद्र, बॉयफ्रेंड कितना भी कर ले रहेगा तो गुलाम ही।

जाने के साथ एक बार फिर से लौट आए हैं लेकर के शो यानी कि फिल्मी फ्लेवर। यहाँ बात कर रहे हैं दोस्तों सिनेमा के पिटारे से प्रहर के बारे में, द उज्जवल निकम स्टोरी की। जहाँ 7 अगस्त को सिनेमा घरों में स्ट्रीम होने जा रही है राजकुमार राव फिल्में उज्जवल निकम का रोल प्ले करते नजर आएंगे। कहानियां 26/11 के बाद जो दुश्मन हमारे सैनिकों ने पकड़ा था उस पर ट्रायल पर बेस कोर्ट रूम ड्रामा कहानी आ रही है। फिल्म का प्लॉट उज्जवल निगम के करियर के सबसे इम्पोर्टेंट केस या नहीं का सब ट्रायल के अराउंड घूमता है। इसमें वामिका गबी, जहरी बहलावत, सिकंदर खेर और तरुण शर्मा भी की रोल्स में नजर आएंगे। अगले महीने इस कहानी को रिलीज किया जाएगा यानी कि पूरे एक महीने बाद इंतजार रहेगा राजकुमार राव के कोर्ट रूम ड्रामा कहानी की रिलीजिंग का। बाकी चर्चाएं होती रहेंगी।

0: जिंदगी का सफर कितना भी हसीन हो, एक गलती और सब खत्म।
1: ये सड़कें तुम्हारी कहानियाँ नहीं सुनती, इन्हें सिर्फ तुम्हारी समझदारी दिखती है। इसलिए हाई स्पीड में गाड़ी चलाने से पहले एक बार जरूर सोचे, आपको किसी न्यूज़पेपर के पेज की हाईलाइट बनना है या अपनी खुद की कहानी का राइटर।
2: आपकी सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: सर आपका KYC अपडेट करना है, मैंने आपको एक लिंक भेजा है, उस पर क्लिक कीजिए, वरना आपका अकाउंट और ATM दोनों ही बंद हो जाएगा।
1: बट मेरा KYC तो ऑलरेडी अपडेटेड है।
2: सावधान, अनजाने कॉल्स, फर्जी टैक्स, लिंक और जाली ऐप से अपना पिन, OTP, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे सावधान तो नहीं होगा नुकसान। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

इसी गाने के साथ एक बार फिर से लौट आया हूँ लेकर के शो यानी कि फिल्मी फ्लेवर। यह हम बात करते हैं टीवी टीआरपी के बारे में, जहां गंगा माई की बेटियां ने 1.9 रेटिंग के साथ टॉप स्पॉट ले लिया, वसुधा 1.8 और बात की जाए क्योंकि सास भी कभी बदी 2.5 के साथ टॉप 5 में बदी रही, अनुपमा वीक टॉप 5 से बाहर होती नजर आई। एक बहुत ही बड़ा टीआरपी गेम चेंजर नजर आया है कि गंगा माई की बेटी ने सभी सीरियल्स को पीछे करते नजर आया और वहीं अनुपमा तो यार टॉप 5 से बाहर होती नजर आई, यानी कि व्यूअर्स और फैंस इस वक्त गंगा माई की बेटियों को अच्छा सपोर्ट करते नजर आ रहे हैं। तो वहीं बात की जाए वसुधा और क्योंकि सास भी कोई बहुत ही 5 लिस्ट में शामिल होते नजर आए। बाकी ऐसी चर्चाएं होती रहेंगी, उससे पहले एक और खूबसूरत सा ट्रैक ओनली ऑन रेडियो महारानी।

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चालान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
1: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट, थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
1: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
2: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हो गया शुरू तो अर्ज किया है।
0: ओहो अर्ज होता है अर्ज।
1: कर रहा हूँ तुम सुन लिया करो बस।
0: इरशाद
1: अरे आगे खाली हो जाएगी।
0: क्या
1: बोल कर ये सारी भीड़ अंदर बुला लेते हैं।
0: कौन है?
1: रोडवेज वाले।
0: ओके ओके।
1: रोडवेज वाले भैया सीट पर चार सवारी तो अपनी गोदी में भी तीन बच्चे बिठा लेते हैं।
0: अरे हाँ यार उस दिन तो लोरी गाकर सुना भी रहे थे।
1: क्या बात कर रहे
0: हो? हाँ।
1: आगे सुनो।
0: सुनाओ।
1: रोडवेज की शक्तियों का हम करते हैं कुछ इस तरह इस्तेमाल। लस्सी बनाने के लिए रोडवेज में दही लेकर बैठ जाते हैं।
0: वैसे दिमाग का दही हो रखा है और ऊपर से तू भी। मैं तो चली तू बोलता रहा।
1: अरे एक गिलास तो पीती जा। सुन।

0: 69.6 FM
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।
4: अरे अरे रुक जाओ जरा, कैलेंडर चेक किया क्या आज? क्योंकि आज की तारीख सिर्फ डेट नहीं, फुल ऑन फिल्मी अपडेट है बॉस। कभी इसी दिन किसी हीरो ने एंट्री मारी थी ऐसे कि पूरा थिएटर सीटी मार उठा था।
5: मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिश।
4: और कभी किसी ने प्यार का ऐसा सीन दिया कि लोगों ने बारिश का वेट ही करना शुरू कर दिया।
6: प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है।
4: और कभी किसी ने ऐसा स्टाइल मारा कि आज तक वो उस टाइम का ट्रेंड बन गया।
6: आवारा हूँ, आवारा हूँ।
4: समझे या और समझाऊं? ये तारीख सिंपल नहीं है, ये तो फुल ऑन फिल्मी गोल्ड माइन है। तो सुनने के लिए सिनेमा का स्वैग, सुनना न भूले सिनेमा का कैलेंडर विद आरजे मोनिक, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

इसी गाने के साथ एक बार फिर चला रहा हूँ लेकर के शो यानी कि फिल्मी फ्लेवर। यहाँ दोस्तों अब बात हो चला है सिनेमा के कैलेंडर की, चर्चा की जाए तो आज यहाँ बात करेंगे बॉलीवुड के उस एक्टर की जिनकी एनर्जी को वर्ड्स में डिस्क्राइब करना मुश्किल है। एक ऐसा स्टार जो स्क्रीन पर आते ही पूरा माहौल बदल देता, कभी रोमांटिक, कभी फ्यूरलेस वॉरियर, तो कभी रैपर और कभी क्रिकेट लेजेंड। हर रोल में पूरी तरह ढल जाता है स्टार, स्टाइल हो, कॉन्फिडेंस या एक्शन का जुनून। आज बात करेंगे बॉलीवुड के पावरफुल परफॉर्मर की, कौन सा है ये पावरफुल परफॉर्मर स्टार जिसकी एक्टिंग में एक अलग ही जादू है, एक अलग ही जलवा है कि जो किरदार जिस भी जोन का किरदार दे दीजिए ऐसा निभाते हैं कि हर कोई उनके किरदार का और उस कहानी का फैन हो जाता। बताऊंगा उसका नाम भी, लेकिन उससे पहले सुना देता हूँ कुछ धमाकेदार से गाने।

0: शादी का इरादा है,
1: शादी
0: का इरादा है,
1: शादी ना पापा ना,
0: मगर क्यों?
1: शादी तो बर्बादी है।
0: क्या कहती हो?
1: हो जाती आजादी है।
0: नहीं नहीं
1: बाय बाय।
0: सुनो तो, सुनो तो।

इसी गाने के साथ एक बार फिर से लौट आए हैं लेकर के शो यानी कि फिल्मी फ्लेवर। यहाँ दोस्तों बात करते हैं दोस्तों आज एक ऐसे स्टार की जिसका आज बर्थडे। रणवीर सिंह 2010 में अपनी डेब्यू फिल्म बैंड बाजा बारात से बॉलीवुड में एंट्री करें। दिल्ली के एनर्जेटिक लड़के यानी कि बिट्टू शर्मा के रोल ने ऑडियंस का दिल जीत लिया और पहली फिल्म के लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट मेल डेब्यू भी मिला। इसके बाद उन्हें कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, हर फिल्म के साथ उन्होंने खुद को चैलेंज किया और हर नए कैरेक्टर में कुछ अलग दिखाया। रणवीर सिंह के करियर की कुछ सबसे यादगार फिल्मों की बात की जाए, गोलियों की रासलीला, रामलीला, बाजीराव मस्तानी, पद्मावत, गली बॉय और 83। पद्मावत में अलाउद्दीन और गरीबुद में मुराद का कैरेक्टर उनके करियर के सबसे आइकॉनिक परफॉर्मेंसेस में माना जाता और अपना टाइम आएगा सिर्फ एक गाना नहीं बल्कि युद्ध का एंथम बनता नजर आ। इनके बारे में और भी चर्चाएं करता रहूंगा, उससे पहले सुना देता हूं एक और बढ़िया सा गाना ओनली ऑन रेडियो महारानी।

0: इसी गाने के साथ एक बार फिर से लौट आए हैं लेकर के शो यानी कि फिल्मी फ्लेवर। और आज सिनेमा के कैलेंडर में हम बात कर रहे हैं रणवीर सिंह के बारे में, जिनका आज बर्थडे भी। रणवीर सिंह के अगर किरदारों की बात की जाए तो अपना लुक, बॉडी लैंग्वेज और बोलने का अंदाज पूरी तरह बदल देते हैं। इसी डेडिकेशन की वजह से उन्हें अपनी जनरेशन का सबसे वर्सेटाइल एक्टर्स में गिना जाता है। अपनी एक्टिंग के साथ साथ उनका बिंदास फैशन सेंस और अनलिमिटेड एनर्जी भी उनकी पहचान बन चुकी है। आज रणवीर सिंह एक सुपरस्टार नहीं बल्कि नए दौर के सिनेमा का एक पावरफुल फेस है। आप बताइए, रणवीर सिंह का कौन सा करेक्टर, बिट्टू शर्मा, बाजीराव खिलजी या फिर मुराद या कपिल देव का आपको पसंद आया? बताइएगा जरूर हमारे व्हाट्सएप नंबर 9654896896 पर। बाकी ऐसी अभी चर्चाएं होती रहेंगी, लेकिन आज नहीं, आपसे मुलाकात होगी कल के दिन सेम टाइम सेम जो कर मोड़े बारे। तब तो सुन रहे रेडियो हरानी 89.6 FM को छट।
1: हर भंग का रंग जमा हो चकाचक, फिर लो पान चबाए। अरे ऐसा झटका लगे जिया पे पुनर्जन्म हो जाए।

हाय कैसा सीधा सादा मैं कैसा भोला भाला हाँ। अरे कैसा सीधा सादा मैं कैसा भोला भाला जाने कौन घड़ी में पड़ गया पढ़े लिखो।

0: घर का छोटा हूँ इसलिए निकम्मा हूँ।
1: सुन भाई सुरेंद्र।
2: हाँ भाई सुरेंद्र।
1: मैं घर का छोटा हूँ जिसको सब निकम्मा बोलते हैं। मम्मी बोलती है काम कर लिया कर, रोज सुबह पानी की बोतल फ्रिज में रख देता हूँ, रिमोट मैं ढूंढता हूँ, पापा का फोन मैं चार्ज करता हूँ, जब सब सोते हैं तब लाइट बंद मैं करता हूँ, जब घर में कुछ गलत होता है सब बोलते हैं इसी ने करा होगा, मेरी बातों को कोई सीरियसली नहीं लेता, मार्केट से सामान मैं ही लेकर आता हूँ, फिर भी सब मुझे ही कहते हैं।
2: सही कह रहे तुरेंद्र, कितना भी कर ले, घर का छोटा बेटा रहेगा तो निकम्मा ही।

0: सोचो, एक आम सा लड़का जो बैंगलोर की सड़कों पर बस कंडक्टर की नौकरी करता था, क्या कभी सोच सकता था कि एक दिन पूरी दुनिया उसे थलाइवा के नाम से जानेगी। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ, एंड आप सुन रहे हैं कामयाबी की उड़ान। और आज हम कामयाबी की उड़ान में बात कर रहे हैं सुपरस्टार थलाइवा रजनीकांत की। 12 दिसंबर 1950, यही दिन था जब बैंगलोर में शिवाजी राव गायकवाड़ का जन्म हुआ। एक सिंपल मराठी फैमिली, लिमिटेड पैसे और बचपन से ही स्ट्रगल्स का पहाड़। माँ का साया जल्दी उड़ गया और जिंदगी ने बहुत जल्दी जिम्मेदारियां दे दी। कूली का काम किया, कारपेंटर बने और फिर बैंगलोर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज में बस कंडक्टर की जॉब मिली। लेकिन उनके अंदर एक एक्टर छुपा था जो हर टिकट के साथ अपना सपना भी बांट रहा था। उनका टिकट देने का स्टाइल इतना अलग था कि लोग सिर्फ उन्हें देखने के लिए बस में चढ़ जाते थे। शायद तभी किस्मत ने डिसाइड कर लिया था कि ये आदमी सिर्फ बस नहीं पूरी फिल्म इंडस्ट्री चलाएगा। और कैसे बने वो सुपरस्टार, उस तक पहुंचने से पहले और भी बहुत सी कहानियां बाकी है, तो करेंगे सुपरस्टार यानी कि थलाइवा रजनीकांत के बारे में और भी बात। आप सुन रहे हैं कामयाबी की उड़ान। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ।
1: ओ चन्नती कुड़ी, ओ चन्नती कुड़ी।

नीतू जट नू पसंद होगी, गर्मी च ठंड होगी, मैं तेरा चॉकलेट तू मेरी खंड होगी, मैं भी मलंग होया तू भी मलंग होगी, तिरछी नजर तेरी आशकाली पंग होगी।

0: फिल्म मेरा नाम जोकर का ये गाना इशारा करता है कि सड़क नियम सिर्फ गाड़ी चलाने वालों के लिए नहीं है बल्कि पैदल चलने वालों के लिए भी है। इसीलिए राइट लेफ्ट राइट देखकर ही रोड पार करें, वो भी जीब्रा क्रॉसिंग से।
1: आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी।
0: सड़क के किनारे हमेशा अपने सीधे हाथ की तरफ चलें, वो भी बिना फोन इस्तेमाल किए हुए, ताकि आपके परिवार को कभी इस फिल्म का दूसरा गाना न गाना पड़े।
1: जाने कहां गए वो दिन।
2: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी।

0: बच्चों को स्कूल से लाने में लेट हो जाती, इसीलिए रेड लाइट जंप करी।
1: बारिश तेज होने से पहले घर पहुंच जाऊं, बस इसीलिए गाड़ी तेज चला रहा था।
2: मेरा घर तो यही पास में है, इसलिए रॉन्ग साइड से जा रहा हूँ। और अंकल मेरी तो साइकिल है, कोई गाड़ी थोड़ी है।

हर किसी की लाइफ में एक ना एक दोस्त जरूर होता है जो उसका बहुत ज्यादा करीबी होता है और कभी कभी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ एक दोस्त दे देता है। स्वागत है आप सभी का फिर से रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ एंड आप सुन रहे हैं कामयाबी की उड़ान। और आज हम कामयाबी की उड़ान में बात कर रहे हैं द वन एंड ओनली सुपरस्टार थलाइवा यानी कि रजनीकांत की। रजनीकांत के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उनका एक दोस्त था राज बहादुर। उन्होंने उनके अंदर के एक्टर को पहचाना। उनके दोस्त ने कहा तू बस कंडक्टर नहीं हीरो बनने के लिए पैदा हुआ है। और बस रजनीकांत ने सब कुछ दाव पर लगा दिया। चेन्नई के मद्रास फिल्म इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लिया। पैसे तक दोस्त ने दिए थे। वहीं उनकी मुलाकात हुई लेजेंडरी डायरेक्टर के बालाचंद्र से। उन्होंने रजनीकांत को देखा और कहा तमिल सीखो तुम्हारी किस्मत तमिल सिनेमा में लिखी है। फिर क्या था 1975 में फिल्म अपूर्वा रागंगल से डेब्यू हुआ। छोटा रोल था लेकिन स्क्रीन प्रेजेंस इतनी बड़ी थी कि सबकी नजर सिर्फ उन पर टिक गई। हीरो नहीं विलन नहीं कुछ अलग एक ऐसा चेहरा जो सिनेमा का रूल बुक ही बदलने वाला था। और आगे क्या हुआ करेंगे इसके बारे में बात मगर उससे पहले आप सभी के लिए रेडियो महारानी 89.6 पर ये गाना। आप सुन रहे हैं कामयाबी की उड़ान। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ।

0: रिड्यूस, रीयूज, रीसाइकिल, यही है वो RRR जिन्हें फॉलो करके हमारा शहर एनवायरमेंट से ऑस्कर जीत सकता है। पर ये 3R आखिर है क्या? रेडियो महारानी आपको आसान भाषा में समझाता है। रिड्यूस यानी प्लास्टिक से बनी चीजों का कम से कम इस्तेमाल, रीयूज यानी जो दोबारा काम आ सके सिर्फ उसी प्लास्टिक का इस्तेमाल, रिसाइकिल यानी वेस्ट प्लास्टिक को फेंकने के लिए सिर्फ ब्लू डस्टबिन का इस्तेमाल।
1: FM 89.6 का रेजोल्यूशन यही है कि सिंगल यूज प्लास्टिक अब ऑप्शन में ही नहीं है।
2: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी।

इंडियन सिनेमा इंडस्ट्री में जब भी कोई इंसान आता है तो या तो वो हीरो बनता है या फिर वो विलन बनता है या फिर सपोर्टिंग रोल्स में रहता है। मगर एक इंसान अपना सिग्नेचर बना जाता है, यानी कि अपना एक स्टाइल बना जाता है, और आज हम उसी इंसान की बात कर रहे हैं। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ, एंड आप सुन रहे हैं कामयाबी की उड़ान। सिगरेट हवा में उछाल कर मुंह में पकड़ना, सनग्लासेस को स्टाइल से घुमाना, ये सिर्फ एक्टिंग नहीं थी, ये रजनीकांत का सिग्नेचर था। शुरुआत में उन्हें विलन और सपोर्टिंग रोल्स मिले, लेकिन ऑडियंस ने उन्हें हीरो बना दिया। फिल्म थी बिल्ला, मुरत्तु कालई और फिर बादशाह। यहीं से रजनीकांत सिर्फ एक्टर नहीं रहे, एक फिनोमिना बन गए। साउथ इंडिया में लोग उनके पोस्टर पर दूध चढ़ाने लगे, उनके कटआउट्स मंदिर जैसे पूजे जाने लगे। उनकी फिल्म रिलीज होना मतलब फेस्टिवल, टिकट मिलना मतलब लॉटरी। उन्होंने सिर्फ सिनेमा नहीं जीता, लोगों के दिलों में परमानेंट एड्रेस बना लिया, और तब दुनिया ने कहा ये एक्टर नहीं, ये इंसान एक इमोशन है। और आगे कैसे वो सक्सेस की सीढ़ी चढ़ते चले गए, करेंगे इसके बारे में और भी बात। मगर उससे पहले आप सभी के लिए रेडियो महारानी 89.6 पर एक गाना सुनिए। इस गाने को वापस आकर कामयाबी की उड़ान में रजनीकांत जी के बारे में और भी बातें चलती रहेंगी मेरे दोस्त।

जिस इंसान को लोग भगवान की तरह पूछते हैं उसकी जिंदगी में भी अंधेरे आते हैं। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ एंड आप सुन रहे हैं कामयाबी की उड़ान। और आज कामयाबी की उड़ान में हम लोग बात कर रहे हैं द थलाइवा द लेजेंड रजनीकांत की। 90s के एंड और साल 2000 में रजनीकांत ने स्पिरिचुअलिटी की तरफ गहरा रुख लिया। हिमालयस जाना, मेडिटेशन करना, सिंपल लाइफ जीना, ये सब उनकी रियलिटी थी। हेल्थ इश्यूज भी आए। 2011 में उनकी तबीयत इतनी खराब हुई कि पूरा देश उनके लिए दुआ कर रहा था। सिंगापुर तक ट्रीटमेंट के लिए जाना पड़ा। इसी बीच पॉलिटिक्स में आने की बातें भी गर्म हो रही थी। फैंस चाहते थे कि थलाइवा अब स्क्रीन नहीं सिस्टम बदले, लेकिन रजनीकांत ने हर बार एक ही बात कही, जो होगा वक्त बताएगा। एक सुपरस्टार जो फेम के बीच भी अंदर से एक सिंपल इंसान बना रहा, और कैसे उनका जेलर तक का सफर आज भी रूल कर रहा है, करेंगे इसके बारे में बात मगर इस गाने के बाद। रेडियो महारानी 89.6 पर आप सभी के लिए ये गाना। आप सुन रहे हैं कामयाबी की उड़ान। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ।

सड़क सुरक्षा नियमों को अगर अपनाओगे तो खुद के साथ साथ दूसरों की भी जान बचाओगे, क्योंकि दुर्घटना के हैं तीन यार, नशा, नींद और रफ्तार। सदा सुरक्षित रहो। अरूर सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ।
1: अभी भी टाइम है बेटा जी, गाड़ी में फ्यूल और सड़क किनारे कूड़ा जलाना छोड़ दे।
2: A few moments later,
0: माँ, मुझे सब दिखाई दे रहा है।
1: बेटा जी, जितना जल्दी निकालोगे सॉल्यूशन, उतना ही कम होगा पॉल्यूशन। रेडियो महारानी द्वारा की गई ये इको फ्रेंडली घोषणा, ताकि इस प्लेनेट पर हम देख पाएं अपना ब्राइट फ्यूचर।

अक्सर लोग अपनी बढ़ती उम्र की वजह से परेशान रहते हैं, मगर उसी के बीच कुछ लोग आते हैं जो कहते हैं एज सिर्फ नंबर होती है, और रजनीकांत ने इसका जिंदा सबूत दिया। स्वागत है आप सभी का फिर से रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ। आप सुन रहे हैं कामयाबी की उड़ान, और कामयाबी की उड़ान में आज हम लोग बात कर रहे हैं सुपरस्टार थलाई हुआ यानी कि रजनीकांत की। जब लोग रिटायरमेंट का सोचते हैं ना, तब रजनीकांत ब्लॉकबस्टर देते हैं, कबाली, रोबोट 2.0, दरबार और फिर जेलर। साल 2023 में जेलर ने बॉक्स ऑफिस हिला दिया। नई जनरेशन ने भी मान लिया असली स्वैग क्या होता है। 72 प्लस की एज में भी उनकी एंट्री पर थिएटर्स फट जाते हैं। उनका डायलॉग, उनका वॉक, उनका ऑरा, सब कुछ टाइमलेस है। बस कंडक्टर से मेगा स्टार, स्ट्रगल से सुपर स्टारडम और इंसान से लेजेंड। रजनीकांत सिर्फ नाम नहीं, एक एरा है। और कुछ लोग कहते हैं लेजेंड्स रिटायर नहीं होते, वो बस और आइकॉनिक होते जाते हैं। तो ये थी कहानी सुपरस्टार थलाई हुआ रजनीकांत की। तो आपको ये कहानी कैसी लगी हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करके ज़रूर बताइएगा। हमारा नंबर है 9654896896। फिलहाल आप सभी के लिए रेडियो महारानी 89.6 पर ये गाना, और मुझे दीजिए इजाज़त। मैं मिलूंगा आप सभी से सोमवार से शुक्रवार शाम 5 से 8। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए और सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM, कुछ हटके।

वेलकम यू ऑल आर लिसनिंग रेडियो महारानी 89.6 एफएम को छट के शो लेकर आ गई हूँ बिजनेस अनप्लग्ड, जहाँ मैं हर दिन एक नए टाइकून की कहानी आपको सुनाती हूँ। ये वो शो है जहाँ ब्रांड्स के शाइनी पोस्टर्स के पीछे छुपी कहानियाँ बिना फिल्टर आप तक पहुँचती हैं। तो आज मैं बात करने वाली हूँ कुछ यादों की, आदतों की, और उन चीजों की जो चुपचाप हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाती हैं। आज का एपिसोड शायद आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करे, क्योंकि आज मैं आपसे बार बार एक चीज का नाम नहीं लूंगी, पर आप फिर भी उसे पहचान लेंगे। सोचिए घर में कोई चीज टूट जाए, कुर्सी का पाया, अलमारी का कोना, बच्चों की कॉपी का कवर या फिर जूता, हम क्या कहते हैं? हम प्रोडक्ट का नाम नहीं लेते, हम सोल्यूशन का नाम लेते हैं। ये वो प्रोडक्ट है जो दुकान के शेल्फ से ज्यादा हमारे दिमाग में रहता है। ये वो चीज है जिसके बारे में हम कभी सोचते नहीं जब तक जरूरत ना पड़े, और जब पड़ती है तो हम ब्लाइंडली भरोसा कर लेते हैं। ब्रांडिंग का असली मैजिक यही होता है, जब ब्रांड को याद करना नहीं पड़ता, वो खुद याद आ जाता है। आज के शो में मैं बात करूंगी एक ऐसे इंडियन ब्रांड की जिसने सिर्फ मार्केट कैप्चर नहीं किया बल्कि लैंग्वेज चेंज कर दी। एक ऐसा ब्रांड जिसका नाम बोलते ही लोगों को समझ आ जाता है काम पक्का हो जाएगा बॉस। इस ब्रांड ने हमें सिखाया कि मार्केटिंग सिर्फ दिखावा नहीं होती, कभी कभी मार्केटिंग सिर्फ एक सिंपल थॉट होती है। सोचिए कैसे एक नॉर्मल सी चीज हर घर की बेसिक नीड बन जाती है, कैसे एक प्रोडक्ट सिर्फ प्रोडक्ट नहीं रहता, एक हैबिट बन जाता है। इस कहानी में ग्लैमर कम है पर ग्राउंडिंग ज्यादा है, क्योंकि इस कहानी का हीरो स्टार्टिंग से हीरो नहीं था। वो किसी बड़ी बिजनेस फैमिली से नहीं आया, उसके पास ना पैसा था, ना पहचान, ना शॉर्टकट, सिर्फ एक चीज थी, ऑब्जर्व करने की आदत। उसने देखा लोग क्या यूज करते हैं, कहाँ परेशान होते हैं, और किस चीज पे सबसे ज्यादा भरोसा चाहिए। और यहीं से शुरू होती है एक ऐसी कहानी जहाँ एक आम सी चीज इंडिया के हर शहर, हर गांव, हर वर्कशॉप, हर घर का हिस्सा बन जाती है। पर ये सब ओवरनाइट नहीं हुआ, इस ब्रांड के पीछे सालों का पेशेंस है, गलतियाँ हैं, और एक ऐसा सफर है जहाँ कभी कभी जिंदगी ने हीरो को चपरासी की कुर्सी पर भी बिठाया। हाँ, आज जिस इंसान की कहानी मैं सुनाने वाली हूँ, उसने जिंदगी में ऑफिस के दरवाजे भी खोले हैं और गोडाउन के ताले भी। उसने नीचे से ऊपर आने का शॉर्टकट नहीं लिया, उसने पूरा रास्ता चला। शायद इसीलिए उसका बनाया हुआ जोड़ सिर्फ चीजों का नहीं, लोगों के भरोसे को भी जोड़ता है। आज के पूरे एपिसोड में मैं बात करूंगी कैसे एक अननोन इंसान इंडस्ट्री के रूल बुक को बदल देता है, कैसे एक ब्रांड एडवर्टाइजमेंट से ज्यादा कॉन्वर्सेशन बन जाता है, और कैसे एक सिंपल आइडिया हजारों करोड़ की कंपनी की फाउंडेशन बन जाता है। पर इस कहानी का सबसे इंटरेस्टिंग हिस्सा अभी बाकी है मेरे दोस्त। अभी वक्त है गाने का, गाने के बाद फिर से लौटूंगी। शो है बिजनेस अनप्लग्ड।

0: जिंदगी का सफर कितना भी हसीन हो, एक गलती और सब खत्म।
1: ये सड़कें तुम्हारी कहानियाँ नहीं सुनती, इन्हें सिर्फ तुम्हारी समझदारी दिखती है। इसलिए हाई स्पीड में गाड़ी चलाने से पहले एक बार जरूर सोचे, आपको किसी न्यूज़पेपर के पेज की हाईलाइट बनना है या अपनी खुद की कहानी का राइटर।
2: आपकी सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: वेलकम अगेन, यू ऑल आर लिसनिंग रेडियो महारानी 89.6 एफएम। कुछ हटके शो है बिजनेस अनप्लग्ड। और अभी थोड़ी ही देर पहले मैं बात कर रही थी एक ऐसे ब्रांड की जिसका नाम हम प्रोडक्ट के लिए नहीं सोल्यूशन के लिए यूज करते हैं। आज मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ा सा पीछे जाकर सोचें। जब ये ब्रांड मार्केट में आया था तब न सोशल मीडिया था, न इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, न रील्स, नो हैशटैग्स, फिर भी ये घर घर तक पहुँचा। कैसे? क्योंकि इसने शोर नहीं मचाया, इसने सिर्फ काम किया और धीरे धीरे लोगों ने काम करते हुए प्रोडक्ट को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया। क्योंकि ग्रेट ब्रांड्स अनाउंस नहीं करते, वो स्लोली सेटल हो जाते हैं जैसे घर के किसी कोने में रखी पुरानी यादें। अब वक्त आ गया है उस नाम का जिसका जिक्र मैं इतने टाइम से कर रही हूँ, वो ब्रांड जिसने ग्लू को ग्लू नहीं रहने दिया, वो ब्रांड जिसने जोड़ को प्रॉमिस बना दिया। वो ब्रांड है फेविकॉल। और फेविकॉल सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं है, ये पिडिलाइट इंडस्ट्री की पहचान है। अगर पिडिलाइट एक बॉडी है तो फेविकॉल उसकी जान है। फेविकॉल ने सिर्फ मार्केट शेयर नहीं लिया, उसने मार्केट की सोच बदल दी। उस वक्त जब ग्लू बिना नाम के बिकता था, जब क्वालिटी से ज्यादा प्राइस इम्पोर्टेंट था, तब फेविकॉल ने बोला हम ब्रांडेड होंगे और प्राउडली होंगे। इंडिया में किसी प्रोडक्ट का कैटेगरी बन जाना बहुत रेयर होता है और जब बन जाता है तो हिस्ट्री लिखी जाती है। एक ऐसा वक्त आया जब एधेसिव एक टेक्निकल शब्द नहीं था और फेविकॉल एक हाउस होल्ड वर्ड। बुक्स के कवर, फर्नीचर, जूतों के सोल, घर की दीवारें, फेविकॉल हर जगह था लेकिन कभी लाउड नहीं था। और इस सक्सेस के पीछे एक चीज का बहुत बड़ा रोल था, स्टोरी टेलिंग थ्रू एडवर्टाइजिंग। फेविकॉल के एड्स कभी प्रोडक्ट नहीं बेचते थे, वो सोल्यूशन दिखाते थे। वो हंसाते थे, याद रह जाते थे और बिना बोले बोल देते थे ये जोड़ पक्का है। मार्केटिंग तब पावरफुल होती है जब वो प्रोडक्ट नहीं भरोसा बेचती है। लेकिन आज का एपिसोड सिर्फ ब्रांड की बात करने के लिए नहीं है, आज का एपिसोड उस इंसान के बारे में है जिसने ये ब्रांड दुनिया को दिया। वो इंसान जिसके पास शुरुआत में ना पैसा था, ना पावर, ना सरनेम का वेट, सिर्फ एक शार्प नजर थी जो मार्केट की प्रॉब्लम को पहचान सकती थी। फेविकॉल का जोड़ स्ट्रॉन्ग था क्योंकि इसका फाउंडेशन भी स्ट्रॉन्ग था। इस फाउंडेशन के पीछे जो इंसान था उसे दुनिया द फेविकॉल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानती है। उनका नाम था बलवंत राय कल्याण जी पारिक। 1925 में जन्मे बलवंत राय पारिक न बिजनेसमैन घर में पैदा हुए, न एंटरप्रेन्योर ट्रेनिंग के साथ आए। वो एक लॉ ग्रेजुएट थे और जिन्होंने कभी कोर्ट में प्रैक्टिस ही नहीं की। जिंदगी उन्हें मुंबई ले आई जहां इन्होंने कभी प्रिंटिंग प्रेस में काम किया तो कभी लकड़ी के एक व्यापारी के ऑफिस में चपरासी की नौकरी भी। सोचिए, जहां आज करोड़ का टर्नओवर है वही कहानी कभी गोडाउन के कोने से शुरू हुई थी। हर बड़ा एम्पायर कभी न कभी एक छोटे कमरे से शुरू होता है। बलवंत राय पारिक के लिए ये सिर्फ नौकरी नहीं थी, ये लर्निंग थी। उन्होंने ऑब्जर्व किया, मार्केट को समझा और ये जाना कि इंडिया को ऐसे प्रोडक्ट की जरूरत है जो सिंपल हो, स्ट्रांग हो और इजीली अवेलेबल हो। पर ये सिर्फ सोचना काफी नहीं था, असली टेस्ट तब आता है जब इंसान को जमीन पर उतारना हो और वहीं से शुरू होता है उनका बचपन, उनकी एडुकेशन, फैमिली बैकग्राउंड और बिजनेस का पहला कदम, द रियल जर्नी। बलवंत राय पारिक का सफर चपरासी की नौकरी से बोर्ड रूम तक कैसे पहुंचा ये मैं आपको बताऊंगी, लेकिन गाना सुनते हैं, गाने के बाद फिर से लौटूंगी। शो है बिजनेस अनप्लग्ड।
1: We back.

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही, यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: आज है साइबर सिक्योरिटी एंड रोड सिक्योरिटी का तंदूरी तड़का, जो ऐप्स आपके फोन से लोकेशन, कॉन्टैक्ट, फोटो, सबने हमेशा सब मांगे उन्हें बाय बाय बोलकर विदाई दे दो, और ईमेल्स लाइक क्लिक टू विन प्राइज और अकाउंट इज इन डेंजर या पार्सल इज अराइविंग, अरे मेरे भाई मैंने मैथ्स की किताब तक नहीं मंगाई, कौन सा पार्सल ला रहा है।

बिजनेस अनप्लग्ड, मैं हूँ गीत और मैंने आज बात की है एक ऐसे ब्रांड के बारे में जो ग्लू नहीं भरोसे का सिंबल बन चुका है और उस इंसान का नाम जिन्होंने इस ब्रांड को जन्म दिया, बलवंत राय कल्याण जी पारिक। पर आज हम स्पॉटलाइट से दूर जा रहे हैं, सीधा उनके बचपन में। 1925, गुजरात का महुआ कस्बा। न कोई बिजनेस एम्पायर, न कोई प्रिविलेज बैकग्राउंड, एक नॉर्मल गुजराती फैमिली जहां मेहनत को वैल्यू मिलती थी और सपने शोर मचाने से पहले चुपचाप पलते थे। बलवंत राय पारिक ने लॉ की डिग्री ली। लोग सोचते थे ये तो वकील बनेगा, कोर्ट में नाम कमाएगा, पर जिंदगी का प्लान कुछ और ही था। इन्होंने लॉ प्रैक्टिस कभी शुरू ही नहीं की। मुंबई आए और जो काम मिला उसे सीखने का मौका समझा। कभी डाइंग प्रिंटिंग प्रेस में जॉब, कभी लकड़ी के व्यापारी के ऑफिस में चपरासी की नौकरी। ये वो फेज होता है जहां ईगो नहीं सिर्फ सर्वाइवल काम करता है। उन दिनों वो अपनी वाइफ के साथ वेयर हाउस में रहते थे। लिमिटेड रिसोर्सेज लेकिन अनलिमिटेड ऑब्जर्वेशंस। वहीं इन्होंने देखा इंडिया में इंडस्ट्रीज को अच्छा केमिकल चाहिए और क्वालिटी प्रोडक्ट्स की कमी थी। यहीं से उनके दिमाग में बिजनेस का बीज पड़ा। इन्वेस्टर्स की मदद से इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम शुरू हुआ। साइकिल, पेपर डाइज, एरिका नट्स, जो समझा वही किया। जर्मनी की कंपनी के साथ काम, फॉरेन एक्सपोजर और मार्केट की रियल अंडरस्टैंडिंग। कभी कभी जॉब सिर्फ हमें पैसा नहीं बल्कि डायरेक्शन भी देती है। 1950s के मिड तक बलवंत राय पारिक रेडी थे जॉब सीकर से जॉब क्रिएटर बनने के लिए। पर असली टर्निंग पॉइंट अभी बाकी था मेरे दोस्त, वो मोमेंट जब इन्होंने डिसाइड किया कि अब सिर्फ ट्रेड नहीं मैन्युफैक्चर करना है। वो डिसीजन जिसने ग्लू को इंडिया का फेवरेट ग्लू बना दिया। ये स्ट्रगल और टीम बिल्डिंग की कहानी सुनाऊंगी मैं आपको थोड़ी देर में। गाना सुनते हैं, गाने के बाद फिर से लौटूंगी। शो है बिजनेस अनप्लग्ड।

वाकई में अगर दिल जिद्दी बन जाए तो क्या कुछ ना हो जाए। वेलकम बैक टू बिजनेस अनप्लग, मैं गीत हूँ और मैं बात कर रही हूँ फेविकॉल के जोड़ की कि कैसे एक चपरासी की नौकरी, वे हाउस की जिंदगी और लिमिटेड रिसोर्सेज के बीच एक एंटरप्रेन्योर धीरे धीरे तैयार हो रहा था। पर बिजनेस का सबसे टफ पार्ट आइडिया नहीं होता, एग्जीक्यूशन होता है। 1950s से 1960s का इंडिया, मैन्युफैक्चरिंग एक बड़ा रिस्क था, कैपिटल लिमिटेड, टेक्नोलॉजी फॉरेन और मार्केट अनप्रेडिक्टेबल। बलवंत राय पारिक ने सिर्फ ट्रेड पर डिपेंड रहना नहीं चाहा, इन्होंने डिसाइड किया अब जो बेच रहे हैं वो खुद बनाएंगे। ये डिसीजन आसान नहीं था, पैसे का प्रेशर, रॉ मटेरियल का इशू और सबसे बड़ा सवाल, क्या मार्केट एक्सेप्ट करेगी। बिजनेस में स्ट्रगल तब शुरू होता है जब डिसीजन सही हो पर टाइमिंग रिस्की हो। इस फेज में फैमिली सपोर्ट बहुत इम्पोर्टेंट था। उनके भाई सुशील पारिक और नरेंद्र पारिक बिजनेस का हिस्सा बनी, यहीं से टीम बनी। न कॉर्पोरेट कल्चर था, न फैंसी डेजिग्नेशन, सिर्फ ट्रस्ट था, क्लियर रोल्स थे और एक कॉमन विजन, क्वालिटी पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। अर्ली फेलियर्स भी आए, प्रोसेस इम्प्रूव करने पड़े, कस्टमर फीडबैक को सीरियसली लिया गया और धीरे धीरे प्रोडक्ट पर कॉन्फिडेंस बिल्ड होने लगा। बलवंत राय पारिक का लीडरशिप स्टाइल सिंपल था, ज्यादा बोलना नहीं है, ज्यादा काम करना है। स्ट्रॉन्ग टीम स्लोगन से नहीं, कंसिस्टेंसी से बनती है। इसी स्ट्रगल के बीच कंपनी ने पहला मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाया और यहीं से स्केल का रास्ता खुला। पर असली खेल अभी बाकी था, जब एक प्रोडक्ट सिर्फ वर्कशॉप से निकलकर हर घर तक पहुंच जाता है, जब नंबर्स बोलना शुरू करते हैं, टर्नओवर, एक्सपेंशन, ग्लोबल रीच। ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुआ और एक प्रोडक्ट से मल्टी ब्रांड एम्पायर कैसे बना, बताऊंगी आपको। लेकिन गाना सुन ले पहले, गाने के बाद फिर से लौटूंगी। शो है बिजनेस अनप्लग्ड।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: सीट बेल्ट टाइट रखो, स्पीड ब्रेकर को इग्नोर करोगे तो फ्रैक्चर। रोड की लेन और इंटरनेट की चेन दोनों मत तोड़ना। एक छोटी सी गलती और सब आउट ऑफ कंट्रोल। और बस याद रखो, अलर्ट रहो, सिक्योर रहो और हर दिन को सेफ मोड पर चलाओ।

साथ फिर से स्वागत है, शो है बिजनेस अनप्लग्ड। मैं बात कर रही हूँ फेविकॉल के जोड़ की, और अभी मैंने बात की थी थोड़ी ही देर पहले कैसे स्ट्रगल, राइट डिसीजंस और एक स्ट्रॉन्ग टीम ने बिजनेस की फाउंडेशन को सॉलिड बनाया। और अब बात करने वाली हूँ उस रिजल्ट की, क्योंकि बिजनेस में मेहनत तब होती है जब नंबर सामने आते हैं। शुरुआत में सिर्फ एक प्रोडक्ट, सिर्फ एक फैक्ट्री और सिर्फ एक विजन था, लेकिन जैसे जैसे मार्केट ने प्रोडक्ट पर भरोसा दिखाया, कंपनी ने स्केल करना शुरू किया। मुंबई से कंपनी का नेटवर्क बढ़ता गया इंडिया के अलग अलग स्टेट्स तक और फिर इंटरनेशनल मार्केट तक। आज कंपनी के प्रोडक्ट सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि 50 प्लस कंट्रीज में यूज होते हैं। फेविकॉल के साथ साथ और भी स्ट्रॉन्ग ब्रांड्स आए, इंस्टेंट एडहेसिव्स, वाटरप्रूफिंग सॉल्यूशन, कंस्ट्रक्शन केमिकल्स। स्मार्ट कंपनी एक प्रोडक्ट पर नहीं एक इकोसिस्टम पर काम करती है। टर्नओवर धीरे धीरे करोड़ से थाउजेंड ऑफ करोड़ तक पहुंच गया। स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग हुई, इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट बना और कंपनी इंडिया की मोस्ट रिस्पेक्टेड केमिकल ब्रांड्स में शामिल हो गई। आज बात करें प्रेजेंट की तो ये सिर्फ नंबर्स का गेम नहीं है, कंपनी इनोवेशन, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट और लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी पर फोकस कर रही है। मार्केट कैप लैक्स ऑफ करोड़ के आसपास, रिन्यू हर साल स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दिखा रहा है। ये सक्सेस लाउड नहीं है, ये डिसिप्लिन है। पर इस पूरी ग्रोथ स्टोरी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट सिर्फ पैसा नहीं है, असली सवाल ये है, इस सफर से नए एंटरप्रेन्योर्स क्या सीख सकते हैं और फाउंडर्स का नेक्स्ट जनरेशन के लिए क्या मैसेज है। अगर आप ये शो सुन रहे हो और मन में कहीं ये थॉट आ रहा है, मैं भी कुछ शुरू करना चाहता हूँ, तो समझ लीजिए आप ऑलरेडी राइट ट्रैक पर हैं। बलवंत राय पारी की कहानी हमें ये सिखाती है कि शुरुआत परफेक्ट होनी जरूरी नहीं होती, जरूरी होता है रुकना नहीं है। वो लॉ ग्रेजुएट थे पर लॉयर नहीं।

बने, वो चपरासी भी रहे पर वही नहीं रुके। लाइफ का फर्स्ट रोल आखिरी रोल हो ये जरूरी नहीं। नए एंटरप्रेन्योर्स के लिए कुछ सिंपल लेसन्स है बलवंत राय पारिक के। स्मॉल शुरू करो पर सोच क्लियर रखो। प्रोडक्ट से पहले प्रॉब्लम समझो। ब्रांडिंग लाउड नहीं ऑनेस्ट होनी चाहिए। टीम को ट्रीट करो जैसे फाउंडेशन। और सबसे इम्पोर्टेंट, पेशेंस रखो, क्योंकि ओवरनाइट सक्सेस सिर्फ रील में होती है, रियल सक्सेस को टाइम लगता है। और हाँ, फेलियर आएगा, कंफ्यूजन भी आएगा, लोग डाउट भी करेंगे, पर अगर आप अपने आइडिया पर चिपके रहें तो एक दिन दुनिया आपसे चिपक जाएगी जैसे फेविकॉल का जोड़। ये कहानी सिर्फ एक ब्रांड की नहीं थी, ये कहानी भरोसे की थी। मैं हूँ गीत और आप सुन रहे थे बिजनेस अनप्लग्ड। और ये कहानी हमें याद दिलाती है जो जोड़ सब्र से बनता है वो वक्त के साथ और भी ज्यादा मजबूत होता जाता है। मिलूंगी आपसे अगले एपिसोड में, तब तक आप सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके। कीप स्माइलिंग एंड कीप ग्रोइंग।

0: यार कभी खिड़की से जो ठंडी हवा आती थी ना, आज उसमें भी जहर घुला महसूस होता है।
1: क्योंकि तन्हा होकर भी ये हवा हमसे बहुत कुछ कहती है, हमारी गलतियों की सजा ये चुपचाप सहती है। अभी भी वक्त है इसे शुद्ध कर दुलार दे, इस धरती को उसकी खोई मुस्कान फिर से उधार दे।
2: रेडियो महारानी आप सभी से अपील करता है, अपनी खूबसूरत से जिंदगी को पॉल्यूटेड एयर से संकट में ना डालें और एनवायरनमेंट को पॉल्यूट होने से बचाएं।

0: 89.6 FM
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

कभी इमेजिन किया है एक ऐसी जगह जहाँ दूर दूर तक सिर्फ फूल ही फूल हो, ना ट्रैफिक का शोर, ना शहर की भागदौड़, बस पहाड़, बादल और हवा में घुली हुई फूलों की खुशबू। जैसे किसी पेंटर ने जमीन पर अपने सारे कलर्स गिरा दिए हों। वो कहा है कि हर जगह फूल हो जरूरी तो नहीं, कभी कभी एक जगह ही पूरी जिंदगी महका देती है। और इसी के साथ मैं हूँ आपकी दोस्त आरजे अंजलि, और आज कल्चर कारवा में हम चल रहे हैं एक ऐसी जगह जो सिर्फ देखी नहीं महसूस की जाती है। तो आइए आखिर जानते हैं ये जगह है कहाँ। आज बात कर रहे हैं वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क की, यानी कि हिमालयस की गोद में बसी एक खूबसूरत वैली जो कि इंडिया के उत्तराखंड में है। लगभग 12,000 फीट की हाइट पर बसी ये वैली सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट नहीं बल्कि नेचर की लाइफ पेंटिंग है। और सबसे मैजिकल बात, ये वैली साल भर नहीं खुलती, सिर्फ मॉनसून के कुछ महीनों में ये पूरी दुनिया कलर से भर जाती है। वो कहा है कि कुछ खूबसूरतियाँ परमानेंट नहीं होती, शायद इसलिए और भी खास लगती है। आज बात कर रहे हैं वैली ऑफ फ्लावर्स की, वापस आकर जानेंगे आखिर इस वैली की डिस्कवरी कैसे हुई। तब तक बने रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM के साथ।

0: तेरे प्यार का तो पता नहीं, पर तेरे साथ में स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
1: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
0: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें। किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
2: और जुड़े साइबर सिपाही कैंपेन से, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ, बी अवेयर।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान हो। लोगों के कुछ भी कह देने से खुद को कमजोर मत समझ लेना,
2: कमाल तुम, बेमिसाल तुम, लाजवाब हो,
1: क्योंकि आप क्या हो वो सिर्फ आप जानते हो।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। एक तेज हॉर्न के ट्रैफिक में सन्नाटा सा कर गई जब एम्बुलेंस के हॉर्न की आवाज कानों में पड़ गई। आज फिर एक जिंदगी इस ट्रैफिक में अपनी सांसों के लिए लड़ रही है जनाब। एम्बुलेंस को रास्ता देकर आप पूरा कर सकते हैं लाखों जिंदगियों के जीने का ख्वाब, क्योंकि एक छोटी सी मदद किसी की जिंदगी को बचा सकती है।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 एफएम द्वारा जनहित में जारी।
2: सदा सुरक्षित रहो, अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
3: मैं मस्त म्यूजिक सुनते हुए रोड क्रॉस कर रही थी, एटीट्यूड फुल, ध्यान जीरो। तभी एक बाइक वाले भैया ब्रेक मार के बोले, दीदी रोड क्रॉस कर रहे हो या रनवे पे कैटवॉक? भाई मैं तो इतना शॉक्ड हुई कि मेरे एक्सप्रेशन देखकर ट्रैफिक लाइट भी शर्मा के ग्रीन से रेड हो गई। मगर उस दिन समझ आया, फोन पॉकेट में, ध्यान रोड पे और स्पीड जीरो पे रखो। ज़ेब्रा क्रॉसिंग का यूज करो, लेफ्ट राइट लेफ्ट देखो, राइडर्स हेलमेट टाइट और ड्राइवर्स सीट बेल्ट राइट। हंसी मजाक अपनी जगह पर, सेफ्टी सबसे ऊपर।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: जिंदगी के भी ना कुछ रूल्स होते हैं, जिन्हें अगर फॉलो नहीं किया तो सीधे डिटेंशन। लेन डिसिप्लिन तो मेंटेन करना इज अ मस्ट। राइट का मतलब राइट, लेफ्ट का मतलब लेफ्ट। इतना भी रॉकेट साइंस नहीं है मेरी जान। बाइक पे दबंगगिरी करने से कूल तो बहुत लगते हैं, बट अगर यही दबंगगिरी तुम्हारी नेक्स्ट हॉस्पिटल ब्लॉक का रीजन बन गया ना, तो पूरा स्वैग टपरी का चाय बन जाएगा। और हाँ, हेलमेट हमेशा ऑन, सीट बेल्ट हमेशा टाइट, वरना मोए मोए मोमेंट तो गारंटीड है बाबू मोशाय। और अगर रील स्क्रॉल या सेल्फी लेने का ज्यादा ही मन कर रहा है तो साइड में रोक कर करो। याद रखो, रोड रूल्स फॉलो करोगे तो टेंशन फ्री और मस्त राइड गारंटीड है।
2: अरे भाई, इतनी तेज रफ्तार में कहाँ जा रहा है?
3: भाई मैं तो लंबी रेस का घोड़ा हूँ, रफ्तार से ही जाऊंगा।
2: अरे भाई रुक तो जा, धीरे चलेगा तो दूर तक जाएगा, वरना हॉस्पिटल के बिल ही भरता रह जाएगा।
4: सड़क पर चलते वक्त स्पीड का रखें खास ध्यान। किसी भी लापरवाही से मत बनिए हॉस्पिटल के मेहमान, क्योंकि आपकी सुरक्षा है आपकी जिम्मेदारी।
5: रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी। लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
6: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

89.6 FM पर मैं हूँ आरजे अंजलि आपके साथ और शो चल रहा है कल्चर कारवा, जहाँ आज हम बात कर रहे हैं वैली ऑफ फ्लावर्स की। और आज हमने जाना कितनी खूबसूरत हो सकती है कोई वैली, लेकिन अगर इस वैली की बात की जाए तो यहाँ तक पहुँचना ईजी नहीं, ट्रैक करना पड़ता है इस पूरी वैली तक पहुँचने के लिए। बीच में आते हैं पहाड़ी रास्ते, ठंडी हवा और कभी कभी बारिश। पर शायद यही स्ट्रगल की वजह से जब वैली सामने आती है तो आंखों को यकीन नहीं होता कि कोई वैली वाकई इतनी खूबसूरत हो सकती है जैसे नेचर ने मानो रिवॉर्ड दिया हो। अगर बात की जाए इस वैली की तो वैली ऑफ फ्लावर्स सिर्फ एक डेस्टिनेशन नहीं, ये रिमाइंडर है कि दुनिया में अब भी ऐसी जगहें हैं जहाँ नेचर इंसान से ज़्यादा पावरफुल लगता है। वो कहा है कि हर फूल की उम्र छोटी होती है पर उसकी खुशबू याद रह जाती है, बिल्कुल कुछ अफसानों की तरह। अगर कभी जिंदगी में बहुत भागदौड़ लगने लगे तो एक बार वैली ऑफ फ्लावर्स जरूर जाना। हो सकता है जो सुकून आप बाहर ढूंढ रहे हैं वो आपको इस वैली में मिल जाए। सो आज हमने बात की वैली ऑफ फ्लावर्स के बारे में। कल्चर कारवा में आज हमने जाना एक ऐसी जगह के बारे में जो अपनी महक से हमारी जिंदगी को और खूबसूरत बना देती है। कल फिर मिलेंगे एक और जगह, एक और कहानी और एक नए सफर के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। दिस इज योर आरजे अंजलि साइनिंग ऑफ।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: मैं मस्त म्यूजिक सुनते हुए रोड क्रॉस कर रही थी, एटीट्यूड फुल, ध्यान जीरो। तभी एक बाइक वाले भैया ब्रेक मार के बोले, दीदी रोड क्रॉस कर रहे हो या रनवे पे कैटवॉक? भाई मैं तो इतना शॉक्ड हुई कि मेरे एक्सप्रेशन देख के ट्रैफिक लाइट भी शर्मा के ग्रीन से रेड हो गई। मगर उस दिन समझ आया, फोन पॉकेट में, ध्यान रोड पे और स्पीड जीरो पे रखो। ज़ेब्रा क्रॉसिंग का यूज करो, लेफ्ट राइट लेफ्ट देखो, राइडर्स हेलमेट टाइट और ड्राइवर्स सीट बेल्ट राइट। हंसी मजाक अपनी जगह पर, सेफ्टी सबसे ऊपर।

0: सर आपका KYC अपडेट करना है, मैंने आपको एक लिंक भेजा है, उस पर क्लिक कीजिए, वरना आपका अकाउंट और ATM दोनों ही बंद हो जाएगा।
1: बट मेरा KYC तो ऑलरेडी अपडेटेड है।
2: सावधान, अनजाने कॉल्स, फर्जी टेक्स्ट, लिंक और जाली ऐप से अपना पिन, OTP, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे सावधान तो नहीं होगा नुकसान। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी। लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम है। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाए

0: आती हैं सांसें यहाँ, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: है रेडियो महारानी का।
1: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

0: 89.6 FM
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं।
3: कुछ हटके।
4: यो ब्रो, आज तो फ्राइडे है और फ्राइडे के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहता हूँ। देखो, मुझे करना कुछ नहीं है, बट एक्साइटमेंट इसलिए रहती है कि अब सैटरडे संडे आ रहा है। ऑल दो सैटरडे और संडे भी मेरा ऐसे ही जाता है जैसे कि सब लोगों का जाता है। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं बस ये बताने आया था कि मैं आ गया हूँ, मौसम को एंजॉय करो और गाने सुनो रेडियो महारानी पर। बस मैं यूँ गया और यूँ आया। फिलहाल आप लोगों के लिए गाना चला रहा हूँ, करण औजला उनके साथ है एक की, और आप हैं मेरे साथ रेडियो महारानी 89.6 पर।
5: मैं लाइक ही की औजला इस पंजाब

0: पंजाबी पॉप कल्चर।
1: ऐसा मौसम हो और गाने अच्छे अच्छे चल रहे हो तो फिर मजा ही आ जाता है। आई नो काफी लोगों को ऐसे तेज म्यूजिक अच्छे नहीं लगते, बट कुछ लोगों को तो अच्छे लगते हैं ना, तो सबकी फरमाइश चलाऊंगा मैं। करण औजला की आवाज में था ये गाना, और इसी गाने के साथ सभी का स्वागत है रेडियो महारानी 89.6 पर। और आज तो फ्राइडे है ब्रो, फ्राइडे को तो अगर आपके कोई प्लान्स है तो अच्छी बात है, नहीं है तो बना लो प्लान्स और मेरे को भी ले जाना अपने साथ। खैर अभी प्लान्स को साइड में रख देते हैं, मैं बस ये बताने आया हूँ कि मैं आप सभी के साथ आ गया हूँ अगले 3 घंटों के लिए, और अगले 3 घंटे में हम लोगों ने खूब सारी बातें करनी है। और हाँ, आज मेरे साथ स्टूडियो में एक गेस्ट भी जुड़ने वाले हैं, और एक सिंगर को बुलाया खास आप लोगों के लिए, ऑल द वे फ्रॉम गुड़गांव। तो गुड़गांव से आ रहा है एक सिंगर जिसका नाम है अबीर तलवार, और बहुत ही अमेजिंग सिंगर है, तो आप लोग उसको मिस मत करना। और हाँ, इसी के साथ साथ आज क्या क्या बातें होने वाली है, देखो मौसम ने ना करवट ली, आज हल्का सा बौछार सी आ गई, वैसे मॉनसून ने दस्तक दे दी थी तो फिर बौछार तो आनी थी, करेंगे इसके बारे में बात। और इसी के साथ साथ साइबर क्राइम के केसेस फरीदाबाद में बढ़ते जा रहे हैं, तो इस पर आप लोगों की भी कुछ ना कुछ राय होगी। और ऑल दो फरीदाबाद में जितने भी लोग रह रहे हैं सब लोग परेशान हैं, नहीं देखो जिंदगी का नाम ही परेशानी है, बट आप लोग अगर किसी भी चीज़ से परेशान है जो कि आप पब्लिक के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो आपके पास एक नंबर है 9654896896, इस पर कॉल कर सकते हो, ये मेरा ही नंबर है। मतलब आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, आप टेक्स्ट मैसेज कीजिए, आप डायरेक्ट कॉल कीजिए, हम लोग बैठे हैं, उठाने में देर हो सकती है मगर मैसेज पढ़ने में देरी नहीं होगी। तो अगले 3 घंटे आप लोग मेरे साथ रहिए, दिल्ली से लेके फरीदाबाद तक, फरीदाबाद से लेके ऑल ओवर इंडिया की सारी बातें होने वाली है, मगर उससे पहले आप सभी के लिए गाना चलाऊंगा। गाने का नाम है लाडो बाय एमसी स्क्वायर। अपने फरीदाबाद की जब बात आती है तो फरीदाबाद के लड़के की आवाज में ये गाना रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड गुंडा आप सभी के साथ।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हाँ तो अर्ज किया है?
2: अर्ज अर्ज
1: अभी करते हैं, सुनो।
0: इरशाद,
1: स्पैम कॉल करके आजकल दिमाग खा जाते हैं।
0: वाह वाह वाह वाह,
1: कोई फर्जी रिश्तेदार तो कोई फर्जी ऑफिसर बनकर हमें डांट देते हैं।
0: तुम अभी इसी लायक?
1: चुप रहो, आगे सुनो। मैं कहता हूँ कि बैंक की डिटेल्स, ओटीपी सब दे दूंगा।
3: अच्छा,
1: बस मेरी शायरी सुन लो।
0: फिर
1: ये सुनते ही पहली फुर्सत में वो फोन काट देते हैं।
0: अरे वाह, तुम्हारी शायरी का कुछ तो फायदा हुआ। अब तुम बोलते रहो, हम चलते हैं।
1: अरे तो
0: Ladies and gentlemen, you are not

0: हर शाम जब तुम घर लौटते हो, माँ की नजरें दरवाजे पर टिकी रहती है। पापा के सवालों में सख्ती से ज्यादा फिक्र होती है और छोटे भाई की वो मुस्कान जो सिर्फ तुम्हें देखकर खिल उठती है। सोचो अगर कभी ये मुस्कान इंतजार में ही रह जाए।
1: सफर लंबा हो या छोटा, हेलमेट पहने, हाई स्पीड में गाड़ी ना चलाएं और अपनों की हंसी को बचाएं। हेलमेट सिर्फ आपकी सुरक्षा नहीं, अपनों की खुशियों की गारंटी है।
2: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

Once again a mixed mashup song for all of you, और इसी गाने के साथ स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। आज दोपहर का लंच ही किया था मैंने, और उसके बाद जैसे ही ऑफिस से बाहर निकला तो देखा 2-3 चींटे पड़े, 5-6 पड़े, फिर धीरे धीरे वो बारिश तेज़ हुई। तेज़ मतलब वैसी वाली तेज़ नहीं हुई जैसे मानसून में होती है, बट ठीक है, दिल को दिलासा मिल गया कि हाँ मानसून वाली बारिश हो रही है। और हाँ, अगर मैं फरीदाबाद के वेदर की बात करूँ तो देखो गूगल तो यही बता रहा है कि देखो रोज़ रोज़ बारिश होने वाली है, मगर हो कहाँ रही है? और वो मानसून की जो बारिश होती है ना, जो सुबह से लेकर शाम तक होती है, एक बार तो वो वाली देखनी है साल 2026 में, क्योंकि अभी तक तो हुई ही नहीं है। इवन मैं कह रहा हूँ 1 घंटे की भी बारिश नहीं हुई है अभी तक लगातार वाली। तो मौसम विभाग का ये कहना है देखो कि कल सैटरडे आप लोगों को सुबह सुबह ही बारिश देखने को मिल जाएगी, फिर दिन भर आपके धूप निकल रह सकती है। और फिर उसके बाद अगर संडे की बात करें तो संडे आप लोगों का कैसा जाने वाला है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। संडे को आपको हल्की फुल्की बारिश देखने को मिल सकती है, मगर वो तेज वाली बारिश अभी भी मिसिंग है। मगर नेक्स्ट वीक पूरा हफ्ता बारिश दिखा रहा है। वैसे ये तो बारिश इस हफ्ते भी दिखाई थी बट हुई नहीं। तो मैं तो बस ये बोलना चाहूँगा जितनी जल्दी बारिश हो उतना ज़्यादा अच्छा, क्योंकि मौसम में जो ये उमस वाली गर्मी हो रही है ना, ये सही नहीं जा रही है। क्योंकि आज सुबह भी ऐसा ही हुआ था, सुबह सुबह धूप निकल आई, फिर उसके बाद बहुत देर तक तो दिक्कत हुई लोगों को, मगर दोपहर में हल्की फुल्की बारिश ने थोड़ा माहौल ठीक कर दिया। तो चलिए आप लोग बताइए बारिश आपकी फेवरेट है या नहीं, और अगर है तो बारिश में फेवरेट फूड कौन सा है ये भी बता दीजिएगा। नंबर है जी 9654896896। इसके अलावा आप लोग इंस्टाग्राम पे हमें

अस्थमा के मरीजों के लिए धूल और धुआं जीने का हक छीन सकता है। आइए मिलकर एक कदम उठाएं, एक UI का लेवल कम करें, गाड़ी को पूल करें और पेड़ लगाएं। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: मंजिल सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो सफर की कद्र करते हैं। कभी कभी एक छोटी सी लापरवाही पूरी कहानी बदल देती है। हेलमेट कोई बोझ नहीं, ये आपकी समझदारी का सबसे बड़ा सबूत है।
1: तो अगली बार सफर पर निकलने से पहले इस छोटी सी समझदारी को अपने सिर पर जरूर रखिए, क्योंकि आपकी एक सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी। सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: पता नहीं, पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
1: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
0: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें।
2: किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
3: और जुड़े साइबर सिपाही कैंपेन से, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ, बी अवेयर।

AI वर्जन वाला गाना था ये। गाना तो बहुत अच्छा है, मतलब एनिमल मूवी में जब ये गाना आया था तब किसी को उम्मीद नहीं थी कि इस गाने को भी मोहम्मद रफी की आवाज में बनाया जा सकता है। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर, मैं हूँ द मोस्ट वांटेड मंडा आप सभी के साथ। एंड अभी मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, देखो AI की मैंने बात करी और AI जितना ज़्यादा हेल्पफुल है ना उतना ही ज़्यादा नुकसानदायक भी बन रहा है, क्योंकि हमारे बीच में ही, हमारे समाज के बीच में ही कुछ ऐसे बैठे हैं धुरंधर जो इंसान AI का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। वो क्या करेंगे, AI के थ्रू वॉइस क्लोनिंग कर रहे हैं, AI के थ्रू इमेजेस मॉर्फ कर रहे हैं और फिर उसके बाद साइबर क्राइम को अंजाम दे रहे हैं। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, सारे फरीदाबाद वासियों से, कि अगर आपके पास कोई अननोन नंबर से कॉल आता है कि बेटा मैं तुम्हारा पापा बोल रहा हूँ या फिर मम्मी आपका बेटा बोल रहा हूँ, तो आपको कन्फर्म करना है पहले कुछ ऐसी चीज़ जो सिर्फ आप दोनों को ही पता हो, क्योंकि ऐसे केसेस बढ़ते जा रहे हैं। और साइबर क्राइम की अगर बात करें तो AI के थ्रू ना जाने क्या क्या करा जा रहा है, मतलब जैसे कि आप लोगों को बेटिंग वाली गेम्स भी डाउनलोड करने के लिए बोल दी जाएगी और वो एक फेमस इन्फ्लुएंसर को यूज़ करके बना देते हैं आजकल एड्स। जैसे अभी रिसेंटली मैंने देखा फरीदाबाद का एक लड़का है जिसका नाम है अजय नागर, कैरी मराठी के नाम से यूट्यूबर, बहुत फेमस है वो, तो उनकी एक वीडियो आई थी जिसमें वो बेटिंग ऐप को प्रमोट कर रहा था, बट फिर ध्यान से देखा तो पता चला ये AI मेड वीडियो है। और ऐसे कोई भी ऐप आपको डाउनलोड नहीं करने, नहीं तो आपका पूरा का पूरा अकाउंट खाली हो जाएगा। अब भगवान न करे कि आपके साथ कभी ऐसा हो जाए, तो आपके पास एक हेल्पलाइन नंबर है 1930 1930, इस पर आपको कॉल करना है, ये है साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर। जब भी आप इस पर कॉल करोगे ना तो फिर आप तुरंत, मतलब आपको सहायता मिलेगी। और एक और चीज़, अब आप ऑनलाइन मीन्स कॉल पर ही आप FIR दर्ज कर सकते हैं। तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ऐसे चक्करों में मत पड़िएगा, कोई भी बैटिंग गेम डाउनलोड मत करिएगा और कोई भी ऐप्स अननोन सोर्स से डाउनलोड मत कीजिएगा। और अभी फिलहाल रेडियो महारानी सुनते जाइए, आप सभी के लिए एक पुराना वाला गाना जो कि नया बन के आया है डीनो जेम्स की आवाज़ में, सुनिए इस गाने को रेडियो महारानी 89.6।

0: दीवार का।
1: यार कभी खिड़की से जो ठंडी हवा आती थी ना, आज उसमें भी जहर घुला महसूस होता है।
2: क्योंकि तन्हा होकर भी ये हवा हमसे बहुत कुछ कहती है, हमारी गलतियों की सजा ये चुपचाप सहती है। अभी भी वक्त है इसे शुद्ध कर दुलार दे, इस धरती को उसकी खोई मुस्कान फिर से उधार दे।
3: रेडियो महारानी आप सभी से अपील करता है, अपनी खूबसूरत से जिंदगी को पॉल्यूटेड एयर से संकट में ना डालें और एनवायरनमेंट को पॉल्यूट होने से बचाएं।

0: हाँ तो अर्ज किया है।
1: ओहो, अर्ज होता है अर्ज।
0: कर रहे हैं आप, सुनो तो
1: इरशाद।
0: स्कैम कॉल करने वालों का फोन हमारे नंबर पर आ गया।
1: तुम्हारे नंबर पे?
0: हाँ जी।
1: अच्छा,
0: और उन्होंने पूछा क्या?
1: क्या पूछा?
0: हाँ, पैसे दे दो वरना कार ठोकने के जुर्म में आपका बेटा जेल जाएगा, उन्होंने ये बताया।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ, हमने कहा भाई सिंगल हूँ मैं, ना तो मेरा कोई बेटा है ना मेरी कोई कार है।
1: अच्छा,
0: हमारी लाइफ में खटारा जी साइकिल है वो भी बेकार है।
1: बिल्कुल तुम्हारी तरह। ओ पागल, तुम्हें कहना चाहिए था वो भी उधार ली हुई है।
0: नहीं नहीं, रेंट पे है, ईएमआई पे।
1: अब तुम बोलते रहो, हम सबको बता कर आते हैं कि स्कैम कॉल्स को वैसे ही इग्नोर करें जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हारी कॉल को करती है।
0: इज्जत का फालूदा कर दिया यार।
1: बाय।
0: सुनो तो, कहाँ चली?
1: बाय।

अभी थोड़ी ही देर पहले मैं साइबर क्राइम के बारे में बात कर रहा था, और जैसे ही वो बात करी तो फिर मेरे मन में एक सवाल आया कि व्हाट्सएप का एक नया फीचर आ रहा है जिसके बारे में मैं ऑलरेडी पहले भी बता चुका हूँ, वो है यूजर नेम फीचर। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर, मैं हूँ द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ। एंड ये यूजर नेम फीचर जो आया, ये जितना ज्यादा हेल्पफुल लग रहा है, शायद सरकार ने भी इसके बीच में आके हस्तक्षेप किया है, बोला है कि नहीं जी अभी इस पर काम करो आप लोग और जवाब दो हमें कि ये कैसे हेल्पफुल हो सकता है। एक्चुअली में क्या हो सकता है, देखो बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि इंडिया में बैठे हैं साइबर क्राइम करने वाले कुछ लोग, तो वो लोग क्या करेंगे, वो साइबर क्राइम को अंजाम देंगे, और हो सकता है आपके पास अननोन लोगों के मैसेज आ जाए। क्योंकि देखो अगर आपका यूज़र नेम किसी को पता लग गया तो फिर वो तो व्हाट्सएप पर ढूंढ के आपको पर्सनली मैसेज भी कर सकता है। आई डोंट नो अभी इसके पीछे और भी क्या क्या चीज़ें करी जा रही है, क्योंकि अगर कोई अनजान इंसान मुझे मैसेज करे तो फिर वो सही थोड़ी ना है। और इसके अलावा अगर साइबर क्राइम की मैं बात करूं तो हो सकता है कि आपका ही कोई करीबी बनकर कोई इंसान, कोई साइबर स्कैमर आपके साथ कोई स्कैम कर जाए, तो अभी इसके बीच इसके ऊपर रोक लगाई गई है। मगर इसके साथ साथ रोक एक और चीज़ पर लगाई गई है, और वो है एक ऐसी ऐप जो चलती फिरती गाड़ी को रोक देती है। कौन सी गाड़ी की मैं बात कर रहा हूँ, करेंगे उसके बारे में भी बात, मगर इस प्यारे से गाने के बाद। मौसम को देखते हुए आप सभी के लिए ये गाना रेडियो महारानी 89.6 पर।

0: 69.6 FM
1: कुछ हटके।
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

आप लोगों के पास हो सकता है एक वीडियो आई हो और उस वीडियो में देखा हो आपने कि कोई इंसान स्कूटी पे जा रहा है और फिर उसने अपने फोन से ही सामने चलने वाला ई रिक्शा यानी कि टर्री बंद कर दी और फिर लोग बहुत ज़्यादा उसको सराहना कर रहे हैं, कह रहे हैं बहुत अच्छा काम किया क्योंकि ये कहीं से भी कट मार देते हैं। बट नहीं, इसका दूसरा पहलू भी है, दूसरा साइड भी है। काफ़ी बार ऐसा होता है कि जो ई रिक्शा चालक है वो रेंट पर ई रिक्शा लेकर आता है और फिर उसके बाद जो दिन भर की कमाई होती है वो करता है। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर, मैं हूँ द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ। एंड अभी जो मैं ये बात कर रहा हूँ ना, एक्चुअली मैं ई रिक्शा से बहुत सारे लोग परेशान थे कि ये लोग कहीं पर भी कट मार देते, तो फिर उसके बाद दो चाइनीज़ ऐप आई प्ले स्टोर पर और लोगों के बीच में आग की तरह फैल गई ये ऐप, और फिर उसके बाद लोगों ने इस ऐप को डाउनलोड करके परेशान करना शुरू कर दिया, ई रिक्शा बंद कर दिया रास्ते में राह चलते। तो फिर मैं उन सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ ऐसा ना करें जनाब, ना करें ऐसा। और एक और बात ये बोलूँगा कि अब ये ऐप्स को सरकार ने पूरी तरह से प्ले स्टोर से हटा दिया है, तो मतलब अब आप इस ऐप को डाउनलोड नहीं कर सकते। अब मैं नाम भी बता दूंगा तब भी आपको मिलेगी नहीं। खैर, मैं नाम बताने नहीं वाला क्योंकि सबको मालूम है कि शरारती तत्व ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। तो जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, सबसे रिक्वेस्ट है अगर आपके पास ये ऐप है तो प्लीज़ आज ही इसे डिलीट कर दीजिए, क्योंकि हम तो मज़े में किसी और का ई रिक्शा बंद कर रहे हैं मगर क्या पता वो आपके फोन से क्या डेटा चुरा रहा हो। तो प्लीज ऐसी ऐप्स को डिलीट कीजिए और अभी फिलहाल रेडियो महारानी सुनते जाइए। आप सभी के लिए एक और मैशअप ओनली ऑन 89.6 FM।

0: अगर आपका KYC अपडेट करना है, मैंने आपको एक लिंक भेजा है, उस पर क्लिक कीजिए, वरना आपका अकाउंट और ATM दोनों ही बंद हो जाएगा।
1: बट मेरा KYC तो ऑलरेडी अपडेटेड।
2: सावधान, अनजाने कॉल्स, फर्जी टेक्स्ट, लिंक और जाली ऐप से अपना पिन, OTP, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे सावधान तो नहीं होगा नुकसान। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हाँ तो अर्ज किया है?
0: अर्ज
1: अभी करते हैं, सुनो।
0: इंस्टार्ट।
1: करके आजकल दिमाग खा जाते हैं।
0: वाह वाह वाह वाह।
1: कोई फर्जी रिश्तेदार तो कोई फर्जी ऑफिसर बनकर हमें डांट देते हैं। चुप रहो, आगे सुनो। मैं कहता हूँ कि बैंक की डिटेल्स ओटीपी सब दे दूंगा।
2: अच्छा,
1: बस मेरी शायरी सुन लो।
0: फिर
1: ये सुनते ही पहली फुर्सत में वो फोन काट देते हैं।
0: अरे वाह, तुम्हारी शायरी का कुछ तो फायदा हुआ। अब तुम बोलते रहो, हम चलते हैं।
1: अरे,

0: एक सवाल 10 करोड़ रुपए के लेके जो गाना था एहसान, ये कौन सी मूवी का था और कौन से साल में आया था? ये 10 करोड़ रुपए मैं नहीं देने वाला, ये बस ऐसे ही बस बोल दिया 10 करोड़ रुपए। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर, मैं हूं द मोस्ट वांटेड मंडा आप सभी के साथ। और अभी मैं जो इस मूवी की बात कर रहा हूं वो मतलब इस गाने को छोड़ देते हैं, इस मूवी को भी छोड़ देते हैं, मगर मैं जिस मूवी की बात करना चाहता हूँ वो मेरी फेवरेट है एंड काफ़ी सारे मार्वल लवर्स की भी फेवरेट है, और उस मूवी को कहते हैं एंड गेम। इस मूवी के पीछे ना जाने कितने लोग दीवाने हैं, बट ये मूवी फिर से रिलीज होने जा रही है, क्योंकि सबको पता है स्पाइडरमैन का भी ट्रेलर आया है, और फिर उसके बाद इसी साल के एंड में आप सभी को डूम्सडे भी देखने को मिल जाएगी, मगर उससे पहले एंड गेम को फिर से रिलीज किया जा रहा है। और इस बार एंड गेम में थोड़े से सीन चेंज है एंड एंडिंग भी पूरी तरह से चेंज कर दी गई है। तो हो सकता है जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं उन लोगों को उम्मीद जाग गई हो कि शायद लास्ट में आयरन मैन नहीं मरेगा, बट देखते हैं, ये तो अभी मूवी आने के बाद ही पता चलेगा कि एंड गेम में एंडिंग कैसे होने वाली है। तो मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, और बता दूँ आपको जुलाई या फिर अगस्त इसमें ये मूवी ज़रूर रिलीज़ हो जाएगी। डेट्स अभी कंफर्म नहीं की गई है, और हो सकता है सितंबर तक भी ये मूवी रिलीज़ हो, ताकि लोगों के मन में वो जो मेमोरी थी ना एंड गेम की वो बनी रहे, फिर उसके बाद डूम्सडे देखने में मज़ा आएगा। चलिए अभी फिलहाल रेडियो महारानी आप लोग सुनते जाइए, आप सभी के लिए फिर से एक मैशअप गाना रेडियो महारानी 89.6 पर।
1: Did you check on me?

सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें। और जुड़े साइबर सिपाही कैंपेन से, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ, बी अवेयर।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हो गया शुरू तो अर्ज किया है।
0: ओहो अर्ज होता है अर्ज।
1: कर रहा हूँ तुम सुन लिया करो बस।
0: इरशाद
1: अरे आगे खाली हो जाएगी।
0: क्या
1: बोल कर ये सारी भीड़ अंदर बुला लेते हैं।
0: कौन है?
1: रोडवेज वाले।
0: ओके ओके
1: रोडवेज वाले भैया सीट पर चार सवारी तो अपनी गोदी में भी तीन बच्चे बिठा लेते हैं।
0: अरे हाँ यार उस दिन तो लोरी गाकर सुना भी रहे थे।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ
1: आगे सुनो।
0: सुनाओ।
1: रोडवेज की शक्तियों का हम करते हैं कुछ इस तरह इस्तेमाल। लस्सी बनाने के लिए रोडवेज में दही लेकर बैठ जाते हैं।
0: वैसे दिमाग का दही हो रखा है और ऊपर से तू भी। मैं तो चली तू बोलता रहा।
1: अरे एक ग्लास तो पीती जा।

जितना प्यारा ये गाना था ना, मैं बस ये बोल रहा हूँ, दिल्ली और फरीदाबाद के बीच वाली सड़क हो और वो भी सूरजकुंड से जाती हुई, या फिर फरीदाबाद और गुड़गांव के बीच की सड़क हो और ऐसे प्यारे प्यारे गाने बजते रहे, कितना अच्छा लगेगा ना। और मौसम भी अच्छा हो ही रखा है। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर, मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ। अब देखो, बात करते हैं फरीदाबाद गुड़गांव रोड की। मौसम अच्छा हो, गाने अच्छे चल रहे हो, रोड भी साफ हो, मगर फिर बीच में आता है कूड़े का पहाड़। और वो कूड़े का पहाड़ अपने आप नहीं बना है, वो कूड़े का पहाड़ बनाया गया है हम ही लोगों के द्वारा, मतलब हमारा ही तो वेस्ट है सारा का सारा। तो मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि जो भी वेस्ट होता है उसको प्लीज प्लीज प्लीज कूड़ेदान में डाला कीजिए। हाँ, आई नो कूड़ेदान से ही वहाँ पर कूड़े का पहाड़ बना है, बट मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक तो वो बड़ा कूड़े का पहाड़ है, मगर हमारे गली नुक्कड़ में अक्सर हम लोग देखते हैं एक छोटा सा, बहुत छोटा सा एक टीला बना होता है कूड़े का, और वो देन होती है हम सब की। तो मतलब क्या है, सिंपल सा कि सिविक सेंस की कमी है, इसको एक्सेप्ट हमें करना पड़ेगा। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप ही लोग कर रहे हो, बट हाँ, हम भी काफ़ी बार ये गलती कर देते हैं। अपने आप से एक सवाल पूछिए कि क्या हमने गाड़ी चलाते हुए कभी कोई रैपर बाहर फेंका है या नहीं। अपने आप से सवाल पूछिए कि क्या हमने गाड़ी चलाते हुए या फिर गाड़ी में बैठे हुए कभी पानी की बोतल बाहर फेंकी है या नहीं, या फिर कभी प्लास्टिक के ग्लास बाहर फेंके है फिर या नहीं। अगर तीनों का जवाब नहीं है तो कंग्रेचुलेशंस, आप एक बहुत ही जिम्मेदार नागरिक हैं। मगर अगर तीनों में से एक का भी जवाब हाँ है तो फिर आपको सुधरने की ज़रूरत है। एंड इनमें से तीन सवालों में से मेरा भी एक सवाल में जवाब हाँ ही होगा, तो मैं भी अपने आप को सुधारूंगा। और अभी फिलहाल रेडियो महारानी पर आप सभी के लिए एक प्यारा सा गाना चलाऊंगा। आदित्य रिखाड़ी की आवाज़ में ये जो गाना चलाया था उसको कंप्लीट करते हैं।

0: जिंदगी का सफर कितना भी हसीन हो, एक गलती और सब खत्म।
1: ये सड़कें तुम्हारी कहानियाँ नहीं सुनती, इन्हें सिर्फ तुम्हारी समझदारी दिखती है। इसलिए हाई स्पीड में गाड़ी चलाने से पहले एक बार जरूर सोचें, आपको किसी न्यूज़पेपर के पेज की हाईलाइट बनना है या अपनी खुद की कहानी का राइटर।
2: आपकी सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हाँ तो अर्ज किया है।
0: अर्ज
1: अभी करते हैं, सुनो।
0: इंस्टार्ट।
1: स्पैम कॉल करके आजकल दिमाग खा जाते हैं।
0: वाह वाह वाह वाह।
1: कोई फर्जी रिश्तेदार तो कोई फर्जी ऑफिसर बनकर हमें डांट देते हैं। चुप रहो, आगे सुनो। मैं कहता हूँ कि बैंक की डिटेल्स OTP सब दे दूंगा।
0: अच्छा,
1: बस मेरी शायरी सुन लो।
0: फिर
1: ये सुनते ही पहली फुर्सत में वो फोन काट देते हैं।
0: अरे वाह, तुम्हारी शायरी का कुछ तो फायदा हुआ। अब तुम बोलते रहो, हम चलते हैं।
1: अरे, बाय।

0: अरे भाई, इतनी तेज रफ्तार में कहाँ जा रहा है?
1: भाई मैं तो लंबी रेस का घोड़ा हूँ, रफ्तार से ही जाऊंगा।
0: अरे भाई रुक तो जा, धीरे चलेगा तो दूर तक जाएगा, वरना हॉस्पिटल के बिल ही भरता रह जाएगा।
2: सड़क पर चलते वक्त स्पीड का रखें खास ध्यान, किसी भी लापरवाही से मत बनिए हॉस्पिटल के मेहमान, क्योंकि आपकी सुरक्षा है आपकी जिम्मेदारी। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: गाने तो हम लोगों ने बहुत सारे सुन लिए, मगर इस टाइम आप सभी को बहुत से गाने सुनाने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है अबीर, जो कि है गुड़गांव से। और स्वागत है अबीर मेरे स्टूडियो में।
1: हाय गौरव, हाउ आर यू?
0: आई एम गुड। और इसी के साथ साथ पूरा फरीदाबाद आपको सुन रहा है, तो मैं सभी को बता देना चाहता हूँ, एक बडिंग म्यूजिशियन है। सबसे पहला सवाल तुम्हें पूछूंगा, ये म्यूजिक का चस्का चढ़ा कहाँ से?
1: ये बेसिकली स्कूल से, आई यूज्ड टू परफॉर्म इन स्कूल कॉयर्स। मैं स्कूल कॉयर्स में काफ़ी परफॉर्म करता था, और वहाँ से फिर आई स्टार्टेड रियली, मतलब थोड़ा बहुत मैंने वेस्टर्न क्लासिकल सीखा, थोड़ा सा इंडियन क्लासिकल सीखने की अपॉर्चुनिटी मिली, तो तब से ही आई थिंक आई हैव बीन इनटू म्यूजिक। इवन माय फैमिली आल्सो इज लाइक फुल ऑफ म्यूजिक लवर्स।
0: तो मतलब सपोर्ट करते हैं फैमिली?
1: अरे बहुत बहुत, एक्सट्रीमली।
0: क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है कि अगर एक इंसान, एक बच्चा अपने स्कूल टाइम पे या फिर अपने कॉलेज टाइम पे ये बोले कि नहीं नहीं मुझे म्यूजिक ही परस्यू करना, तो फिर बहुत सारे क्वेश्चंस उठते हैं।
1: नहीं, मेरे को तो इनफैक्ट ज्यादा पुश कर रहे थे उस साइड करने के लिए, मैं थोड़ा अप्रेंसिव था। मैंने कहा नहीं, मैं कॉलेज कर लेता हूँ और ये कर लेता हूँ। इनफैक्ट मेरी फैमिली वॉज वेरी, आई थिंक अभी तक देर से गया, मैं बहुत लेट हो गया हूँ, यू नो, मैंने लेट स्टार्ट किया।
0: जब जागो तब सवेरा। तो इसी के साथ साथ हमारे लिसनर्स भी शायद सोच रहे होंगे कि जिनको इंट्रोड्यूस किया है, एक बार उनकी आवाज में एक छोटा सा कोई म्यूजिक हो जाए। सभी को बता देना चाहता हूँ, बॉलीवुड म्यूजिक के लवर हैं ये, और अपनी तरफ से आपका जो फेवरेट सॉन्ग है उसको एक बार दो लाइंस हमारे सारे लिसनर्स के लिए।
1: ठीक है गौरव, मैं कोई अच्छा सा गाना सुनाता हूँ आपको। आप अगर अगर एक दो लाइनें ही गानी है, तो आपने वो गाना सुना है जान से गुजरते हैं, जो अभी धुरंधर का आया है?
0: हाँ, हाँ, हाँ।
1: तो वो मैं थोड़ा सा, बिकॉज इट्स अ कवाली मिक्स काइंड ऑफ सॉन्ग, तो मैं थोड़ा सा वो जस्ट टू लाइंस गा सकता हूँ।
0: बिल्कुल।
1: दिल पे

0: अमेजिंग अमेजिंग अबीर अमेजिंग। और मैं तो ये सोच रहा था कि ये गाना शायद आप ही की आवाज में रिकॉर्ड किया गया था।
1: नहीं नहीं सर, ये तो दिस इज खान साहब। तो
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ऐसे ही और भी गाने आपको सुनने के लिए मिलेंगे, मगर उसी के लिए रेडियो महारानी 89.6 पर बने रहिए। मैं हूं गौरव, मेरे साथ इस टाइम स्टूडियो में मौजूद है अबीर। आप सुन रहे हैं रेडियो महारानी 89.6 FM, कुछ हटके।

0: यार कभी खिड़की से जो ठंडी हवा आती थी ना, आज उसमें भी जहर घुला महसूस होता है।
1: क्योंकि तन्हा होकर भी ये हवा हमसे बहुत कुछ कहती है, हमारी गलतियों की सजा ये चुपचाप सहती है। अभी भी वक्त है इसे शुद्ध कर दुलार दे, इस धरती को उसकी खोई मुस्कान फिर से उधार दे।
2: रेडियो महारानी आप सभी से अपील करता है, अपनी खूबसूरत से जिंदगी को पॉल्यूटेड एयर से संकट में ना डालें और एनवायरनमेंट को पॉल्यूट होने से बचाएं।

0: पता नहीं, पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
1: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
0: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें। किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
2: और जुड़े साइबर सिपाही कैंपेन से, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ, बी अवेयर।
3: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

0: गानों का सिलसिला चल रहा है बहुत देर से। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है वीर। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ। अब जो लोग इस टाइम नए नए हमारे साथ जुड़े हैं उन सभी को बता दूं, अबीर जो मेरे साथ बैठे हैं इस टाइम स्टूडियो में, वो एक बडिंग म्यूजिशियन। गाना सुनाया था इन्होंने अभी थोड़ी देर पहले धुरंधर 2 मूवी का, और उसके साथ साथ अभी भी आप लोगों के लिए और भी गाने आएंगे। मगर फिर से स्वागत है अबीर स्टूडियो में।
1: Hi Gaurav, thank you again.
0: अच्छा, thank you again. And इसी के साथ साथ मैं ये बोलना चाहूँगा, देखो हर इंसान, हर म्यूजिशियन मैं बोलूँगा, किसी ना किसी को आइडलाइज करता है।
1: हाँ।
0: तो तुम भी एज म्यूजिशियन किसको आइडलाइज करते हो?
1: Of course, there's one and only Arijit Singh.
0: अब बुरा नहीं लगा जब उन्होंने बोला कि मैं प्लेबैक सिंगिंग छोड़ रहा हूँ?
1: ऑब्वियसली, मतलब बट उनकी कलेक्शन इतनी है कि अब यू नो आपके पास सुनने के लिए इतना वो है कि अब आप क्या ही बोलो।
0: पूरा बैंक पड़ा है हमारे पास,
1: पूरा बैंक पड़ा है 10 सालों तक।
0: बिल्कुल 10 साल से भी ज्यादा का बैंक हमारे पास पड़ा है अरिजीत सिंह की आवाज का। मगर जितने भी लिसनर्स हमें सुन रहे हैं, मैं चाहूंगा आप लोग एक बार अबीर की आवाज में ये गाना जरूर सुनिए। और इन्होंने खुद से ही चूज किया है गाना, गाने का नाम है फिर ले आया दिल। अच्छा, मैं आपसे जस्ट एक जनरल नॉलेज की चीज पूछना चाह रहा हूँ। चलो एक गेस करो, अरिजीत ने आज तक कितने गाने गाए होंगे?
1: 500 plus,
0: सीरियसली मेरे को पता नहीं है, मैं जनरली पूछ रहा
1: हूं। मैं मेरे को आई थिंक ज्यादा ही गाए होंगे, उनकी रीजनल सॉन्ग्स भी हैं कुछ,
0: रीजनल सॉन्ग्स बहुत सारे,
1: और साइड में भी काफी वो करते रहते हैं प्रोजेक्ट्स अपने पर्सनल। आई थिंक ज्यादा ही होंगे, आई थिंक 2012 से ही लगे हुए, तुम ही हो के बाद से।
0: बिल्कुल बिल्कुल, 2009 से वो लगे हुए हैं, बट 2012 में वो बिल्कुल मेनस्ट्रीम में आ गए थे, और फिर उसके साथ साथ और भी बहुत सारे गाने थे। मगर हाँ, उन्हीं की आवाज की अगर गाने की बात करें तो उन्हीं की आवाज में जो गाया था गाना फिर ले आया दिल, वो एक बार आप सुनिए अबीर की आवाज में।
1: यस गौरव,

0: क्या बात है, अमेजिंग। मेरे ख्याल से इतने भी लिसनर सुन रहे हैं वो लोग यही सोच रहे होंगे कि गाना चल रहा है, बट गाना नहीं चल रहा, ये लाइव म्यूजिक था अबीर की आवाज में। और अमेजिंग, इतनी वॉइस कहाँ से, मतलब
1: थैंक यू गौरव।
0: कैसे पता चला कि हाँ मैं गाना गा सकता हूँ? एक बार को आया होगा ना मन में कि अब गाने गाना?
1: गाना तो मैं आई थिंक जब मैं 13 साल तब से गा रहा हूँ। okay. रूम में चीख चीख के पूरे पूरे दिन गा रहे हो, तो फिर आई थिंक घर में सबको पता लग ही जाता कि तू भाई गाई ले, तू रहन दे कुछ, तू गाने गा ले। नहीं नहीं, आई फील एनीबडी कैन सिंग, एंड थोड़ी सी राइट गाइडेंस और प्रैक्टिस के साथ आई थिंक एवरीबडी हु कैन स्पीक, जो बोल सकते हैं वो गा सकते हैं,
0: जो बोल सकता है वो गा सकता है। अमेजिंग बात बोली है इन्होंने, और इसके बारे में और भी बात करेंगे मगर थोड़ी देर बाद। अभी फिलहाल रेडियो महारानी 89.9।

0: मंजिल सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो सफर की कद्र करते हैं। कभी कभी एक छोटी सी लापरवाही पूरी कहानी बदल देती है। हेलमेट कोई बोझ नहीं, यह आपकी समझदारी का सबसे बड़ा सबूत है।
1: तो अगली बार सफर पर निकलने से पहले इस छोटी सी समझदारी को अपने सिर पर जरूर रखिए, क्योंकि आपकी एक सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
2: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही। यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: बॉयफ्रेंड हूँ इसलिए गुलाम हूँ।
1: सुन भाई सुरेंद्र।
2: हाँ भाई तुरेंद्र।
1: भाई गर्लफ्रेंड मुझे फोन करती है, अगर फोन बिजी जाए तो किससे बात कर रहे थे। सोचा था शॉपिंग कराने ले जाऊंगा, 500 रुपए का खर्चा करवाएगी, 5000 का बिल बनवा दिया। सुबह कहती है आई लव यू, दिन में कहती है तुम बदल गए, शाम होती कहती तुम मुझसे प्यार नहीं करते। मैंने पूछा मैं तुम्हारा क्या हूँ, कहती तुम मेरे सब कुछ हो। मैंने कहा सब कुछ में क्या आता है, कहती तुम मुझे ड्राइवर हो, तुम मेरे एटीएम हो। मतलब तो सिंपल यही हुआ ना कि मैं तो उसका गुलाम हूँ।
2: सही कह रहा तुरेंद्र, बॉयफ्रेंड कितना भी कर ले रहेगा तो गुलाम ही।

0: जिंदगी का सफर कितना भी हसीन हो, एक गलती और सब खत्म।
1: ये सड़कें तुम्हारी कहानियाँ नहीं सुनती, इन्हें सिर्फ तुम्हारी समझदारी दिखती है। इसलिए हाई स्पीड में गाड़ी चलाने से पहले एक बार जरूर सोचे, आपको किसी न्यूज़पेपर के पेज की हाईलाइट बनना है या अपनी खुद की कहानी का राइटर।
2: आपकी सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। इसी गाने के साथ चोर बाजारी, इस गाने का नाम था। और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है एक फरीदाबाद की रेजिडेंट, हेलो, इनका नाम जान लेते हैं।
1: हाय गौरव, मेरा नाम तन्वी।
0: ओके, तन्वी इज विद मी, हेलो सबसे पहले बोलूंगा। और इसी के साथ साथ एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, जो कल बारिश हुई, कल जो दोपहर में रात बन गई और आज जो दोपहर में हल्की फुल्की बारिश हुई, तो सबसे पहला सवाल, बारिश पसंद भी है या नहीं?
1: बिल्कुल भी नहीं।
0: देखो लो, जितने भी लिसनर्स मुझे सुन रहे हैं, सभी लोग सुन लो, मंडे की शाम को कोई इंसान आकर ऐसा बोल दे कि बारिश मुझे पसंद नहीं है, तो अच्छा सा नहीं लगता, दिल टूट जाता। क्यों नहीं पसंद?
1: क्योंकि बहुत जगह वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम हो जाती है, लोग बाग घर से नहीं निकल पाते, इतनी कीचड़ होती है, तो ना।
0: नो, ओके, अब ये तो बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है कि हाँ वाटर लॉगिंग होती है, बट काफ़ी बार ऐसा होता है वाटर लॉगिंग के जो जिम्मेदार लोग हैं वो भी हम ही हैं, क्योंकि हम भी नालियों में पन्नियाँ डाल देते हैं। इस बात को मानते हो क्या नहीं मानते?
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो इस बात को मानते हैं। अच्छा, वाटर लॉगिंग के अलावा अगर मैं बोलूँ बारिश क्यों नहीं पसंद, तो वो क्या रीज़न होगा?
1: क्योंकि घर से नहीं निकल पाते, ऑब्वियसली यही है।
0: पता तुम्हें, एक ना साइंटिस्ट ने एक इन्वेंशन करी थी छाते की, अम्ब्रेला, उसको लेके आप घर से निकल सकते हो बारिश के दौरान।
1: हाँ, मतलब ठीक है।
0: ठीक है, अगर मैं जहाँ तक जान पा रहा हूँ, मुझे ये लग रहा है कीचड़ हो जाता है, इसलिए नहीं जा पाते बाहर। बिल्कुल, कीचड़ की वजह से भी बहुत लोग परेशान होते हैं। और मैं यहाँ पर आप लोगों से सवाल पूछना चाहूंगा कि आप लोगों को बारिश पसंद है भी या फिर नहीं। और अगर मैं तन्वी से एक सवाल और पूछूं, तन्वी आप कहाँ पर रहते हो?
1: मैं सेक्टर 29 के पास।
0: ओके, सेक्टर 29 के पास रहती है तन्वी। और सबसे फेवरेट फूड क्या है जो बारिश के दौरान खाना का मन करता है?
1: चाय और पकौड़े।
0: चाय और पकौड़े, और इसी का इंतजाम हम लोग भी करेंगे। और अभी फिलहाल रेडियो महारानी सुनते जाइए आप लोग। आपके लिए गाना चला रहा हूँ, खामोशिया मूवी का टाइटल ट्रैक, ओनली ऑन 89.6 FM। कुछ हटके।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
2: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

0: बिजुरिया था ये गाना, और इसी गाने के साथ रेडियो महारानी पर मेरे साथ स्टूडियो में एक और शख्स मौजूद है, शख्स तो नहीं कहूंगा एक लड़की मौजूद है, और इनसे इनका नाम जान लेते हैं। हेलो,
1: हाय गौरव, मेरा नाम है पलक।
0: ओके, पलक है हमारे साथ, एंड पलक लेकर आई है कुछ साइबर टिप्स, क्योंकि आजकल साइबर फ्रॉड चरम पर है, बहुत सारे टाइप के साइबर फ्रॉड्स हो रहे हैं। तो पलक, एक बार हमारे सारे लिसनर्स को बता दो कैसे कैसे टाइप के साइबर फ्रॉड्स हो रहे हैं।
1: देखो, जैसा कि हम जानते हैं, हम बेसिकली कोई भी YouTube ऐड आ गई या Instagram ऐड आ गई, हम कहीं से भी कनेक्ट हो जाते हैं, एंड वो हमसे बोलते हैं कि इस WhatsApp ग्रुप को ज्वाइन कर लो, इतने दिनों में तुम्हारा पैसा डबल हो जाएगा या कुछ हो जाएगा। एंड समटाइम्स वो हमसे कुछ डिटेल्स भी मांगते हैं, हमारी पर्सनल डिटेल्स,
0: एंड अकाउंट नंबर, मोबाइल नंबर तो उनके पास आ ही जाता है, क्योंकि अगर वो WhatsApp ग्रुप में जुड़ने के लिए बोल रहे हैं तो फिर गलती है। अगर आपके सामने कभी भी ऐसी एड्स आती है तो सबसे पहली चीज़ आपने करनी है कि रिस्पॉन्ड नहीं करनी है। बट अगर गलती से भी आप लोग WhatsApp ग्रुप में जुड़ गए तो क्या करना है हमें?
1: अगर हम इस टाइप के WhatsApp ग्रुप में जुड़ जाते हैं, हमें कुछ नहीं करना, हमें बस उस ग्रुप को लीव कर देना है।
0: बिल्कुल,
1: बिकॉज ऐसा कुछ भी नहीं होता कि तुम्हारे बिना मेहनत करे कि तुम्हें पैसे मिल जाएंगे या ऐसा कुछ हो जाएगा। अगर ऐसा भी कुछ होता है तो सिर्फ एक चीज याद रखना कि ये फ्रॉड है।
0: बिल्कुल, ऐसा सिर्फ एक जगह होता है, मूवीज में, और वो हमने देखा था फिर हेरा फेरी में, जो पैसा लगाया था 25 दिन में पैसा डबल हो गया था, उनके साथ भी फ्रॉड ही हुआ था वैसे तो।
1: हाँ,
0: तो चलिए आप लोग भी साइबर फ्रॉड से बच कर रहिए, और एक नंबर है जिस पर आपको कंप्लेंट करनी है अगर खुदा ना खास्ता आपके साथ कभी कोई भी साइबर क्राइम हो, तो वो नंबर है
1: 1930।
0: इस पर कॉल करके आप अपनी कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं। और अभी फिलहाल रेडियो महारानी 89.6 पर तलविंदर की आवाज में गाना कातिलाना।

0: चल अर्जुन शुरू आजा।
1: हाँ तो शुरू होते हैं और अर्ज करते हैं।
2: अर्जुन नहीं होता अर्ज अर्ज।
1: शायरी पे ध्यान लगाओ।
2: इरशाद
1: रोडवेज बस जैसा अपना हाल है यारों।
2: मेरा नहीं तुम्हारा ही होगा
1: सबका ये। सब कुछ टूटा फूटा है फिर भी अपना रुतबा है यारों।
2: ये बात तो सही है।
1: और बस की याद आती है जब भी लाइफ में कुछ समझ नहीं पाता हूँ।
2: कैसे कैसे?
1: कंडक्टर बोलता है आगे बढ़ो तो मैं मोटिवेट हो जाता हूँ।
2: अरे यार वो तो मैं कह रहा था कि मुंह उठाकर बस से उतरो और आगे बढ़ो। अब तुम बोलते रहो मैं तो चली को मेरी बस आ गई।
1: सुनो सुनो हेलो

वंस अगेन अ मिक्स मैशअप गाना, और ये मौसम जो है जो कि बदल रहा है पल पल, वो कब बदलना बंद करेगा ये तो अभी मौसम विभाग को भी नहीं पता, क्योंकि वो जो बोल रहे हैं उनका बिल्कुल उल्टा हो जा रहा है। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर, मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ। फरीदाबाद के वेदर की अगर मैं बात करूं तो आने वाले कुछ दिन में अब कूलिंग एक्सपेक्टेड है, और परसों आपको अच्छी वाली बारिश देखने को मिल सकती है। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा मौसम विभाग कह रहा है, और मौसम विभाग का तो ये भी कहना था कि जो लास्ट ट्यूजडे गया है ना तब से बारिश होनी थी, बट तब से बारिश शुरू नहीं हुई। संडे की दोपहर में अंधेरा हो गया और आज भी दोपहर में हल्की फुल्की बारिश हमें देखने को मिली। ऑल्दो पूरे फरीदाबाद में बारिश नहीं हुई थी, बट स्टिल जहां भी हुई अच्छी वाली हुई। चलिए, और इसी के साथ साथ बारिश तो होती रहेगी, मगर मेरा यहाँ से जाने का वक्त हो गया है, तो मैं लेता हूँ इजाजत। मिलूंगा आप सभी से कल शाम फिर से 5 से 8। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। वापस आएगी गीत विद इश्क बाजियां, और देखो इतने प्यारे मौसम में प्यारे प्यारे गाने जब चलेंगे सोचो कितना अच्छा लगेगा ना। तो सुनना मत भूलिए रेडियो महारानी 89.6 एफएम पर इश्क बाजियां विद इश्क वाली गीत। बाय बाय, दिस इज गौरव साइनिंग ऑफ फ्रॉम रेडियो महारानी 89.6 एफएम। कुछ हटके।

0: घर का छोटा हूँ इसलिए निकम्मा हूँ।
1: सुन भाई सुरेंद्र।
2: हाँ भाई सुरेंद्र।
1: मैं घर का छोटा हूँ जिसको सब निकम्मा बोलते हैं। मम्मी बोलती है काम कर लिया कर, रोज सुबह पानी की बोतल फ्रिज में रख देता हूँ, रिमोट मैं ढूंढता हूँ, पापा का फोन मैं चार्ज करता हूँ, जब सब सोते हैं तब लाइट बंद मैं करता हूँ, जब घर में कुछ गलत होता है सब बोलते हैं इसी ने करा होगा, मेरी बातों को कोई सीरियसली नहीं लेता, मार्केट से सामान मैं ही लेकर आता हूँ, फिर भी सब मुझे ही कहते हैं।
2: सही कह रहा है तुरेंद्र, कितना भी कर ले, कार का छोटा बेटा रहेगा तो निकम्मा ही।

अभी अभी आपने सुना है ये बहुत ही खूबसूरत सा ट्रैक, प्यार आता है। और सच बताऊं तो प्यार की सबसे प्यारी बात यही है जो बिना बुलाए आ ही जाता है, कभी किसी की हंसी में, कभी किसी की याद में, और कभी कभी किसी अजनबी की आंखों में बस आ जाता है। रेडियो महारानी से मैं हूँ आपकी इश्क वाली गीत, और शो ले आई हूँ आपके लिए इश्क बाजियां। और ये शो उन दिलों के लिए है जिनमें अब भी मोहब्बत की गूंज बाकी है। और आज का जो ये पहला आर है वो स्पेशल है इश्क शायराना, जहां मैं बात करती हूँ उन शायरों की जिन्होंने मोहब्बत को, जुदाई को और रिश्तों की उलझनों को इतने खूबसूरत अल्फाज दिए कि वो हमारी जिंदगी का बहुत अहम हिस्सा बन गए। और आज की रात मैं आपको लेकर चलूंगी फैज अहमद फैज की दुनिया में, जिनकी शायरी मोहब्बत में भी है और हकीकत में भी, वो अल्फाज जो आज भी उतने ही सच्चे लगते हैं जितने सालों पहले लिखे गए थे। और सोचिए ये बातें आज की लाइफ में कितनी जुड़ी हुई हैं। हमारी जेनरेशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम वही है ना, दिल में बहुत कुछ होता है लेकिन बोल नहीं पाते हैं। व्हाट्सएप पर ब्लू टिक आ जाता है, इंस्टा पर ऑनलाइन दिखते हैं, पर दिल की बात टाइप करने की हिम्मत नहीं होती। यहाँ पर शायर हमारी मदद करते हैं क्योंकि वो वही सब कह जाते हैं जो हम महसूस करते हैं। और आज की रात मैं आपको लेके चलूंगी फैज अहमद फैज की दुनिया में, जहाँ मोहब्बत भी है, तड़प भी है और हकीकत भी। लेकिन शुरुआत करते हैं इस गाने से जो अपने शब्दों में यही कहता है, चाहे हालात जैसे भी हो, जब दिल किसी पे आ जाता है तो बस एक ही ऐसा।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: सोशल मीडिया पे प्राइवेसी टाइट रखो, अपनी लाइफ में डॉक्यूमेंट्री मत बनाओ, और हाँ, लाइफ में ड्रामा का फोकस ज्यादा रखो।
3: अरे भाई, इतनी तेज रफ्तार में कहाँ जा रहा है?
4: भाई मैं तो लंबी रेस का घोड़ा हूँ, रफ्तार से ही जाऊंगा।
3: अरे भाई रुक तो जा, धीरे चलेगा तो दूर तक जाएगा, वरना हॉस्पिटल के बिल ही भरता रह जाएगा।
5: सड़क पर चलते वक्त स्पीड का रखें खास ध्यान, किसी भी लापरवाही से मत बनिए हॉस्पिटल के मेहमान, क्योंकि आपकी सुरक्षा है आपकी जिम्मेदारी।
0: रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी

फ्रॉम द मूवी रहना है तेरे दिल में, और इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है। शो है इश्क बाजियां और मैं हूँ इश्क वाली गीत। और कभी नोटिस किया है, आजकल के रिश्तों में सब कुछ बहुत फास्ट हो गया है, जल्दी प्यार, जल्दी टूटना, जल्दी आगे बढ़ जाना, लेकिन दिल वो आज भी पुराने जमाने की तरह स्लो है। उसको आज भी वही दर्द, वही मोहब्बत उतनी ही गहराई से महसूस होती है, और जब दिल बोलना चाहता है तो अल्फाज ढूंढ नहीं पाता। तभी तो हमें शायर चाहिए होते हैं, जो हमारे दिल की बात हमारी जबान से पहले कह जाते हैं। और आज इश्क शायराना में आप सुनने वाले हैं फैज अहमद फैज को। फैज की शायरी मोहब्बत भी है और हकीकत भी। एक तरफ वो कहते हैं, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग। सोचो ये लाइन आज के टाइम में कितनी रिलेटेबल है, क्योंकि आजकल हम सबके पास अपने अपने स्ट्रगल्स हैं, करियर का प्रेशर, फैमिली एक्सपेक्टेशंस, सोशल मीडिया के कंपैरिजन वाली लाइफ, इन सब के बीच प्यार अक्सर पीछे छूट जाता है। दिल तो चाहता है सब कुछ पहले जैसा हो, लेकिन जिंदगी बदल चुकी होती है। और फिर फैज हमें एक और तस्वीर दिखाते हैं, गुलों में रंग भरे, बादे नौबहार चले, चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले। मतलब हाँ, दर्द है, हकीकत है, लेकिन मोहब्बत फिर भी जरूरी है, क्योंकि वही तो है हमारी ड्राई जिंदगी को फिर से रंग भरने के लिए। तो दोस्तों, आज अगर आप किसी रिश्ते में हो या किसी से दूर हो चुके हो, बस इतना याद रखना, मोहब्बत का मतलब सिर्फ साथ रहना नहीं है। कभी कभी मोहब्बत वो यादें होती हैं जो आपकी थकी हुई शाम को मुस्कुराहट दे जाती हैं। और यही तो है असली इश्क शायराना, दिल की बात शायर के अल्फाज और हमारी जिंदगी का कनेक्शन। और अब यहाँ पर सुनते हैं बहुत ही बेहतरीन सा गाना। गाने के बाद फिर से लौटेंगे। शो है इश्क बाजियां और मैं हूँ इश्क वाली की।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हो गया शुरू, तो अर्ज किया है।
0: ओहो, अर्ज होता है अर्ज।
1: कर रहा हूँ, तुम सुन लिया करो बस।
0: इरशाद।
1: अरे आगे खाली हो जाएगी।
0: क्या
1: बोल कर ये सारी भीड़ अंदर बुला लेते हैं।
0: कौन हम?
1: रोडवेज वाले।
0: ओके ओके।
1: रोडवेज वाले भैया सीट पर चार सवारी तो अपनी गोदी में भी तीन बच्चे बिठा लेते हैं।
0: अरे हाँ यार, उस दिन तो लोरी गाकर सुना भी रहे थे।
1: क्या बात कर रहे
0: हो? हाँ।
1: आगे सुनो।
0: सुनाओ।
1: रोडवेज की शक्तियों का हम करते हैं कुछ इस तरह इस्तेमाल। लस्सी बनाने के लिए रोडवेज में दही लेकर बैठ जाते हैं।
0: वैसे दिमाग का दही हो रखा है, और ऊपर से तू भी। मैं तो चली, तू बोलता रहा।
1: अरे सुनो।
0: बाय।

गाना है फिल्म परम सुंदरी से और इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है। शो है इश्क बाजियां और मैं हूं आपकी इश्क वाली गीत। और ये जो टाइम होता है ना, ये बहुत सुकून का होता है। जब दिन भर की भागदौड़ से घर पर लौटते हैं तो एक अलग सी खुशी महसूस होती है। दिन भर की जो थकान है वो सब दूर भाग जाती है। और पता है, मेरे साथ भी यही है। कभी कभी इस टाइम की आरजे होने का अच्छा हिस्सा यही लगता है कि इस वक्त आप और मैं दोनों ही अपनी अपनी दुनिया से थोड़ा सा ब्रेक लेकर बस दिल की बातें कर रहे होते हैं। दिन भर की भाग दौड़, मीटिंग्स, डेडलाइंस, फैमिली टेंशन्स, सबको पीछे छोड़कर ये कुछ पल सिर्फ आपके और मेरे होते हैं। अब असली सवाल ये है कि इन पलों में हम सबसे ज्यादा किसे याद करते हैं? ज्यादातर वही ना जिसके बिना अधूरे लगते हैं, यानी मोहब्बत। लेकिन फैज कहते हैं मोहब्बत ही जिंदगी का सब कुछ नहीं है। चलिए उनके शेर से आपको समझाती हूँ। वो कहते हैं कि और भी दुख हैं जमाने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वसल की राहत के सिवा। सोचो कितनी बड़ी बात है ये। आजकल हम सोचते हैं कि प्यार नहीं है तो जिंदगी अधूरी है, लेकिन सच तो ये है कि जिंदगी की लड़ाइयाँ, दर्द और रिस्पॉन्सिबिलिटीज कभी कभी मोहब्बत से भी बड़ी हो जाती है। और फैज यही हमें याद दिलाते हैं कि प्यार जरूरी है लेकिन जिंदगी उससे कहीं बड़ी है। तो दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि मोहब्बत आपके लिए सब कुछ है तो जरा ठहर जाइए, जरा रुक जाइए। जिंदगी की किताब में मोहब्बत बस एक चैप्टर है, पूरी कहानी नहीं। और यही है इश्क शायराना, जहाँ शायर हमें मोहब्बत के साथ साथ जिंदगी का सच भी सिखाते हैं। अभी वक्त है गाने का, गाने के बाद फिर से लौटेंगे। शो है इश्क बाजियां और मैं हूं आपकी इश्क वाली गीत।

0: पर।
1: तेरे प्यार का तो पता नहीं पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
2: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
1: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें। किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
3: और जुड़े हैं साइबर सिपाही कैंपेन से, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ बी अवेयर।

वैसे आशिकी कई बार बगावत भी कर जाती है। इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है, शो है इश्क बाजियां और बहुत ही खास सा सेगमेंट है इश्क शायराना। देखिए मोहब्बत पर बात हो चुकी है, अब बात करेंगे कुछ यादों पर, क्योंकि यही वो वक्त होता है जब यादें शुरू हो जाती हैं, किसी की भी यादें। दिन भर की आवाजें, शोर, रिस्पॉन्सिबिलिटी सब जैसे कहीं गायब हो जाते हैं और तभी दिल में वो पुरानी सी यादें दस्तक दे जाती हैं। कभी किसी की मुस्कान की और कभी किसी की नजर की, ऐसे ही पलों को अल्फाज दिए फैज ने। इन्होंने कहा है कि रात यूं दिल में तेरी खोई हुई याद आई, जैसे वीरानों में चुपके से बाहर आई, जैसे सहमी हुई रूठी हुई सहर आए, जैसे वीरानों में हल्के से हवा आ जाए। क्या कमाल का तसव्वुर है। यादों को उन्होंने बहार, सुबह और हवा से कंपेयर किया है, मतलब कोई शख्स अगर याद भी आ जाए तो दिल की वीरानी भी रंगों से भर उठती है। आज की लाइफ में ये एहसास उतना ही सच है। कितनी बार होता है ना, दिन भर सब कुछ ठीक चलता है लेकिन रात को अचानक किसी की याद आकर सब कुछ बदल देती है, जैसे दिल थकान भूलकर फिर से मुस्कुरा उठता है। फैज हमें यही सिखाते हैं कि मोहब्बत का सबसे बड़ा जादू यही है कि वो दूर रहकर भी, याद बनकर भी हमारी जिंदगी में रौनक भर सकता है। तो दोस्तों, आज अगर रात आपको किसी की याद आ रही है तो बस मुस्कुराकर उसे दिल में जगह दीजिए, क्योंकि मोहब्बत हमेशा पास होकर ही नहीं, कभी कभी बस एक याद बनकर भी बहुत गहरी हो जाती है। और यही है इश्क शायराना। वक्त है गाने का, गाने के बाद फिर से लौटूं।

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
1: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट, थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
1: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
2: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

सोनू निगम की आवाज में है ये बहुत ही खूबसूरत सा गाना फ्रॉम द मूवी परम सुंदरी, और इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है। शो है इश्क बाजियां और मैं हूँ इश्क वाली गीत, और फैज की बातें चल रही हैं जो हमारी जिंदगी की कुछ सिचुएशन से बहुत ज्यादा कनेक्ट होती हैं। इनकी कुछ ऐसी शायरी, इनके कुछ ऐसे शेर, और अब एक और सिचुएशन है। ये सिचुएशन है कि जिंदगी में बहुत बार ऐसा होता है जब हम किसी से बहुत कुछ कहना चाहते हैं लेकिन दिल भरा होता है, लेकिन जब वो शख्स सामने आता है तो बस खामोशी रह जाती है, लव्स दिल में ही अटक जाते हैं। इसे खामोशी को अल्फाज दिए फैज ने, और देखिए इनका ये शेर जो है वो कितना खूबसूरत है और कितना ज्यादा कनेक्ट होता है इस सिचुएशन से, कि दिल नाउम्मीद तो नहीं नाकाम ही तो है, लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। क्या कमाल की तसल्ली दे दी है ना इस शेर ने, मतलब चाहे हालात कितने ही मुश्किल से भरे क्यों ना हो लेकिन वो हमेशा के लिए नहीं है, गम की शाम कितनी ही लंबी क्यों ना लगे आखिर वो खत्म होनी ही है और उस शाम के बाद एक नई सुबह आनी है। और आज की जिंदगी में ये शेर और भी ज्यादा गहरा हो जाता है। हम सब कभी ना कभी किसी मुश्किल दौर से गुजरते हैं, किसी रिश्ते का टूटना, किसी चीज का प्रेशर, फैमिली की बहुत सारी टेंशन्स, और उस वक्त लगता है कि शायद यही दर्द हमारी पूरी कहानी है, लेकिन फैज हमें याद दिलाते हैं ना ये सिर्फ एक शाम है और ये शाम ढल जाएगी क्योंकि शाम के बाद एक नई सुबह आनी बाकी है। तो यार अगर आपकी जिंदगी में कुछ ऐसा ही चल रहा हो ना, एक लंबी सी शाम चल रही हो, तो थोड़ा सा सब्र कीजिए, सुबह जरूर आएगी, और यही आपको सिखाता है इश्क शायराना। फिलहाल वक्त है गाने का, गाने के बाद फिर से लौटूंगी। शो है इश्क बाजियां और मैं हूँ इश्क वाली गीत।

0: ज्यादा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: जिंदगी के भी ना कुछ रूल्स होते हैं जिन्हें अगर फॉलो नहीं किया तो सीधे डिटेंशन। लेन डिसिप्लिन तो मेंटेन करना इज अ मस्ट। राइट का मतलब राइट, लेफ्ट का मतलब लेफ्ट। इतना भी रॉकेट साइंस नहीं है मेरी जान। बाइक पे दबंगगिरी करने से कूल तो बहुत लगते हैं, बट अगर यही दबंगगिरी तुम्हारी नेक्स्ट हॉस्पिटल ब्लॉक का रीजन बन गया ना, तो पूरा स्वैग टपरी का चाय बन जाएगा। और हाँ, हेलमेट हमेशा ऑन, सीट बेल्ट हमेशा टाइट, वरना मोए मोए मोमेंट तो गारंटीड है बाबू मोशाय। और अगर रील स्क्रॉल या सेल्फी लेने का ज्यादा ही मन कर रहा है तो साइड में रोक कर करो। याद रखो, रोड रूल्स फॉलो करोगे तो टेंशन फ्री और मस्त राइड गारंटीड है।

वैसे इस गाने में आप किशोर दा की आवाज को फील कर रहे होंगे, लेकिन ये जो आवाज है ये एआई की आवाज है, किशोर दा की आवाज नहीं है। लेकिन खैर, जहां एआई के कुछ जो ड्रॉबैक्स हैं वहां कुछ फायदे भी हैं कि हम इन नए गानों को उस पुराने एहसास में जी पा रहे हैं। इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है, शो है इश्क बाजियां और मैं हूँ इश्क वाली गीत। और अब सेगमेंट जो शुरू होने वाला है रेट्रो इश्क, जहां ऐसी ही एक मोहब्बत की कहानी के बारे में बात करेंगे जिसकी कहानी भले ही पूरी नहीं हुई हो लेकिन उस मोहब्बत ने कमाल किया है। तो चलिए रेट्रो इश्क में आज फिर चलते हैं, उसी मोहब्बत की गहराई को महसूस करते हैं। और ये खूबसूरत सी मोहब्बत है किशोर दा और मधुबाला की, जहां हंसी सिर्फ एक मुखौटा थी, अंदर कहीं एक टूटा हुआ इंसान था। कहते हैं ना कि कुछ मोहब्बतें बड़ा शोर मचाती हैं और कुछ चुपचाप किसी दिल के कोने में बस जाती हैं। और आज रेट्रो इश्क में उसी मोहब्बत के बारे में बात होगी जिसे हंसी में लपेटा गया मगर आंसू से सींचा गया, किशोर दा और मधुबाला की मोहब्बत। अभी वक्त है गाने का, गाने के बाद फिर से लौटेंगे, शो है इश्क बाजियां और मैं हूं

0: रिड्यूस, रीयूज, रीसाइकिल, यही है वो RRR जिन्हें फॉलो करके हमारा शहर एनवायरनमेंट से ऑस्कर जीत सकता है। पर ये 3 R आखिर है क्या? रेडियो महारानी आपको आसान भाषा में समझाता है। रिड्यूस यानी प्लास्टिक से बनी चीजों का कम से कम इस्तेमाल, रीयूज यानी जो दोबारा काम आ सके सिर्फ उसी प्लास्टिक का इस्तेमाल, रिसाइकिल यानी वेस्ट प्लास्टिक को फेंकने के लिए सिर्फ ब्लू डस्टबिन का इस्तेमाल।
1: FM 89.6 का रेजोल्यूशन यही है कि सिंगल यूज प्लास्टिक अब ऑप्शन में ही नहीं है।
2: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी।
3: क्या कहा?

बहुत ही खूबसूरत सा गाना है और ये गाना है किशोर दा और लता जी की आवाज में। इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है, शो है इश्क बाजियां और मैं हूँ इश्क वाली गीत। और रेट्रो इश्क के इस खास से सेगमेंट में हम आज बात करने वाले हैं किशोर दा और मधुबाला की मोहब्बत के बारे में। एक दौर था जब मधुबाला बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत अदाकारा मानी जाती थी, मुस्कुराहट उनकी पहचान थी और चेहरे पर एक ऐसा नूर था जैसे पर्दे पर बस चांद उतर आया हो। और दूसरी तरफ थे हमारे किशोरदा, बॉलीवुड का सबसे चुलबुला बिंदास और थोड़ा सा नहीं बहुत ज्यादा सा आवाज का जादूगर। जब दोनों पहली बार मिले तो एक स्टार और एक स्टैंड अप सिंगर की मुलाकात हुई, लेकिन ये मुलाकात मोहब्बत में कैसे बदल गई? दो लोग जो एक दूसरे से बिल्कुल ही ऑपोजिट थे, उनको कैसे प्यार हुआ? इसके बारे में बात होगी, लेकिन अभी वक्त है गाने का। गाने के बाद फिर से लौटेंगे। शो है इश्क बाजियां और मैं हूं आपकी इश्क वाली गीत।

रवि साहब की आवाज में है ये गाना और फिल्म हम किसी से कम नहीं जो आई थी 1977 में, और इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है। शो है इश्क बाजियां और मैं हूँ इश्क वाली गीत, और हम बात करने वाले हैं किशोर दा और मधुबाला की मोहब्बत के बारे में। दो ऐसे नाम जिनका जिक्र किए बगैर हिंदी सिनेमा के बारे में बात करना शायद बेईमानी है। एक एक्टिंग वर्ल्ड की सुपरस्टार थी तो दूसरा संगीत जगत के बादशाह। इन दोनों को जिंदगी में सब कुछ मिला, लेकिन इनके प्यार की कहानी का जिस तरह से अंत हुआ वो आज भी आपकी आंखें भिगो देगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये दोनों कैसे करीब आए, इनको कैसे मोहब्बत हुई। लोग अक्सर कहते हैं कि मोहब्बत के लिए वक्त चाहिए, पर कुछ मोहब्बतें पहली नजर में ही

पर दस्तक दे देती हैं। मधुबाला जो उस वक्त दिलीप साहब की मोहब्बत में थी और अपना दिल जो है वो भी तोड़ चुकी थी, और तभी किशोरदा उनकी जिंदगी में आते हैं एक हंसी का मरहम बनकर। मधुबाला अपने करियर में पीक पर थी जब उन्हें पता चला कि उनके दिल में छेद है और वो विदेश चली गई अपना इलाज कराने के लिए। और इस वक्त ये दोनों साथ में थे, यानी कि किशोरदा और मधुबाला साथ में थे। लेकिन जब किशोरदा को उनका पता चलता है तो उस वक्त वो बहुत भावुक हो जाते हैं और उन्हें सीधा शादी के लिए प्रपोज कर देते हैं। और जब कोई इंसान किसी से सच्चा प्यार करता है तो उसके साथ जिंदगी का हर लम्हा बिताने की चाह भी रखता है, फिर चाहे उसमें सुख हो या दुख, ये जानते हुए भी कि मधुबाला की जिंदगी का अंत कभी भी हो सकता है। लेकिन किशोरदा ने हमेशा उनका ख्याल रखा और उनसे शादी करने का फैसला लिया, और उन्हें कभी भी इस फैसले को लेकर पछतावा भी महसूस नहीं हुआ, क्योंकि वो सच्ची मोहब्बत में थे और मधुबाला के साथ अपनी पूरी जिंदगी गुजारना चाहते थे। इसके बाद क्या होता है ये मैं आपको बताऊंगी गाने के बाद। गाना सुनते हैं, गाने के बाद फिर से लौटेंगे। शो है इश्क बाजियां।

0: तले।
1: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
2: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
1: पर महंगा हेलमेट, थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
2: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
3: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए। सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

स्वागत है, शो है इश्क बाजियां और मैं हूँ इश्क वाली गीत रेट्रो इश्क, जो बहुत ही खूबसूरत सा सेगमेंट है। किशोरदा और मधुबाला के बारे में बातें चल रही हैं, जहाँ एक ऐसा वक्त आ गया था मधुबाला की जिंदगी में कि किशोरदा ने इनको सीधा शादी के लिए प्रपोज कर दिया। लेकिन इससे कुछ समय पहले की बात है, जब इनकी बहुत ही एक सुपरहिट मूवी रही जिसका नाम था चलती का नाम गाड़ी। सेट पर मजाक मस्ती और हंसी के बीच धीरे धीरे दोनों की जिंदगी एक दूसरे में घुलने लगी। और जब मधुबाला की जिंदगी में एक ऐसा वक्त आता है जहां ये इनको सीधा शादी के लिए प्रपोज करते हैं, लेकिन मधुबाला का परिवार इस रिश्ते से खुश नहीं था। और यहां जब किशोरदा की बात आई तो उन्होंने अपने सारे एफर्ट्स लगाए इस मोहब्बत को पूरा करने के लिए, और आखिर में उन्होंने अपनी मोहब्बत को पा लिया, दोनों की शादी हो जाती है। लेकिन शादी के बाद होता यह है कि किशोरदा की फैमिली मधुबाला को एक्सेप्ट नहीं कर पाती। लेकिन पता है इन दोनों की मोहब्बत की सबसे बड़ी बात क्या थी? इतनी सारी चीजें होने के बाद भी इतनी बड़ी बड़ी बातें इनके रिश्ते पर कभी हावी नहीं हुई। देखो यार, हर कोई ये चाहता है कि जब किसी की जिंदगी का कोई नया चैप्टर शुरू हो तो उनकी फैमिली रहे उनके साथ, बड़ों का आशीर्वाद रहे उनके साथ। हालांकि कभी कभी किसी को ये खुशी नहीं मिल पाती, क्योंकि उनके परिवार उनसे अलग हो जाते हैं जब वो नए रिश्तों में बन जाते हैं। इनको भी अपनी फैमिलीज को पीछे रखना पड़ा, लेकिन इन्होंने अपनी मोहब्बत को पा लिया था उसी एफर्ट्स के साथ। और अभी वक्त है गाने का, गाने के बाद फिर से लौटेंगे। शो है इश्क बाजियां, मैं हूँ इश्क वाली की।

0: रिड्यूस, रीयूज, रीसाइकिल, यही है वो RRR जिन्हें फॉलो करके हमारा शहर एनवायरनमेंट से ऑस्कर जीत सकता है। पर ये तीन आर आखिर है क्या? रेडियो महारानी आपको आसान भाषा में समझाता है। रिड्यूस यानी प्लास्टिक से बनी चीजों का कम से कम इस्तेमाल, रीयूज यानी जो दोबारा काम आ सके सिर्फ उसी प्लास्टिक का इस्तेमाल, रिसाइकिल यानी वेस्ट प्लास्टिक को फेंकने के लिए सिर्फ ब्लू डस्टबिन का इस्तेमाल।
1: FM 89.6 का रेजोल्यूशन यही है कि सिंगल यूज प्लास्टिक अब ऑप्शन में ही नहीं है।
2: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी।

बाजिया और मैं हूँ इश्क वाली गीत। किशोर दा और मधुबाला के बारे में बातें चल रही हैं और बहुत ही इमोशनल सी इन दोनों की स्टोरी है। अच्छा, जब किसी की शादी होती है और शादी में बहुत सारी कस्में खाई जाती हैं कि वो एक दूसरे का साथ देंगे जिंदगी भर, चाहे सुख हो या दुख। खैर, आज के टाइम में ये बातें जो हैं वो बहुत ही बेमानी सी लगती हैं। शायद प्यार के मायने बदल गए हैं आजकल, शायद वो पहले वाली शिद्दत नहीं रही है। लेकिन किशोर दा की अगर मैं बात करूं, जिन्होंने अपनी हर कस्म को निभाया, मधुबाला को सबसे अच्छा इलाज उन्होंने कराया, लेकिन उनकी हालत जो है वो बीतते दिन बिगड़ती ही जा रही थी। इतना सब चल रहा था इनके साथ, लेकिन किशोर दा की मोहब्बत में जरा भी कमी नहीं आई। जीवन साथी बनने पर लोग कसम खाते हैं कि वो हर सुख दुख में एक दूसरे का साथ देंगे, और इस बात को किशोर दा ने करके दिखाया। उन्हें पहले से मधुबाला की सिचुएशन के बारे में पता था, लेकिन फिर भी उन्होंने उनसे शादी की और आखिरी सांस तक उनका ख्याल रखा। ये जो प्यार की कहानी है ना, ये हमें यही सिखाती है कि सुख दुख में अपने साथी के साथ खड़े रहने का मतलब क्या होता है। और आई थिंक आप इनके प्यार की कहानी को समझ ही गए होंगे। एक ऐसा चेहरा जो हमेशा हमें मुस्कुराता दिखा, लेकिन अपनी जिंदगी में कितना कुछ झेल रहा था हमारे किशोर दा। और अभी वक्त है गाने का। गाने के बाद फिर से लौटूंगी बहुत ही खास सा सेगमेंट लेकर। तब तक आप ये गाना

0: शुरू हो जाओ।
1: हाँ तो शुरू होते हैं और अर्ज करते हैं।
0: अर्ज नहीं होता, अर्ज अर्ज।
1: शायरी पे ध्यान लगाओ।
0: इरशाद,
1: रोडवेज बस जैसा अपना हाल है यारों।
0: मेरा नहीं तुम्हारा ही होगा,
1: सबका ये। सब कुछ टूटा फूटा है फिर भी अपना रुतबा है यारों।
0: ये बात तो सही है।
1: और बस की याद आती है जब भी लाइफ में कुछ समझ नहीं पाता हूँ।
0: कैसे कैसे?
1: कंडक्टर बोलता है आगे बढ़ो आगे बढ़ो, तो मैं मोटिवेट हो जाता हूँ।
0: अरे यार वो तुम्हें कह रहा था कि मुंह उठाकर बस से उतरो और आगे बढ़ो, अब तुम बोलते रहो मैं तो चली को मेरी बस आ गई।
1: सुनो सुनो, है

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही। यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: अपनी वाइफ को हैकर्स और रोड के माइकल शुमा को वर्नबी से बचा के रखो। हैकर्स ऐसे फिशिंग करते हैं जैसे हम फ्री समोसे का पोस्टर देख के दौड़ते हैं। और तुम शेडेड लिंक मत खोलना, वरना तुम्हारा डेटा उड़ जाएगा इतनी स्पीड से कि गूगल मैप्स भी बोल देगा रीकैलकुलेटिंग लाइफ। पासवर्ड स्ट्रॉन्ग रखो, पासवर्ड 123 मत लिखना, ये देख के तो हैकर भी बोल देगा भाई इतना आसान क्या। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगाओ, ऐप्स अपडेटेड रखो, वरना स्कैमर्स पार्टी मनाकर तुम्हारे ही अकाउंट में नाचने लगेंगे।

गाना है फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी से, शो है इश्क बाजियां, मैं हूँ इश्क वाली गीत, और यहाँ पर मैं सेगमेंट ले आई हूँ दिल दिया गल्ला। आपके दिलों की बात आपके दिलों तक पहुंचानी है, और आज का टॉपिक है प्रॉमिस। जब कोई रिश्ते में हम बनते हैं तो बहुत सारे प्रॉमिस कर लिया करते हैं, बगैर ये सोचे हुए कि ये प्रॉमिस हम पूरे कर पाएंगे कि नहीं, और ढेरों प्रॉमिस कर लेते हैं, और सामने वाला कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट करता रहता है हमसे कि इतने प्रॉमिस किए हैं तो ज़रूर हम निभाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं हम प्रॉमिसेस पे, उन वादों पे खरे नहीं उतरते हैं। रिश्ते में सब कुछ बहुत ज़रूरी है, प्यार ज़रूरी है और रिश्ते में केयर बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये जो वादे किए जाते हैं ना, और ये जो वादे पूरे नहीं हो पाते हैं, इनसे सामने वाला जो है कहीं ना कहीं टूट जाता है। तो इसीलिए आप वादे कीजिए, लेकिन वो वादे जो आप निभा पाए, और आज इसी बारे में बात होंगी। शो है इश्क बाजियां, मैं हूं इश्क वाली गीत। अगला गाना है फिल्म कल हो ना हो से।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हाँ तो अर्ज किया है।
0: अर्ज
1: अभी करते हैं, सुनो।
0: इरशाद,
1: स्पैम कॉल करके आजकल दिमाग खा जाते हैं।
0: वाह वाह वाह वाह।
1: कोई फर्जी रिश्तेदार तो कोई फर्जी ऑफिसर बनकर हमें डांट देते हैं।
0: तुम अभी जिलायक।
1: चुप रहो, आगे सुनो। मैं कहता हूँ कि बैंक की डिटेल्स OTP सब दे दूंगा।
2: अच्छा, बस मेरी शायरी सुन लो।
0: फिर
1: ये सुनते ही पहली फुर्सत में वो फोन काट देते हैं।
0: अरे वाह, तुम्हारी शायरी का कुछ तो फायदा हुआ। अब तुम बोलते रहो, हम चलते हैं।
1: अरे

प्रतिभा सिंह की आवाज में है ये गाना कि वो मानता ही नहीं हम सफर तो क्या कीजिए, हर एक दुआ है गर बेअसर तो क्या कीजिए, और नजर की राह में यूं तो कई नजारे हैं पर तुम ही पे जाके जो ठहरे नजर तो क्या कीजिए। और इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है, शो है इश्कबाजियां, मैं हूं इश्क वाली गीत। और आपने वो गाना सुना है कि जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, तो जो वादे किए हैं ना किसी से वो निभाने तो पड़ेंगे। और कई लोगों को वादों पर एतबार नहीं होता, जानते हैं ये टूट सकते हैं, फिर भी प्यार में डूबे लोग वादा करने में कोई परहेज नहीं करते, बहुत सारी कस्में खाते हैं, बहुत सारे प्रॉमिसेस करते हैं, लेकिन वादे जो हैं वो या तो रिश्तों को एक बहुत अच्छी जगह पे ले जा सकते हैं, और वो कौन कौन से वादे हैं जो रिश्तों को खोखला कर देते हैं। वैसे एक वादे के टूटने से होती है रिश्ता टूटने की शुरुआत, और ये स्टडी भी बताती है कि इंसान दिन में 15,000 से ज्यादा शब्द बोलता है। इस दौरान लौट कर आने, फिर मिलने, जिंदगी भर साथ निभाने वाले जैसे तमाम वादे भी किए जाते हैं, लेकिन बात यह भी है कि इन 15,000 शब्दों में से सिर्फ कुछ 100 शब्द लोगों को अगले

हफ्ते तक जोड़े रखते हैं। ये बहुत सारे वादे होते हैं कि मैं तुम्हें भूल नहीं पाऊंगा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। ऑल्दो सामने वाले का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत बढ़ रहा है इन वादों से, लेकिन कहीं ना कहीं डर भी है कि यार ये वादे टूट ना जाए। तो आज इन्हीं वादों पर बातें हो रही हैं। शो है इश्कबाजियां, मैं हूं इश्क वाली गीत।

0: ज्यादा चिल्लाने से बात समझाई नहीं जाती, सिर्फ दिल दूर हो जाते हैं। इसलिए आज से ही आवाज धीमी और बात गहरी, फिर देखिए जिंदगी कितनी खूबसूरत लगती है।
1: क्योंकि दोस्ती बिना तो प्यार होता ही नहीं।

और इसी 90s मैशअप के साथ फिर से स्वागत है। शो है इश्कबाजियां, मैं हूं इश्क वाली गीत। और यहां पर बातें चल रही हैं प्यार में जो वादे किए जाते हैं उनको निभाना कितना जरूरी है यार। यूं तो लोग रिश्ते में चांद तारे तोड़ लाने और मौसम का रुख बदलने तक की बातें कर देते हैं, हालांकि ये सब पॉसिबल नहीं है। ये वादा करने वाला और जिससे वादा किया जा रहा है वो भी जानता है इनको, क्या ऐसा सिर्फ बोलने भर की बातें हैं, ये संभव नहीं हो पाएगा। लेकिन क्या होगा जब उन वादों को तोड़ दिया जाए जिसे पूरा करना पॉसिबल है और सामने वाला आपसे एक होप लगाए बैठा है कि आप इन वादों को जरूर पूरा करेंगे। वैसे

अगर एक भी वादा टूटता है ना तो सामने वाले इंसान का दिल टूट जाता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि एक वादे के टूटने के बाद एक पार्टनर दूसरे पार्टनर की हर बात को एक अलग नजर से देखने लगता है कि यार एक प्रॉमिस तो पूरा किया नहीं गया और प्यार निभाएंगे। और आपको ये जो वादे होते हैं ना वो बड़बोलापन बना देते हैं, तो इसीलिए आपको सोच समझ कर वादे करने चाहिए। फिलहाल वक्त है गाने का। शो इश्कबाजिया, मैं हूँ इश्क वाली गीत।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है, शो है इश्क बाजियां, मैं हूं इश्क वाली गीत। और यहां पर बातें चल रही हैं प्रॉमिसेस को लेकर। कई बार हम भावनाओं में बहकर ऐसे शब्दों का यूज कर लेते हैं जो वास्तविक जिंदगी में पॉसिबल नहीं है, और कुछ लोग इसे बहुत नॉर्मल मानते हैं कि बहुत नॉर्मल है, ठीक है वादा कर लिया तो क्या बड़ा कर दिया। लेकिन सामने वाले के दिमाग में ये बातें बस जाती हैं। लेकिन दिक्कत तब होती है जब सामने वाला इसे सच मान बैठता है और सामने वाले से ऐसी एक्सपेक्टेशंस करने लगता है। एक बहुत अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर हैं, इन्होंने बताया है कि वादे क्यों टूटते हैं, और इस पर इन्होंने एक बेस्ट रिसर्च स्पीच भी दी है। इसमें इन्होंने वादे टूटने का बहुत मेन रीजन बताया है कि भावनाओं में बहकर हम कुछ ऐसे शब्दों का यूज कर लेते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। इसीलिए जब भी किसी से आप वादा करें तो भावनाओं में बहकर ना करें, वो वादा करें जो एग्जैक्टली आप पूरा कर पाए, क्योंकि ये सामने वाले इंसान को तोड़ कर रख देता है। फिलहाल वक्त है गाने का, शो इश्क बाजियां, मैं हूं इश्क वाली गीत।

0: रिड्यूस, रीयूज, रीसाइकिल, यही है वो RRR जिन्हें फॉलो करके हमारा शहर एनवायरमेंट से ऑस्कर जीत सकता है। पर ये 3R आखिर है क्या? रेडियो महारानी आपको आसान भाषा में समझाता है। रिड्यूस यानी प्लास्टिक से बनी चीजों का कम से कम इस्तेमाल, रीयूज यानी जो दोबारा काम आ सके सिर्फ उसी प्लास्टिक का इस्तेमाल, रिसाइकिल यानी वेस्ट प्लास्टिक को फेंकने के लिए सिर्फ ब्लू डस्टबिन का इस्तेमाल।
1: FM 89.6 का रेजोल्यूशन यही है कि सिंगल यूज प्लास्टिक अब ऑप्शन में ही नहीं है।
2: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी।

पंकज उदास की आवाज में है बहुत ही बेहतरीन सा गाना और इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है। शो है इश्क बाजियां और मैं हूँ इश्क वाली गीत। और मैं आज दिल दिया गला में आपसे यही कहूंगी कि वादे कीजिए, बिल्कुल कीजिए, लेकिन वो बचकाने वादे मत कीजिए जिन्हें आप पूरा ना कर पाए। अब वो वादे कीजिए जिसे आप पूरा कर पाए और सामने वाला अगर आपसे एक्सपेक्ट भी करे तो आप वक्त के साथ अपने वादों पर खरे उतर पाए, वरना लोग आपको ये कह देंगे कि आप अपनी बातों पर नहीं रहते, अपनी बातों को कहकर मुकर जाते हैं। इसीलिए आप कोई भी ऐसा वादा ना करें जो पूरा नहीं हो सकता है। अभी मेरे चलने का वक्त है, मैं मिलूंगी आपसे कल जहां ढेर सारी बातें करेंगे। फिलहाल दीजिए इजाजत, सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM। कुछ हटके खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और प्यार बांटते रहिए।

यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

0: 89.6 FM।
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

0: वॉल्स पर सेव वाटर सेव सिनेमैटिक वाइब। अगर पानी नहीं होता तो बॉलीवुड के कितने गाने अधूरे रह जाते। जैक और रोज आज भी टाइटैनिक घुमा रहे होते। वीरू किसकी टंकी पर चढ़ के मौसी को मनाता। और ये गाना कभी नहीं बन पाता। रेडियो महारानी 89.6 देता है पानी बचाने का सबसे स्ट्रॉन्ग बहाना। जल है तो एंटरटेनमेंट का कल है। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।
1: ओ करम खुदाया है, ओ करम खुदाया है, तुझे मुझसे मिला।

0: मैं यमराज तुम्हें लेने आया हूँ।
1: ओ पाजी, तुसी भी हेलमेट पाया हुए?
0: ओए खोत्या, ये मुकुट है, पर तूने हेलमेट पहना होता तो मुझे यहाँ नहीं आना पड़ता।
2: हर साल 52,000 से भी ज्यादा लोग सिर्फ हेलमेट ना पहनने की वजह से अपनी जान गंवा देते हैं। इसीलिए इन हजारों में नहीं लाखों में एक बने नो हेलमेट तो नो टू व्हीलर सवारी। 89.6 FM रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। जोरों से भागती दुनिया में बेहिसाब पाना और खोना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। थक गई हूँ भागते भागते खुद से, अब माँ की गोद में सर रख के सोना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। खेलते हैं लोग यहाँ सिर्फ दिल से, अब टूटा उनका ये खिलौना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। नापते हैं ये मुझे वक्त के हिसाब से, जो दिया वक्त तो आधा चौथाई पौना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है।

हकीकत को याद दिला दे उसकी नानी। आप सुन रहे हैं फरीदाबाद का अपना रेडियो महारानी 89.6 FM। कुछ हटके

0: I hate water wasting रे, जा जाके टंकी बंद कर।
1: सावधान, पानी की टंकी भर गई है, कृपया मोटर बंद कीजिए।
2: रिड्यूस, रीयूज, रीसाइकिल, यही है वो RRR जिन्हें फॉलो करके हमारा शहर एनवायरनमेंट से ऑस्कर जीत सकता है। पर ये 3 R आखिर है क्या? रेडियो महारानी आपको आसान भाषा में समझाता है। रिड्यूस यानी प्लास्टिक से बनी चीजों का कम से कम इस्तेमाल, रीयूज यानी जो दोबारा काम आ सके सिर्फ उसी प्लास्टिक का इस्तेमाल, रिसाइकिल यानी वेस्ट प्लास्टिक को फेंकने के लिए सिर्फ ब्लू डस्टबिन का इस्तेमाल।
3: FM 89.6 का रेजोल्यूशन यही है कि सिंगल यूज प्लास्टिक अब ऑप्शन में ही नहीं है।
4: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी।

0: ए भाई दर देख के चलो।
1: फिल्म मेरा नाम जोकर का ये गाना इशारा करता है कि सड़क नियम सिर्फ गाड़ी चलाने वालों के लिए नहीं है बल्कि पैदल चलने वालों के लिए भी है। इसीलिए राइट लेफ्ट राइट देखकर ही रोड पार करें, वो भी जीब्रा क्रॉसिंग से।
0: आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी।
1: सड़क के किनारे हमेशा अपने सीधे हाथ की तरफ चलें, वो भी बिना फोन इस्तेमाल किए हुए, ताकि आपके परिवार को कभी इस फिल्म का दूसरा गाना ना गाना पड़े।
0: जाने कहां गए वो दिन।
2: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी।
3: पुष्पा, I hate water wasting रे, जा जाके टंकी बंद कर।

0: सुरक्षा नियमों को अगर अपनाओगे तो खुद के साथ साथ दूसरों की भी जान बचाओगे, क्योंकि दुर्घटना की है तीन यार, नशा, नींद और रफ्तार।
1: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।
2: बोरियत को याद दिला दे उसकी नानी। आप सुन रहे हैं फरीदाबाद का अपना रेडियो महारानी
3: 89.6 FM कुछ हटके।

0: मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ।
1: अभी भी टाइम है बेटा जी, गाड़ी में फ्यूल और सड़क किनारे कूड़ा जलाना छोड़ दे।
2: A few moments later,
0: माँ, मेरे सब दिखाई दे रहे हैं।
1: बेटा जी, जितना जल्दी निकालोगे सॉल्यूशन, उतना ही कम होगा पॉल्यूशन। रेडियो महारानी द्वारा की गई ये इको फ्रेंडली घोषणा, ताकि इस प्लेनेट पर हम देख पाएं अपना ब्राइट फ्यूचर।

0: 89.6 FM।
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

0: जिंदगी का सफर कितना भी हसीन हो, एक गलती और सब खत्म।
1: ये सड़कें तुम्हारी कहानियाँ नहीं सुनती, इन्हें सिर्फ तुम्हारी समझदारी दिखती है। इसलिए हाई स्पीड में गाड़ी चलाने से पहले एक बार जरूर सोचे, आपको किसी न्यूज़पेपर के पेज की हाईलाइट बनना है या अपनी खुद की कहानी का राइटर।
2: आपकी सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके। रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
4: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: OTP शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
0: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग, क्या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: दियारा, जिनके कंधों पर बचपन बीता, आज उन्हीं बूढ़े कंधों को अकेला मत छोड़ो, क्योंकि उनका साथ ही हमारा सुकून है।

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चालान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
1: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट, थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
1: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
2: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, फोन की स्क्रीन भले ही छोटी है पर उसने जिंदगी के सबसे बड़े पल छुपा लिए हैं।

0: सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो सफर की कद्र करते हैं। कभी कभी एक छोटी सी लापरवाही पूरी कहानी बदल देती है। हेलमेट कोई बोझ नहीं, यह आपकी समझदारी का सबसे बड़ा सबूत है।
1: तो अगली बार सफर पर निकलने से पहले इस छोटी सी समझदारी को अपने सिर पर जरूर रखिए, क्योंकि आपकी एक सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
2: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान हो। लोगों के कुछ भी कह देने से खुद को कमजोर मत समझ लेना,
2: कमाल तुम, बेमिसाल तुम, लाजवाब हो,
1: क्योंकि आप क्या हो वो सिर्फ आप जानते हो। सो बी

0: हर शाम जब तुम घर लौटते हो, माँ की नजरें दरवाजे पर टिकी रहती है। पापा के सवालों में सख्ती से ज्यादा फिक्र होती है और छोटे भाई की वो मुस्कान जो सिर्फ तुम्हें देखकर खिल उठती है। सोचो अगर कभी ये मुस्कान इंतजार में ही रह जाए।
1: सफर लंबा हो या छोटा, हेलमेट पहने, हाई स्पीड में गाड़ी ना चलाएं और अपनों की हंसी को बचाएं। हेलमेट सिर्फ आपकी सुरक्षा नहीं, अपनों की खुशियों की गारंटी है।
2: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: दिया राप, जिंदगी हर दिन एक नया सवाल पूछ।

पूछती है और हर बार तुम्हारा जवाब होना चाहिए मैं रेडी हूँ। हिम्मत रखो, हर दिन कुछ बढ़िया होने वाला है क्योंकि ये दुनिया तुम्हारी है, बस खुद पे यकीन रखो।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
2: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, ज्यादा चिल्लाने से बात समझाई नहीं जाती, सिर्फ दिल दूर हो जाते हैं। इसलिए आज से ही आवाज़ धीमी और बात गहरी, फिर देखिए जिंदगी कितनी खूबसूरत लगती है।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, कभी किसी के आंसुओं का मजाक मत बनाओ।
2: जो दिल से लगे उसे कह दो हाय हाय।
1: थोड़ा समझो, थोड़ा सुनो, क्योंकि आपका एक प्यारा सा शब्द उनके लिए सब कुछ बदल सकता है। इसलिए रेडियो महारानी कहता है, दिल की सुनो, दिल से जी।

0: है शाम जब तुम घर लौटते हो, माँ की नजरें दरवाजे पर टिकी रहती है। पापा के सवालों में सख्ती से ज्यादा फिक्र होती है और छोटे भाई की वो मुस्कान जो सिर्फ तुम्हें देखकर खिल उठती है। सोचो अगर कभी ये मुस्कान इंतजार में ही रह जाए।
1: सफर लंबा हो या छोटा, हेलमेट पहने, हाई स्पीड में गाड़ी ना चलाएं और अपनों की हंसी को बचाएं। हेलमेट सिर्फ आपकी सुरक्षा नहीं, अपनों की खुशियों की गारंटी।
2: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।
3: हरियाणवी गानों की मस्ती में झूमना सा है तो सुनो फरीदाबाद का अपना रेडियो महारानी 89.6।

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है,
1: कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
2: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट, थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
2: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
3: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए। सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: 89.6 FM
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

0: कि अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
1: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
2: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

मुराया मारे गिल को मुराया उड़े तारा पड़सी उल्टा बोले पटर सिरा कूड़े मुराया मारे गिल को मुराया उड़े तारा पड़सी उल्टा बोले पटर सिरा कूड़े।

0: सुनना सुनना।
1: जिनके कान संगीत सुनना पसंद करते हैं वो रेडियो महारानी 89.6 के अलावा और कुछ नहीं सुनते हैं।
2: अरे रास्ता रास्ता देखो आग मेरी लड़ी है। अरे बाजू।

0: यूं ही साथी।
1: ओए बंधी मुट्ठी लाख की और खुली तो प्यारे खाक की,
0: हिल मिल के चलना यूं ही साथी।
1: और बंधी मुट्ठी लाख की और खुली तो प्यारे खाक की।

0: जो समझाए उसी की मची धूम, आ जो समझाए उसी की मची धूम,
1: जो समझा उसी की मची धूम, जो समझा उसी की मची धूम,
0: बाजू।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही। यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: पीजिए सरकार।
1: हेलो, थैंक यू, मैंने शराब छोड़ दी है।
2: ओह नो।
0: मैंने तो सुना था आप दिन रात शराब में मदहोश रहते हैं।
1: रहता था, आजकल बगैर शराब के मदहोश रहना सीख लिया। नजरों से देखा।

0: अरे भाई इतनी तेज रफ्तार में कहाँ जा रहा है?
1: भाई मैं तो लंबी रेस का घोड़ा हूँ, रफ्तार से ही जाऊंगा।
0: अरे भाई रुक तो जा, धीरे चलेगा तो दूर तक जाएगा, वरना हॉस्पिटल के बिल ही भरता रह जाएगा।
2: सड़क पर चलते वक्त स्पीड का रखें खास ध्यान, किसी भी लापरवाही से मत बनिए हॉस्पिटल के मेहमान, क्योंकि आपकी सुरक्षा है आपकी जिम्मेदारी।
3: रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं।
1: व्हील्स ऑफ लाइफ, व्हील्स ऑफ होप, एम्बुलेंस जो उम्मीद की किरण लाती है और जिंदगी को बचाती है। इसीलिए जब भी सड़क पर चलती हुई एम्बुलेंस को देखें, उसे सबसे पहले रास्ता दें।

0: तुम ही कहो ये कोई बात है।
1: अरे ओ सांबा, कौन सा रेडियो चैनल सुनता है रे?
2: सरदार रेडियो महारानी 89.6 FM।
3: अच्छा अच्छा,

0: सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
0: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

0: हाँ तो अर्ज किया है।
1: ओहो, अर्ज होता है अर्ज।
0: कर रहे हैं आप, सुनो तो
1: इरशाद।
0: स्कैम कॉल करने वालों का फोन हमारे नंबर पर आ गया।
1: तुम्हारे नंबर पे?
0: हाँ जी।
1: अच्छा,
0: और उन्होंने पूछा क्या?
1: क्या पूछा?
0: हाँ, पैसे दे दो वरना कार ठोकने के जुर्म में आपका बेटा जेल जाएगा, उन्होंने ये बताया।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ, हमने कहा भाई सिंगल हूँ मैं, ना तो मेरा कोई बेटा है ना मेरी कोई कार है।
1: अच्छा,
0: हमारी लाइफ में खटारा जी साइकिल है, वो भी बेकार है।
1: बिल्कुल तुम्हारी तरह। ओ पागल, तुम्हें कहना चाहिए था वो भी उधार ली हुई है।
0: नहीं नहीं, रेंट पे है, ईएमआई पे।
1: खैर, अब तुम बोलते रहो, हम सबको बता कर आते हैं कि स्कैम कॉल्स को वैसे ही इग्नोर करें जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हारी कॉल को करती है।
0: इज्जत का फालूदा कर दिया यार।
1: बाय।
0: सुनो तो, कहाँ चली?
1: बाय।

0: बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
1: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
2: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

0: क्या आप जानते हैं हमारे किशोर दा को क्यों दा पौधों से प्यार?
1: मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता।
0: और देवानंद को ब्लू और ब्लैक कपड़े पहनने से क्यों था इनकार?
2: अपना दिल तो आवारा।
0: जानिए ऐसे ही किस्से सुनहरे दौर की सपना के साथ रात बाकी बात बाकी में।
2: बहुत भोला है बेचारा, न जाने किस पे आएगा।
3: सदा सुरक्षित रहो, अरूर सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
4: जिंदगी के भी ना कुछ रूल्स होते हैं जिन्हें अगर फॉलो नहीं किया तो सीधे डिटेंशन। लेन डिसिप्लिन तो मेंटेन करना इज अ मस्ट। राइट का मतलब राइट, लेफ्ट का मतलब लेफ्ट। इतना भी रॉकेट साइंस नहीं है मेरी जान। बाइक पे दबंगगिरी करने से कूल तो बहुत लगते हैं, बट अगर यही दबंगगिरी तुम्हारी नेक्स्ट हॉस्पिटल वॉक का रीजन बन गया ना, तो पूरा स्वैग टपरी का चाय बन जाएगा। और हाँ, हेलमेट हमेशा ऑन, सीट बेल्ट हमेशा टाइट, वरना मोए मोए मोमेंट तो गारंटीड है बाबू मोशाय। और अगर रील स्क्रॉल या सेल्फी लेने का ज्यादा ही मन कर रहा है तो साइड में रोक कर करो। याद रखो, रोड रूल्स फॉलो करोगे तो टेंशन फ्री और मस्त राइड गारंटीड है।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हाँ तो अर्ज किया है।
2: अर्ज
1: अभी करते हैं, सुनो।
0: स्टार्ट।
1: स्पैम कॉल करके आजकल दिमाग खा जाते हैं।
0: वाह वाह वाह वाह।
1: कोई फर्जी रिश्तेदार तो कोई फर्जी ऑफिसर बनकर हमें डांट देते हैं। चुप रहो, आगे सुनो। मैं कहता हूँ कि बैंक की डिटेल्स OTP सब दे दूंगा।
0: अच्छा,
1: बस मेरी शायरी सुन लो।
0: फिर
1: ये सुनते ही पहली फुर्सत में वो फोन काट देते हैं।
0: अरे वाह, तुम्हारी शायरी का कुछ तो फायदा हुआ। अब तुम बोलते रहो, हम चलते हैं।
1: अरे, बाय। हेलो।

चक्कर है जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। जोरों से भागती दुनिया में बेहिसाब पाना और खोना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। थक गई हूँ भागते भागते खुद से, अब माँ की गोद में सर रख के सोना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। खेलते हैं लोग यहाँ सिर्फ दिल से, अब टूटा उनका ये खिलौना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। नापते हैं ये मुझे वक्त के हिसाब से, जो दिया वक्त तो आधा चौथाई पौना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है।

0: मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ।
1: अभी भी टाइम है बेटा जी, गाड़ी में फ्यूल और सड़क किनारे कूड़ा जलाना छोड़ दे।
2: A few moments later,
0: माँ, मुझे सब दिखाई दे रहा है।
1: बेटा जी, जितना जल्दी निकालोगे सॉल्यूशन, उतना ही कम होगा पॉल्यूशन। रेडियो महारानी द्वारा की गई ये इको फ्रेंडली घोषणा ताकि इस प्लेनेट पर हम देख पाएं अपना ब्राइट फ्यूचर।
3: बोरियत को याद दिला दे उसकी नानी। आप सुन रहे हैं फरीदाबाद का अपना रेडियो महारानी 89.6 FM।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।
4: पुष्पा, आई हेट वाटर वेस्टिंग रे, जा जाके टंकी बंद कर।

0: तुम ही कहो ये कोई बात है।
1: मैं यमराज तुम्हें लेने आया हूँ।
2: ओ पाजी, तुसी भी हेलमेट पाया हुए?
1: ओए खोत्या, ये मुकुट है, पर तूने हेलमेट पहना होता तो मुझे यहाँ नहीं आना पड़ता।
3: हर साल 52,000 से भी ज्यादा लोग सिर्फ हेलमेट ना पहनने की वजह से अपनी जान गवा देते हैं। इसीलिए इन हजारों में नहीं लाखों में एक बने नो हेलमेट तो नो टू व्हीलर सवारी। 89.6 FM रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

save life. पर सेव वाटर सेव सिनेमैटिक वाइब. अगर पानी नहीं होता तो बॉलीवुड के कितने गाने अधूरे रह जाते. जैक और रोज आज भी टाइटैनिक घुमा रहे होते. वीरू किसकी टंकी पर चढ़ के मौसी को मनाता. और ये गाना कभी नहीं बन पाता. रेडियो महारानी 89.6 देता है पानी बचाने का सबसे स्ट्रॉन्ग बहाना. जल है तो एंटरटेनमेंट का कल है. रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी.

खैरियत को याद दिला दे उसकी नानी। आप सुन रहे हैं फरीदाबाद का अपना रेडियो महारानी 89.6 FM।

0: 89.6 FM
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
2: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

0: हाँ तो अर्ज किया है।
1: ओहो, अर्ज होता है अर्ज।
0: कर रहे हैं आप, सुनो तो
1: इरशाद।
0: स्कैम कॉल करने वालों का फोन हमारे नंबर पर आ गया।
1: तुम्हारे नंबर पे?
0: हाँ जी।
1: अच्छा,
0: और उन्होंने पूछा क्या?
1: क्या पूछा?
0: हाँ, पैसे दे दो वरना कार ठोकने के जुर्म में आपका बेटा जेल जाएगा, उन्होंने ये बताया।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ, हमने कहा भाई सिंगल हूँ मैं, ना तो मेरा कोई बेटा है ना मेरी कोई कार है।
1: अच्छा,
0: हमारी लाइफ में खटारा जी साइकिल है, वो भी बेकार है।
1: बिल्कुल तुम्हारी तरह। ओ पागल, तुम्हें कहना चाहिए था, वो भी उधार ली हुई है।
0: नहीं नहीं, रेंट पे है, ईएमआई पे।
1: खैर, अब तुम बोलते रहो, हम सबको बता कर आते हैं कि स्कैम कॉल्स को वैसे ही इग्नोर करें जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हारी कॉल को करती है।
0: इज्जत का फालूदा कर दिया यार।
1: बाय।
0: अरे सुनो तो, कहाँ चली?
1: बाय।

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
1: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट, थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
1: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
2: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: अरे भाई, इतनी तेज रफ्तार में कहाँ जा रहा है?
1: भाई मैं तो लंबी रेस का घोड़ा हूँ, रफ्तार से ही जाऊंगा।
0: अरे भाई रुक तो जा, धीरे चलेगा तो दूर तक जाएगा, वरना हॉस्पिटल के बिल ही भरता रह जाएगा।
2: सड़क पर चलते वक्त स्पीड का रखें खास ध्यान, किसी भी लापरवाही से मत बनिए हॉस्पिटल के मेहमान, क्योंकि आपकी सुरक्षा है आपकी जिम्मेदारी।
3: रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं।
1: व्हील्स ऑफ लाइफ, व्हील्स ऑफ होप, एम्बुलेंस जो उम्मीद की किरण लाती है और जिंदगी को बचाती है। इसीलिए जब भी सड़क पर चलती हुई एम्बुलेंस को देखें, उसे सबसे पहले रास्ता दें।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही। यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: 89.6 FM
1: कुछ छक्के
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं।
3: कुछ हटके
4: हाल कैसा है जनाब का,
5: क्या ख्याल है आपका,
4: तुम तो मचल गए।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
0: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

0: हाँ तो अर्ज किया है।
1: ओहो, अर्ज होता है अर्ज।
0: कर रहे हैं आप, सुनो तो
1: इरशाद।
0: स्कैम कॉल करने वालों का फोन हमारे नंबर पर आ गया।
1: तुम्हारे नंबर पे?
0: हाँ जी।
1: अच्छा,
0: और उन्होंने पूछा क्या?
1: क्या पूछा?
0: हाँ, पैसे दे दो वरना कार ठोकने के जुर्म में आपका बेटा जेल जाएगा, उन्होंने ये बताया।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ, हमने कहा भाई सिंगल हूँ मैं, ना तो मेरा कोई बेटा है ना मेरी कोई कार है।
1: अच्छा,
0: हमारी लाइफ में खटारा जी साइकिल है, वो भी बेकार है।
1: बिल्कुल तुम्हारी तरह। ओ पागल, तुम्हें कहना चाहिए था, वो भी उधर हार ली हुई है।
0: नहीं नहीं, रेंट पे है, ईएमआई पे।
1: खैर, अब तुम बोलते रहो, हम सबको बता कर आते हैं कि स्कैम कॉल्स को वैसे ही इग्नोर करें जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हारी कॉल को करती है।
0: इज्जत का फालूदा कर दिया यार।
1: बाय।
0: सुनो तो, कहाँ चली?
1: बाय।

0: मुस्कुराना पहले जरा आप मुस्कुराइए।
1: मुस्कुराने की न कोई बात है,
0: आज देखिए तो क्या हसीन रात है।
1: ओहो काम तो बताइए बताइए।
0: ना ना ना पहले

0: सादा है।
1: बोलो बोलो।
0: आज लेना एक वादा है।
1: क्या?
0: आजा आजा शादी का इरादा है।
1: क्या?
0: शादी का इरादा है।
1: शादी
0: का इरादा है।
1: शादी ना पापा ना।
0: मगर क्यों?
1: शादी तो बर्बादी है।
0: क्या कहती हो?
1: हो जाती आजादी है।
0: नहीं नहीं
1: बाय बाय।
0: सुनो तो मोना, सुनो तो, सुनो तो।
2: आप यहाँ आए इसलिए, आपने बुलाया इसलिए, आए हैं तो काम भी बताइए, पहले जरा आप मुस्कुराइए, पहले जरा आप

0: मैंने कहा काम तो बताइए।
1: काम? हाँ। काम सीधा साधा है, लेना एक वादा है।
0: अच्छा?
1: प्यार को निभाओगे?
0: निभाऊंगा।

0: तुम्हारे हैं।
1: वेरी

0: जरा आप मुस्कुराइए, पहले जरा आप मुस्कुराइए,
1: पहले जरा आप मुस्कुराइए।
2: ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
3: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
2: पर महंगा हेलमेट थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
3: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
4: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
5: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: अरे भाई, इतनी तेज रफ्तार में कहाँ जा रहा है?
1: भाई मैं तो लंबी रेस का घोड़ा हूँ, रफ्तार से ही जाऊंगा।
0: अरे भाई रुक तो जा, धीरे चलेगा तो दूर तक जाएगा, वरना हॉस्पिटल के बिल ही बढ़ता रह जाएगा।
2: सड़क पर चलते वक्त स्पीड का रखें खास ध्यान, किसी भी लापरवाही से मत बनिए हॉस्पिटल के मेहमान, क्योंकि आपकी सुरक्षा है आपकी जिम्मेदारी।
3: रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं।
1: व्हील्स ऑफ लाइफ, व्हील्स ऑफ होप, एम्बुलेंस जो उम्मीद की किरण लाती है और जिंदगी को बचाती है। इसीलिए जब भी सड़क पर चलती हुई एम्बुलेंस को देखें, उसे सबसे पहले रास्ता दें।

0: अरे ओ सांबा, कौन सा रेडियो चैनल सुनता है रे?
1: सरदार रेडियो महारानी 89.6 FM।
2: अच्छा अच्छा,

मस्त बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे गुलों के साथ खेलूं, चाहे कली से प्यार करूं।

0: सुन रहे हैं कृष्ण वाणी।
1: श्रीमद् भगवद गीता से हमें सीखने को मिलता है कि परिवर्तन निश्चित है और यही संसार का नियम है, यानी कि आपका जीवन कभी भी बदल सकता है। और जैसे सर्दी के बाद गर्मी और गर्मी के बाद वर्षा ऋतु, ऐसे ही चलता रहता है। इस प्रकार संसार में परिवर्तन निश्चित है और यही संसार का नियम है।

0: पथ ही है बस ऐसा पथ, जो चले तो भव सिंधु पार उतर जाता है। रेडियो महारानी पर आप सुन रहे हैं स्पिरिचुअल लीडर श्री हितामृत जी के विचार।
1: आपको अपने साधक जीवन का एक छोटा सा अनुभव बांट रहा हूँ। श्री राम सुखदास जी की एक पुस्तक पढ़ रहा था किसी दिन में, और श्री स्वामी जी ने अपने जीवन का एक अनुभव उसमें कहा था कि हमारे जीवन में, हमारे साधन काल में एक क्षण ऐसा आया जब हमने अपने मन में ये संकल्प किया कि अब हम कोई संकल्प नहीं करेंगे। मन करेगा तो करेगा, पर हम उसके संग नहीं चल देंगे, हम उसके साथ नहीं चलेंगे, चाहे वो संकल्प पारमार्थिक संकल्प ही क्यों ना हो। यहाँ के रसिकों ने कहा है, परमार्थ व्यवहार बनो कि ना बनो, अंजन है मम नयन सदा भगवत सन। स्वामी जी ने कहा चाहे वो पारमार्थिक संकल्प भी क्यों ना हो, हम कोई संकल्प नहीं करेंगे, बस अपने अपने श्री हरि की इच्छा में हमने अपनी सब इच्छा मिला दी, अब राजी हैं हम उसी में और जिसमें तेरी रजा है। और मैं कहता हूँ भक्ति की सबसे सरलतम व्याख्या यही है कि प्रभु की इच्छा में अपनी इच्छा मिला दी जाए। हमारे महाप्रभु जी तो रसगान का आरंभ यहीं से करते हैं,

प्यारे, जोई जोई प्यारो करे सोई मोय भावे। यही ये भक्ति की सरलतम व्याख्या है। और स्वामी जी ने आगे लिखा कि भाई अब हमें तत्व प्राप्ति के अतिरिक्त कुछ और नहीं करना है। और जाने उस एक पंक्ति में कैसी शक्ति थी, कैसी ऊर्जा थी कि वो शब्द मेरे भीतर गए, उन शब्दों ने समय आने पर अपना प्रभाव दिखाया। तो भक्ति मुझे लगता है यही है भाई, इसी को समर्पण कहते हैं। भक्ति का प्राण समर्पण है। और यही समर्पण जब अपने मन की कोई इच्छा ना रहे, और मन इच्छा करे तो करने दीजिए, आप मन के पीछे मत चलिए।

अमृत मोह सिंधु की दारा, कार दया कर कर मोही पारा। रोगी वैद्य से कह रहा है कि मुझ पर कृपा करो और मैं डूबता जा रहा हूँ इस मोह सिंधु की धारा में, किसी प्रकार मुझे पार करो। हो अति दीन महा दुख पावत, लोग कुटुंब को मुंह ना लावत। क्या आवश्यक है जीवन में अपनी ये झांकी देखना, क्या आवश्यक है कि हम अपनी ऐसी दुर्दशा जीवन में देखें। ये जो समय है ना आपके पास, ये जो जीवन है आपके पास, यही आपकी निधि है, यही आपकी संपत्ति है। कबीर जी ने तो एक बड़ा विस्तृत प्रसंग कहा है, मैं प्रयास करूंगा कल लेकर आऊं कबीर जी की वाणी का वो प्रसंग। वो कहते हैं कि भाई कर सको तो नित्य करो, नित्य नहीं करो तो सप्ताह में करो, नहीं तो एक मास में, नहीं तो एक वर्ष में। इस प्रकार उन्होंने बड़ा सुंदर रूपक दिया है जीव को प्रबोध देने के लिए। जो समय है ना, यही आपकी संपत्ति है, इसका सदुपयोग करिए। महीना में 30 दिन होते हैं ना, तो 3 दिन जाकर समझिए धाम में रहना है। लेकिन धाम में कैसे रहना है, साधक की भांति रहना है। श्री डोंगरे जी महाराज जी बात कहते थे कि तीर्थ का प्रसाद तभी मिलता है, तीर्थ सेवन का फल लाभ तभी है जब आप तप पूर्वक तीर्थ में रहें। और यहां की बात करूं तो मैं तो आपको सदा कहता हूं कि भाई आपको मुझे तो प्रियालाल ने अपने घर में रखा है। ये राधा मोहन का निज मंदिर है ये वृंदावन धाम। यहां तो एक ही विधि है बसने की कि बस के वृंदा विपिन में इतनो बड़ो सयान, जुगल चरण के भजन बिन निमिष न दीजे जान। आप कहीं भी रहते हो, कितने भी काल के लिए आप वृंदावन आते हो, पर यहां पर उपासक बनकर रहिए, यहां पर साधक बनकर रहिए। भजन रसमयी विपिन धर, समझ बसे जो कोए, प्रेम बीज तिही खेत ते तब ही अंकुर होए। और समय रहते चेत जाइए, सबसे अमूल्य निधि, सबसे अमूल्य संपत्ति आपका जीवन है। और जीवन क्या है, जन्म से मृत्यु के बीच के समय को ही जीवन कहते हैं। ये समय आपकी संपत्ति है, इसका सदुपयोग करिए। इसका कुछ हिस्सा अवश्य भगवत भजन में लगाइए, इसका कुछ हिस्सा अवश्य आत्मचिंतन में लगाइए। नहीं तो भाई यही झांकी है कि हो अति दीन महा दुख पावत और लोग कुटुंब को न मुंह लावत। बड़े बड़े घरों में देखा है भाई मैंने कि जो घर के वयोवृद्ध जन होते हैं वो घर के एक कोने में पड़े रहते हैं, कोई उनके निकट भी नहीं जाना चाहता। उस वृद्ध व्यक्ति को और किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, भोजन वो अब अधिक कर नहीं सकता, वस्त्र आभूषण का कोई सुख रहा नहीं। उस वृद्ध को तो केवल इतना चाहिए कोई दो घड़ी उसके उसके पास बैठकर प्रेम से बात कर ले, और वो दो घड़ी प्रेम से बात करने वाला कोई नहीं होता। और जीव अपनी दुर्दशा का विचार करके रोता है, पर अब पछताए हो तो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, जब रसना थकी न बोलो जाई, जब ऐसी स्थिति आए तब इसका विचार करने का क्या लाभ है। मैं भाई बल देकर एक बात कहा करता हूं, सही निर्णय तभी सही है जब वो सही समय पर लिया जाए। अगर समय चूका तो कितना भी सही निर्णय क्यों ना हो, भजन करने से ज्यादा सही निर्णय कोई नहीं है। लेकिन समय चूक जाने पर यदि आप भजन करना आरंभ करते हैं तो उसका वो लाभ नहीं होता जो होना चाहिए। और कोई कहे कि भाई आप संत लोग कहते हैं कि अंत समय भगवान नाम का स्मरण करने से गति हो जाती है, अरे गति तो हो जाती है, गति तो हो जाती है। अरे ये जीवन मिला इसका सुख तो पाते, इसका आनंद तो लेते। जीवन का एक एक दिन सुख स्वरूप हो जाता, जीवन का एक एक क्षण उत्सव स्वरूप हो जाता यदि समय रहते चेत जाते, समय रहते गुरु के चरणों से लगकर और भगवत भजन करना आरंभ कर देते। नहीं तो भाई गलितम मुंडम, शंकराचार्य कहते हैं ना, अरे मूढ़ मती, जब समय चला जाएगा मुख में दांत नहीं रहेंगे, चेहरे पर झुर्रियां पड़ जाएंगी, तेरा कोई अपना तेरे निकट नहीं आएगा, क्यों उस समय की, क्यों उस अपनी दुर्दशा की प्रतीक्षा करता है।